0: कह दो कि वो इस पर भी कुदरत रखता है कि तुम पर ऊपर की तरफ से या तुम्हारे पांव के नीचे से अजाब भेजे या तुम्हें फिरका फिरका कर दे और एक को दूसरे से लड़ाकर आपस की लड़ाई का मजा चखा दे। देखो हम अपनी आयतों को किस किस तरह बयान करते हैं ताकि ये लोग समझें।
1: وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ
0: और इस कुरान को तुम्हारी कौम ने झुठलाया हालांकि वो सरासर हक है। कह दो कि मैं तुम्हारा दारोगा नहीं हूँ।
1: لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ
0: हर खबर के लिए एक वक्त मुकर्रर है और तुमको अनकरीब मालूम हो जाएगा।
1: وَإِذَا

फिर जब सूरज को देखा कि जगमगा रहा है तो कहने लगे, मेरा परवरदिगार ये है, ये सबसे बड़ा है। मगर जब वो भी गुरूब हो गया तो कहने लगे, लोगों, जिन चीजों को तुम अल्लाह का शरीक बनाते हो मैं उनसे बेजार हूँ।

वही रात के अंधेरे से सुबह की रोशनी फाड़ निकालता है और उसी ने रात को मुझे आराम ठहराया और सूरज और चांद को जरिया शुमार बनाया है। ये अल्लाह के मुकर्रर किए हुए अंदाजे हैं जो गालिब और इल्म वाला है।

उसी इंसान को ठीकरे की तरह खनखनाती मिट्टी से बनाया और जिन्नात को आग के शोले से पैदा किया, तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे।

दोनों दरियाओं से मोती और मूंगे निकलते हैं तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे? और जहाज भी उसी के हैं जो दरिया में पहाड़ों की तरह ऊंचे खड़े होते हैं तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे?

0: फिर जब आसमान फटकर तेल की तिलछट की तरह गुलाबी हो जाएगा तो वो कैसा हौलनाक दिन होगा। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। उस रोज ना तो किसी इंसान से उसके गुनाहों के बारे में पुरसिश की जाएगी और न किसी जिन से। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे।
1: यार

नेकी का बदला नेकी के सिवा कुछ नहीं है, तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे? और इन बागों के अलावा दो बाग और हैं, तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे? दोनों खूब गहरे सब्ज, तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे?

0: तारीफें अल्लाह के लिए हैं जो तमाम जहानों का पालने वाला है। हर चीज जो आसमानों और जमीन में है उसकी तस्बीह कर रही है और वो जबरदस्त और हकीम है। ए अल्लाह पाक, तू रहमान है, तू रहीम है। हम तेरे गुनाहगार बंदे हैं, हमें माफ फरमा। हम तेरी ही इबादत करते हैं, तुझी से मदद मांगते हैं, हमें सीधा रास्ता दिखा। ऐ अल्लाह पाक, इस वक्त पूरी दुनिया के मुसलमान परेशान हैं, हमारे वतन के अवाम भी परेशान हैं। हमें इस मुश्किल वक्त से बाहर निकाल। अपने प्यारे नबी पाक हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके में अमान दे दे, हमारे दिलों को मोहब्बत से भर दे। तू रहमान है, तू रहीम है, हमें सीधा रास्ता दिखा, उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने इनाम फरमाया, जो मातूब नहीं हुए, जो भटके हुए नहीं हैं। ऐ हमारे रब, हमसे भूल चूक में जो कसूर हो जाएं, उन पर गिरफ्त न कर। मालिक, हम पर वो बोझ न डाल जो तूने हमसे पहले लोगों पर डाले थे। परवरदिगार, जिस बार को उठाने की ताकत हम में नहीं है वो हम पर न रख। हमारे साथ नरमी कर, हमसे दरगुजर फरमा, हम पर रहम कर। तू हमारा मौला है, काफिरों के मुकाबले में हमारी मदद कर। ए करीम, हमें माफ फरमा। तू रहमान है, तू रहीम है। हमारी दुआएं अपने प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबके में कबूल फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन।
1: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها صدق الله العظيم.

शैतान के माथे के सितारे लेकर चांदनी बोएंगे झुलते हुए मैदानों में।

0: ताज़ा तरीन अपलोड्स की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें।
1: This is 101% pure. You are tuned into the one above. 101.

Right.

आवाज की दुनिया का दोस्त, मालूमातों तफरी का साथी, मेरा आपका हम सबका FM 101 रेडियो पाकिस्तान, कौम की आवाज।

0: सुरर संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।
1: बिगारिया चेक, पैशन चेक, द क्लाउड रिसोर्सेज टू स्केल, दैट्स वेयर मेनी स्टार्टअप्स स्ट्रगल बट नॉट एनीमोर. Ignite under the Ministry of IT and Telecom brings you the Prime Minister's Cloud Program for Startups. Get up to $13,500 USD in cloud reimbursement across 2 tiers, plus expert cloud advisory to help your startup scale faster. Apply now at ignite.org.pk. Applications close on July 10th, 2026.
2: There's music, and then there's magic. One above FM 101.

This is 101% pure. You are tuned into the one above, 101 F.

listening to FM 101, Abale Bale Oshawa Shawa.

0: Tune in to the Wannabe 101 FM.
1: Mix FM, yeah.
2: This is FM.

0: दिन के 10 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। हम मात कियानी से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर आज़म तुर्की के सरकारी दौरे पर इस्तांबुल में हैं। पाकिस्तान और इंडोनेशिया ने सेहत के शोबे में दो तरफा तआवुन को मजीद मुस्तहकम बनाने पर इत्तेफाक किया है। अजीम लोक और सूफी गुलकार अलन फकीर की 26वीं बरसी आज मनाई जा। खवातीन के आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप का फाइनल कल लॉर्ड्स में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के दरमियान खेला जाएगा। और अब खबरें तफसील के साथ।
1: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लाड़काना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, बन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर, द बिगेस्ट FM रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। ट्यून इन टू द वन अबव FM 101.101।
2: For latest news headlines after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

there's music, and then there's magic. One Above, FM 101.

0: पाकिस्तान के स्टार्टअप्स को एम्पावर करने के लिए इग्नाइट मिनिस्ट्री ऑफ आईटी एंड
1: स्माइल एंड डायल 111 FM
0: बिग आइडिया टेक पैशन टेक लेकिन स्केल करने के लिए क्लाउड रिसोर्सेज यहाँ स्टार्टअप्स को मुश्किल पेश आती है मगर अब नहीं इग्नाइट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ आईटी एंड टेलीकॉम ला रहा है प्राइम मिनिस्टर्स क्लाउड प्रोग्राम फॉर स्टार्टअप्स टियर 1 और टियर 2 के लिए क्लाउड एक्सपेंसेस पर हासिल करें $13,500 तक की रीइंबर्समेंट और इसके साथ एक्सपर्ट क्लाउड एडवाइजरी की सपोर्ट जिससे आप अपने स्टार्टअप को बआसानी स्केल कर सकते हैं आज ही अप्लाई करें ignite.org.pk पर एप्लीकेशन जमा करवाने की आखिरी तारीख 10 जुलाई 2026 है

0: दिन के 11 बजे हैं। अस्सलामु अलैकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। सोनिया अदनान से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों का तुर्की के सरकारी दौरे पर इस्तांबुल में हैं। सदर मुमलिकत ने अमरीका की आज़ादी की 250वीं सालगिरह पर अपने अमरीकी हम मनसब को मुबारकबाद दी है। पाकिस्तान और इंडोनेशिया ने सेहत के शोबे में दो तरफा तआवुन मजीद मुस्तहकम बनाने पर इत्तफाक किया है। खवातीन के आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप का फाइनल कल लॉर्ड्स में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के दरमियान खेला जाएगा।
1: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लाड़काना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, बन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर, द बिगेस्ट एफएम रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। ट्यून इन टू द वन अबव एफएम 101.1।
2: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

Alright jenab, assalamu alaikum and assalamu alaikum FM 101. 101 FM ka Lahore station aur FM 101 ke Lahore station se main hu aapke host, aapki dost, aapki RJ aur aapki presenter Nimra Aruj. Well, जी क्या हाल चाल है आप लोगों के. उम्मीद करती हूँ कि ठीक ठाक होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे और जिंदगी को इंजॉय कर रहे होंगे. मेरा पूछते हैं तो जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है. एक दफा फिर से आप लोगों के साथ मौजूद हूँ. आज है सैटरडे और टाइम हो चुका है 11:04. इस प्रोग्राम में जिसको हम कहते हैं लेडीज लाउंज, मेरा और आपका साथ रहेगा ठीक 1 बजे तक. आई होप कि आप इस साथ को इंजॉय करेंगे. बाहर जो है ना वो गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है, कभी धूप आ रही है कभी धूप जा रही है. ये सिचुएशन है जी. कुछ एरियाज में धूप इस तरह से है कि लग रहा है कि बस कड़के जो है ना सारे आज ही निकल जाने हैं. लेकिन जैसे ही मैं आती हूँ माल रोड की तरफ, इस तरफ आके थोड़ा सा जो है ना मुझे लगा कि धूप जो है ना कहीं कहीं गायब हो रही है और लगता है कि बारिश जो है ना वो हो जाएगी. अब अल्लाह करे कि बारिश हो और रहमत वाली बारिश हो, सुकून वाली बारिश हो, ठंडी ठंडी बारिश हो, ताकि मौसम थोड़ा सा बेहतर हो जाए. अदरवाइज तो बिल्कुल दिल नहीं करता कि कोई बंदा काम करे, कहीं कोई आया जाए. कोई अभी ना कल ही की बात है, मेरे मियाँ साहब जो है ना वो मुझे कह रहे थे कि जी फलानी जगह जाना है फलानी जगह जाना है. मतलब 2-3 चीज़ें जो है ना वो एक साथ प्लान कर रहे थे और मैं बज़िद थी कि नहीं प्लीज़ मुझे मत कहीं कहीं भी जाने को, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और दिल ही नहीं करता कि बंदा जो है ना वो अच्छे से तैयार होके जो है वो कहीं जाए और साफ़ सुथरे कपड़े पहने. क्योंकि गर्मी में जो है ना वो मेरा ख्याल है कि हर खवातीन हर औरत ने जो है ना घर में गर्मियों के लिए, बल्कि मेल भी जो है वो प्रेफर कर रहे होते हैं कि जो 2-3 घिसे हुए कपड़े होते हैं ना जो बहुत सॉफ्ट होते हैं वो वाले कपड़े जो है ना वो पहने जाएं. और जब बाहर निकलना पड़ता है, जब बाहर निकलते हैं तो फिर जो है वो कोई ना कोई अच्छा सूट आपने पहनना है, फिर थोड़ा बहुत आपने मेकअप भी करना है, कोई तैयार श्यार भी होना है, फिर उसके बाद कोई ज्वेलरी पहन लेनी है. इसी तरह जो है वो और बहुत सारे लवाजमात होते हैं. बहुत सारी खवातीन कहती हैं कि नहीं जी हमने इन चीज़ों के बगैर तो घर से बाहर ही नहीं निकलना. और बहुत सारी खवातीन ऐसी भी होती हैं मेरे जैसी जो बाज़ूकात तैयार होकर भी आती हैं ना तो आधे रास्ते तक उनकी तैयारी सारी ख़त्म हुई भी होती है और उसके बाद जो लोग उनकी तस्वीरें देखते हैं तो कहते हैं ओहो निमरा को क्या हुआ जी, निमरा का लगता है मूड ख़राब है, घर से लड़के आई है. ऐसे भी होता है, हालांकि ऐसा कुछ हो नहीं रहा होता लेकिन सोचने वाले सोच रहे होते हैं. उसकी रीज़न ही यही है कि जी गर्मी है और गर्मी में वाकई कहीं जाने को दिल नहीं करता. इवन किचन में जाने को बाज़ू का दिल नहीं कर रहा होता लेकिन जाना पड़ता है, मजबूरी है ख़वातीन की. क्योंकि अगर वो किचन में नहीं जाएंगी कि तो खाना कैसे बनेगा, और डेली बेसिस पे बाज़ार का खाना जो है ना वो वैसे ही अच्छा नहीं लगता. इस मौसम में दिल कर रहा होता है कि हल्का फुल्का जो है ना मिर्च मसाला हो, मतलब बहुत तेज़ मिर्च मसाले ना हो, लाइट सी फूड हो, इस तरह का दिल कर रहा होता है. रोटी पकाने को तो बिल्कुल दिल नहीं करता है. बहुत दफ़ा जो है ना मैं कह लें कि डंडी मारने की जो है ना पूरी कोशिश कर रही होती हूँ. बाज़ू का जो है ना वो मेरे बच्चे मेरी बातों में आ जाते हैं लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चे कहते हैं नहीं मामा रोज़ रोज़ बाज़ार की रोटी नहीं खाई जाती. और इसमें कोई शक नहीं है कि घर में औरत मौजूद हो और वो घर की रोटी ना बनाए, वो घर उसका किचन जो है वो फैला पड़ा हुआ हो. मेरा ख्याल है जो काम वाली औरतें होती हैं ना वो इस चीज़ को बड़ा माइंड करती हैं, उनको खुद चैन नहीं आ रहा होता वो काम किए बगैर. और सिर्फ ख़वातीन की बात नहीं है, जिन लोगों को आदत होती है अपने हाथ से काम करने की ना वो कभी भी सुकून महसूस नहीं करते किसी दूसरे के किए काम की. जब तक वो अपने हाथों से कुछ कर नहीं लेते उनको सुकून नहीं आता. एनीवेज जी बहुत सारी बातें करेंगे आप लोगों से. बाहर निकलते वक्त ख्याल करें, गैर जरूरी बाहर मत जाएं, पानी की बोतल अपने साथ रखें, सनग्लासेस का इस्तेमाल करें, एक अच्छा सा सनब्लॉक यूज करें ताकि आपकी स्किन खराब ना हो मेरी तरह. कहते ना गर्मी पुरजोर कोशिश कर रही है हमारी शक्लें हमारे आईडी कार्ड वाली तस्वीर से मिलाने की, तो आप भी कोशिश करें कि गर्मी को चांस ना दें और अच्छा सा सनब्लॉक जरूर यूज करें. प्रोग्राम का आगाज करते हैं इस खूबसूरत से कलाम के साथ, इसके बाद वापस आते हैं फिर आपको बताएंगे किस तरह से आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं प्रोग्राम में.
मुझे कहते हैं निमरा अरूज। अगर आप लोग इस टाइम रोड्स पर हैं, ड्राइव कर रहे हैं, तो ड्राइव केयरफुली, स्टिक अराउंड।

All right, welcome back. इस गाने को, इस कलाम को, सॉरी, अपने बैकग्राउंड में रखते हैं हम. और मैं आप लोगों को साथ साथ बताती चलती हूँ जी कि किस तरह से आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं प्रोग्राम में. एक तो जनाब आप लोगों को मालूम है हमारा फेसबुक पर ऑफिशियल पेज है FM 101 लाहौर का. उस पेज पर हमारी प्यारी सी पोस्ट अपडेटेड है. कोशिश करेंगे कि अब आने वाले दिनों में ना अपनी पोस्ट को भी अपडेट करें. कुछ नई तस्वीर, कुछ नया बैकग्राउंड होना चाहिए. तो जी आप उस पोस्ट पर जाएंगे और कमेंट करके प्रोग्राम में शामिल हो जाएंगे. इसके अलावा जी आप लोग हमें 4471 पर SMS कर सकते हैं. 4471 पर SMS करने के लिए क्या करना है, आपने जाना है अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन पे. वहां जाकर आप लिखेंगे 101, एक अदद देंगे स्पेस, अपना नाम लिखेंगे, अपना मैसेज लिखेंगे और उसको सेंड कर देंगे 4471 पर. और इसके अलावा 042-111-000-101 हमारा टेलीफोन नंबर है. इस नंबर पर आप लोग हमें कॉल करेंगे, लेकिन अभी नहीं, 12 बजे के बाद. आपको मालूम है कि ऑफ फेयर कॉल्स मैं बिल्कुल नहीं लेती. तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें SMS करें 4471 पर, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें हमारी पोस्ट पर. एक दफा फिर से बता दूं, 4471 पर SMS करने के लिए आपने जाना है अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन पे. वहां जाकर लिखेंगे 101, एक अदद देंगे स्पेस, अपना नाम लिखेंगे, मैसेज लिखेंगे और उसको सेंड कर देंगे 4471 पर. और इसके अलावा फेसबुक पर हमारा ऑफिशियल पेज FM 101 लाहौर का. इस पेज को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारी पोस्ट जो अपडेट होती है साथ साथ हर शो के साथ साथ, उस पोस्ट पर ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स किया करें. वेल जी, इस खूबसूरत से ट्रैक के बाद वापस आऊंगी और फिर आप लोगों के साथ मारेंगे हम गप्पे. एवी मेरे दिल को अच्छा लगा, मैंने कहा जी इसको मैंने जरूर शामिल करना है. आप लोग भी सुने, मैं भी सुनती हूँ, उसके बाद वापस आते हैं, फिर करते हैं ढेर सारी बातें. स्टिक अराउंड टू FM 101. मुझे कहते हैं निमरा अरूज, मेरा और आपका साथ रहता है एवरी सैटरडे 11 to 1 लेडीज लाउंज में. स्टिक अराउंड.

ऑलराइट। वैसे मेरा इरादा तो नहीं था कि मैं टेम्पो को स्लो करूँ, लेकिन बाज़ूका जो है ना वो हो जाता है, खुद हो जाता है। एनीवेज जी, आप लोग मेरा साथ दे रहे हैं, थैंक यू सो मच आप लोगों का। अभी कुछ ही देर तक आप लोगों के मैसेजेस ऑन एयर करूंगी। आजकल जो है ना वो रूटीन मेरा ख्याल है कि हर बंदे की टफ हुई हुई है। एक तो गर्मी बहुत ज़्यादा है, दूसरा जो है ना वो गर्मियों की छुट्टियां हुई हुई हैं, बच्चों को समर वेकेशंस चल रही हैं, और बच्चों का जो है ना वो ख्याल है हमेशा की तरह कि हमें कहीं ले के नहीं जाते। मेरा ख्याल है कि तमाम पेरेंट्स जो है ना उनको समझ नहीं आ रहा होता होगा मेरी तरह कि भाई बच्चों को किस तरह से खुश किया जाए, क्योंकि बच्चों की डिमांड्स जो है ना वो बड़ी डिफरेंट सी होती हैं। उनका ख्याल होता है कि जी आउटिंग के लिए भी जाना है, फिर उसके बाद जो है ना वो खाना भी अच्छा बनाना है, अच्छा मिले, और उसके अलावा जो है ना खाना भी मनपसंद मिले और हर थोड़ी देर के बाद मिले। फिर जब लेट नाइट उनको मतलब प्लान उनका ये होता है, माँ बाप ने जाना है अपने कामों पर, और बच्चों का प्लान होता है कि नहीं जी हमने तो लेट सोना है, ये एक बड़ी लड़ाई होती है कि जी नहीं हमने सुबह काम पर जाना है, तो बच्चे कहते हैं कि नहीं नहीं हमने तो देर से सोना है, आप सो जाएं। और मुझे समझ नहीं आती है कि माएं कैसे जो है ना वो बच्चे जाग रहे हों, तो माएं कभी सो ही नहीं सकती मेरा ख्याल है, जब तक बच्चा नहीं सो जाता। तो इंतजार में होते हैं कि जी बच्चा सोएगा तो हम अपने अपने बिस्तरों में जाएंगे और हम सोएंगे, अदरवाइज जो है ना वो मेरा ख्याल है कि बार बार मेरी तरह जो है ना वो इंतजार में और आवाजें लगा लगा के माएं थक जाती होंगी कि भाई सुन लो अब। और मजाल है जो बच्चे एक दफ़ा में सुन लें कि जी ठीक है मामा हम आ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। बच्चे कहते हैं कि नहीं वी आर राइट, आप गलत हैं हम ठीक हैं। right अच्छा मैंने बैकग्राउंड ऑन एयर किया था कोई बात नहीं। खैर जी, बच्चों की समर वेकेशंस को यूज़फुल कैसे बनाया जाए? बच्चे कहते हैं हम सारा दिन पढ़ पढ़ के थक जाते हैं, हालांकि सारा दिन कोई नहीं पढ़ रहे होते, बच्चे खेल रहे होते हैं। सबसे पहले तो सुबह उठ के उनको नाश्ता जो है ना मनपसंद चाहिए, और नाश्ते में उनको खुद नहीं समझ आ रही होती कि जी गर्मी लग रही है क्या खाना है। खैर अल्लाह अल्लाह करके जो है ना वो नाश्ता होता है, और उसके बाद जो है ना कंप्यूटर होता है, टीवी होता है, गैजेट्स जो है ना वो होते हैं जिन बच्चों के पास। अच्छा मैं मोबाइल जो है ना वो जल्दी बच्चों को नहीं देती बिल्कुल भी, हाँ कंप्यूटर है, टीवी है जो बच्चे देख लेते हैं। इसके अलावा जो है ना वो कोई ऐसी एक्टिविटीज़ ज़रूर होनी चाहिए बच्चों की, अगर आप आउटडोर नहीं जा सकते हैं, ऑब्वियसली हर कोई जो है ना वो नहीं जा सकता आउटडोर और एक्टिविटीज़ के लिए। और इसके अलावा गर्मी जो है वो इतनी ज़्यादा है कि वैसे ही दिल नहीं करता, और शाम को जो है ना वो जब निकलने की बारी आती है तो फिर काफ़ी टाइम हो चुका होता है, लेट हो चुका होता है, फिर दिल नहीं करता निकलने को, मतलब मज़ीद कोई मसले मसाइल जो है ना वो हाइल हो जाते हैं। तो मेरा ख्याल है कि बच्चों को जो है ना वो कोई इस तरह की एक्टिविटीज़ देनी चाहिए हैं, कोई घर के कामों में बच्चों को पार्टिसिपेट ज़रूर कराना चाहिए। एटलीस्ट बच्चों को ये आदत ज़रूर डालनी चाहिए कि ओके आपने जिस बर्तन में खाया है एटलीस्ट आप वो जाके धो के रखे आएँ, या फिर जो है कोई पेंटिंग वगैरह जिस चीज़ में भी बच्चों का इंटरेस्ट है ना तो उस वो चीज़ जो है ना बच्चों को ज़रूर करने दिया करें। पेंटिंग करना चाह रहे हैं ज़रूर करने दें। उसके अलावा जो है ना बहुत सारे बच्चे छोटे बच्चे जो है ना वो टॉयज़ के साथ खेल रहे होते हैं, तो उनको टॉयज समेटने का कि भाई आपने खेल लिया है तो आपको खुद इसको रैपअप भी करना है, सारी चीज़ें समेटनी है, इस तरह की आदत डलवाएं। ये बात मैं इसलिए कर रही हूँ कि मुझे ना कल एक बड़ी एक मज़े की चीज़ पढ़ने को मिली, और उसके मुताबिक क्या था जी, वैसे नॉर्मली हमारे यहाँ ये ट्रेंड है ना कि माँ बाप को ही कहा जाता है, ज़िम्मेदार ठहराया जाता है कि जी माँ बाप का काम है बच्चों की तरबियत करना। तो कल एक मैंने बहुत अच्छी किसी की सेइंग पड़ी, और उसमें ये था कि जी जॉइंट फैमिली के अंदर जो है ना बच्चे की तरबियत के ज़िम्मेदार सिर्फ माँ बाप नहीं होते, बल्कि घर में रहने वाले सारे अफराद इस तरबियत में शामिल होते हैं, क्योंकि बच्चा देख के ही सीखता है। और इसमें कोई शक नहीं है कि बच्चे को आप जो कह रहे होते हैं ना बच्चा वो कभी भी नहीं करता, बच्चा वो करता है जो आप खुद कर रहे होते हैं। और अक्सर आपने देखा होगा कि जब आप बच्चे को कोई ऐसी बात करते हैं ना तो आगे से फट से जवाब आता है कि भाई आप भी तो ऐसे कर रहे थे, कल भी तो आपने ऐसे किया था। ओए होए, अगर बच्चे के सामने आपने कभी किसी गेट पे कोई आ गया और आपने जी मैसेज कहलवा दिया है कि जी मैं घर पे नहीं हूँ, तो कल को वही बच्चा जो है ना रिटर्न आपको आंसर जो है ना वो यही कर रहा होता है कि भाई आपने भी तो झूठ बोला था। तो इसलिए जो है ना सिर्फ माँ बाप को कहना और ये बड़ा गलत हो जाता है, क्योंकि बच्चे जब कुछ गलत करते हैं ना तो होता है कि जी अम्मा अब्बा ने नहीं सिखाया होगा इनके, और जब बच्चा अच्छा कर रहा होता है ना तो फिर उसके क्रेडिट लेने के लिए सारे बैठे होते हैं।
मैं कभी भी जॉइंट फैमिली के खिलाफ नहीं हूँ क्योंकि मैं खुद जॉइंट फैमिली से बिलोंग करती हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत अच्छा टाइम गुजारा हुआ है. लेकिन अब कुछ टाइम इस तरह का चल रहा है कि लोगों में बर्दाश्त नहीं है, एक दूसरे को सहने का, एक दूसरे को दरगुजर करने का हौसला मौजूद नहीं है. वहाँ पे जो है ना मामलात काफ़ी ख़राब हो जाते हैं. बट हमारे टाइम में हमारा बचपन इस तरह का बिल्कुल नहीं था. हमारा बचपन बहुत प्यारा था. हमारे मामलात जो है ना वो तमाम बड़ों के पास होते थे और हमारे लिए तमाम बड़े जो है ना वो एक जैसे होते थे. ये नहीं था कि सिर्फ अपने माँ बाप की बात सुननी है, बाकी जो बड़े हैं घर में कोई ताया चचा कोई कज़न्स बड़े उनकी बात नहीं सुननी, ऐसा कुछ भी नहीं था. हमें पता होता था कि जी हमारे पेरेंट्स अगर घर से बाहर गए हुए हैं ना तो पीछे जो है ना वो हमारे ताया हैं, हमारे चचा हैं या हमारे बड़े कज़न्स हैं जो हमसे एज में सीनियर हैं, वो हमारे बड़े मौजूद हैं और हमारे से पूछ कुछ होगी. ये एक माइंड में हमारी एक चीज़ ना बैठी होती थी. जबकि अब क्या है जी, अब तो ऐसा है कि जी अगर किसी बच्चे को कोई डांट दिया जाए, कुछ इस तरह से कह दिया जाए ना, तो फौरन पहले पेरेंट्स पहुंच जाते हैं कि नहीं जी आपने हमारे बच्चे को कहा ही क्यों. जिसकी वजह से बच्चों के अंदर जो है ना वो खुद पसंदी कह लें या सब्र और बर्दाश्त, ये सब कुछ जो है ना वो ख़त्म होता जा रहा है क्योंकि बच्चे अपने बड़ों से सीख रहे होते हैं. तो इसलिए अपना रवैया, अपनी आदत ऐसी ज़रूर रखनी चाहिए हैं कि एटलीस्ट आप बच्चे को कह सकें कि मैंने जो है ना ये आपको ये भी करना सिखाया है, आपको ये भी अमल करना चाहिए, इस बात पर भी अमल करना चाहिए, जो कि नॉर्मली हमारे यहाँ नहीं होता. एनीवेज जी, अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी थिंकिंग है. अभी आजकल ना एक ड्रामा आ रहा है, बस तेरा साथ हो. मैंने पहले वो ड्रामा नहीं देखा था, अच्छी खासी उसकी एपिसोड्स गुजर चुकी हुई हैं. बट अभी क्या हुआ था, मेरा ख्याल है मैंने कोई रील्स देखी हैं, उसमें मैंने देखा था कि जी वो फरहान सईद को जो है ना वो मेरा ख्याल है उसकी कोई प्रॉपर्टी वगैरह ज़बरदस्ती ताया जो है ना अपने नाम करवाने की कोशिश कर रहे हैं और आगे से सना जावेद जो है ना वो बड़ी निडर बनकर उनके सामने आके खड़ी हो जाती हैं. तो वहाँ से जो है ना मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ कि भाई मैं देखूँ तो सही है क्या. तो शुरू की मेरा ख्याल है कोई 5-6 अभी एपिसोड्स मैंने देखी हैं और बड़ी फास्ट फॉरवर्ड लगा के देखी हैं. बट मुझे अच्छा लगा. अच्छा ये लगा कि उसमें कितने मज़े का मैसेज दिया हुआ है कि एक बच्चा जो बाहर से है तो अपना ही, लेकिन जस्ट इसलिए कि उसके पेरेंट्स ने अपनी मर्ज़ी से शादी की थी, इस वजह से जो है ना उसको वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते हैं. और उसके अलावा जो है वो जो घर में पहले उनकी ताई हैं, उनके बच्चे हैं, वो ताई अम्मी जो हैं वो बच्चों को इवन दादा अबू से बात करने के लिए जो है ना वो अच्छी उसको कह लें कि लर्निंग्स नहीं दे रही होती हैं, अच्छे तरीके से उनको नहीं बताया जा रहा होता कि बड़ों की आवाज़ पर जैसे बड़े आवाज़ दे रहे हैं, उनके दादा अबू उनको आवाज़ दे रहे हैं, लेकिन बच्चे जो है ना उस चीज़ को माइंड करें कि भाई क्यों बार बार जो है ना वो दादा अबू आवाज़ दे रहे हैं हमें, हम अभी स्कूल से अभी कॉलेज से आए हैं और बार बार जो है ना दादाबू की आवाज़ें लगना शुरू हो गई हैं. और वाकई ये बिल्कुल ठीक बात है, बहुत सारी जगहों पे बहुत सारे घरों में ना ये चीज़ बच्चों को नहीं बावर कराई जाती है कि भाई आपके बड़े जो है ना वो कोई दूसरा बड़ा, सिर्फ अपने माँ बाप की नहीं दूसरे बड़ों की भी आपने रिस्पेक्ट करनी है और उन्हीं की वजह से हम लोग हैं. जब आपके साथ आपका कोई बड़ा मौजूद होता है ना उस वक्त उसकी कदर का अंदाज़ा नहीं होता, लेकिन जब वो चला जाता है तो फिर अंदाज़ा होता है कि यार वो आपके लिए कितना मायने रखता था. और एक बड़े के जाने से ना घर आपका वीरान हो जाता है. तो एटलीस्ट अपने बच्चों को बड़ों का अदब करना ज़रूर सिखाएं. अगर आपके घर में कोई बड़ा बुज़ुर्ग मौजूद है, दादा दादी मौजूद हैं, कोई भी बड़ा, चाहे आपका अब कोई ताया चचा का रिश्ता मौजूद है, तो प्लीज़ बच्चों को बिल्कुल ये मत सिखाएं. एटलीस्ट बच्चों के मासूम जहन जो है ना वो ख़राब नहीं करने चाहिए. आपस के जो भी गिले शिकवे हों, जो भी क्लैशेज़ हों, एटलीस्ट बच्चों को जो है ना उस चीज़ में शामिल नहीं करना चाहिए है. क्योंकि फिर क्या होता है कि फिर वही बच्चे ये याद रखा करें कि मकफ़ात अमल है और वही बच्चे कल को आपके साथ सेम बिहेवियर करेंगे और फिर आपको रियलाइज होगा कि आपने क्या गलती की है. तो अगर आप चाहते हैं कि आपको कल को पछतावा ना हो तो एटलीस्ट जो है ना वो कोशिश करें. आप अपनी कोशिश तो कर सकते हैं ना बच्चों को अच्छा सबक देने की, अच्छा सिखाने की, तो वो कोशिश जरूर करें. वेल जी, 11:33 हो गए हैं. यासिर अख्तर का रिमिक्स वर्जन चला रही हूँ. अच्छा लगा था मुझे, इंजॉय कीजिएगा इसको. इसके बाद वापस आती हूँ. स्टिक अराउंड FM 101.

कुछ ट्रैक्स जो होते हैं ना वो हमेशा ही दिल को अच्छे लगते हैं, और जो हमारा पुराना पॉप म्यूजिक था ना उसकी तो क्या ही बात है, जब सुनो नया लगता है। एनीवेज जी, आप लोगों के मैसेजेस की जाने पड़ते हैं, कौन कौन हमारे साथ शामिल हो रहा है प्रोग्राम में ये मैं आप लोगों को बताती चलती हूँ। फरहाद मेमन साहब मौजूद हैं, अस्सलाम वालेकुम आपी, क्या हाल हैं, खुश हो, और क्या कह रहे हैं, सबसे पहले तो वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और कह रहे हैं जी आपी आज आपको ऑन एयर देख कर बहुत खुशी हुई है, बहुत दिनों के बाद आपको सुन रहे हैं। बिल्कुल जी, मैं भी बहुत दिनों के बाद आप लोगों से बातचीत कर रही हूँ, कुछ थोड़ी सी मसरूफियात ऐसी चल रही थी, कुछ ज़िंदगी में इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं कि फिर सबसे ज़्यादा अहम भी वही होती हैं तो हम वहाँ पे फंस जाते हैं, और फिर उसके बाद जो है ना वो लगता है ऐसे ही है कि आप बिल्कुल वेले हो गए हैं, बिल्कुल आप मतलब एक अजीब सा दौर होता है जो ख़त्म हो जाता है, और बड़ा अहम दौर होता है, उसकी अहमियत का अंदाज़ा ही बाद में होता है जब वो वक्त गुजर जाता है। तो हमारे साथ भी जी कुछ ऐसे ही मामलात चल रहे थे ज़िंदगी के जिनको हम बिल्कुल नहीं छोड़ सकते, और सबसे अहम जो है ना वो वही चीज़ें होती हैं, आपका घर होता है, आपकी फैमिली होती है, आपके बड़े होते हैं। फरहाद मेमन साहब हमारे लिए बड़ी ढेर सारी तस्वीरें जिसमें स्वीट्स हैं, फ्रूट्स हैं, बहुत कुछ भेजा है जी, बहुत शुक्रिया आपका। नज़ीर खोसो साहब मौजूद हैं सोबतपुर बलोचिस्तान से, कह रहे हैं जी इंसान दूसरों के दिए हुए जख्म तो उंगलियों पर गिनता है मगर जब अपनी बारी आए तो हिसाब की पूरी किताब ही गायब कर देता है। नो डाउट, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। ऐसे लोग मतलब ज़िंदगी ना बहुत बड़े बड़े एक्सपीरियंसेस करवाती है, ऐसे लोग भी देखे हैं जो सारी ज़िंदगी लोगों की अजियत बना देते हैं, इंटरफेरेंस इतनी ज़्यादा होती है, इतनी ज़्यादा होती है कि मैं कहती हूँ मुझे समझ नहीं आता कि इतना जहर लेकर वो फिर कैसे रहे होते हैं, मतलब ज़िंदा कैसे होते हैं, और वो जहर दूसरे लोगों में ट्रांसफ़र करना जो है ना अपना फ़र्ज़ समझते हैं, और फिर उसके बाद क्या होता है, बंदा ख़त्म हो जाता है, फिर माफियाँ तलाफियाँ शुरू हो जाती हैं। तो ऐसी माफियों तलाफियों का क्या फ़ायदा जब इंसान की ज़िंदगी उसके टाइम में, जब उसका एक पीक टाइम था, उसका एक अहम टाइम था, वो टाइम आपने उसका ख़राब कर दिया, और उसके बाद आप सिर्फ़ एक माफ़ी मांग लें, और आप ये फिर एक्सपेक्ट भी करें कि अगला बंदा आपको माफ़ भी करेगा, माफ़ नहीं करेगा तो कोई बात नहीं, असी तो माफ़ी मांग ली सी, ये अल्फाज होते हैं। बस बोलते वक्त, कुछ भी कहते वक्त, कुछ भी करते वक्त ये ख्याल ज़रूर रखा करें कि आपके किसी अमल से कोई दूसरा तकलीफ़ में तो नहीं आ रहा, और दूसरों की ज़िंदगियों में इतना ही इंटरफेयर करें जितना आप अपनी ज़िंदगी में बर्दाश्त कर सकते हैं। मंजूर हुसैन अंसारी मौजूद हैं जी फैसलाबाद से, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, हमेशा खुश रहो, बहुत शुक्रिया सर आपका, आप भी खुश रहिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह भाई हैं जी हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हम्दुलिल्लाह मलाखेल फ्रॉम क्वेटा, वेलकम टू द शो, थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया आपका। अब्दुल रहमान हैं जी, अस्सलाम वालेकुम बाजी, वालेकुम अस्सलाम, आप शो अच्छा लगा है, आतिफ असलम की कवाली चला दो। आतिफ असलम ने भी कवालियाँ बनाना शुरू कर दी हैं, अच्छा लेट मी सर्च। वेल जी, लेडीज़ लाउंज है, और लेडीज़ लाउंज में हम वो बात ना करें जो हमारी प्यारी बहनों, प्यारी माओं, बेटियों के हवाले से ना हो, उनके मसले मसाइल को कवर ना करें, तो मेरा ख्याल है कि इस प्रोग्राम का फ़ायदा कोई नहीं है। कल ना बल्कि कल क्या मैं कहूँ कि पिछले कुछ अरसा जो है ना वो मेरा हॉस्पिटल में गुजरा था, मेरे फादर इन लॉ काफ़ी ज़्यादा बीमार थे, और फिर उसके बाद जो है ना वो दो ढाई हफ्ते जो है उनके उसके बाद उनकी डेथ हो गई थी, और इसीलिए हम लोग आ भी नहीं रहे थे, लेकिन बहरहाल जी ये तो ज़िंदगी के सिलसिले हैं, अल्लाह ताला उनकी मगफ़रत फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन, और ये चलने हैं, हर एक ने जाना है, किसी ने पहले जाना है, किसी ने बाद में जाना है। तो वहाँ पे जब आप बैठते हैं ना हॉस्पिटल, अल्लाह ना करे किसी को इस तरह से जाना पड़े और मतलब टाइम इस तरह से वहाँ पे गुजारना पड़े, बट सारा सारा दिन जब आप बैठते हैं आप बहुत कुछ ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी देख रहे होते हैं,
तो मेरे सामने ना वहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे आए, क्योंकि आईसीयू में थे तो वहाँ पे ना आते ही क्रिटिकल पेशेंट्स थे। वहाँ पे फीमेल, एक फीमेल ऐसी आई जो आफ्टर बर्थ जो है ना उसकी कंडीशन ख़राब हो गई थी और फिर उसकी अनफॉर्चुनेटली डेथ भी हो गई थी। तो वो सारे मामला जब मैं देख रही थी, और फिर मैं, मेरी आदत है, मेरे वहाँ पे ऑब्वियसली रेफरेंसेस होते हैं, ताल्लुकात आपके इस तरह से होते हैं कि आपको फिर पता लग जाता है कि अच्छा रीज़न क्या बनी थी। तो फिर मैंने सोचा कि यार कभी भी मुझे मौका मिलेगा, जब भी मैं शो करूँगी तो मैं अपनी उन बेटियों के बारे में ज़रूर बात करूँगी, उन बहनों के बारे में जो अपने मसाइल जो है ना वो शर्माते हुए लोगों के डॉक्टर पे नहीं जाती हैं, अपने बहनों को या अपने बड़ों को नहीं बताती हैं। और उसके बाद जब मामलात बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं तो फिर वो सोचती हैं कि यार अब क्या करें, या मसले हाथ से आगे निकल जाते हैं, उस नहज पर पहुंच जाते हैं जहां पर उनका इलाज जो है वो पॉसिबल नहीं होता, या मामलात इतने ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं कि उनकी हालत अपनी ख़राब हो जाती है। मैंने कहा ज़रूर मैं इस हवाले से बात करूँगी। छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो रेगुलर हमारे रूटीन में चल रही होती हैं, जिनको हम नज़रअंदाज कर देते हैं, और उसकी वजह से फिर कहीं ना कहीं जो है ना वो हमें बहुत ज़्यादा नुकसान भी उठाना पड़ जाता है। अच्छा, एक तो मैं बात करूँगी फाइब्रॉइड्स के हवाले से कि फाइब्रॉइड होता क्या है। ज़्यादा मैं इसके डीप उसमें तो नहीं जा सकती, ऑब्वियसली ऑन एयर जो है आपको ये भी ख्याल रखना पड़ता है कि बहुत सारी फैमिली सुन रही होती हैं, लेकिन मेरी कोशिश होगी कि उन लोगों के लिए, उन बच्चियों के लिए आवाज़ बनूँ जो अपने प्रॉब्लम्स जो है ना वो सही तरीके से समझा नहीं पाती हैं। क्या उनको कोई एक ऐसा रास्ता मिल जाए कि एटलीस्ट उनको पता हो कि यार अच्छा हमारे साथ ये कंडीशन चल रही है तो हमें किसी डॉक्टर पर जाना चाहिए, हमें अपनी किसी बहन को, अपनी माँ को, या अपनी किसी सहेली को, या घर की और किसी बड़ी औरत को अपना मसला ज़रूर बताना चाहिए। तो जनाब फाइब्रॉइड के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताती चलूं जी। फीमेल्स के साथ बाजुका जो है ना वो यूट्रस के अंदर जो है ना वो आप कह सकते हैं कि उसको क्या कहना चाहिए, आसान अल्फाज में बताऊं ना तो यूट्रस के अंदर या फिर उसके मुंह पर जो है ना वो गोश्त की एक गिरा सी बन जाती है, जिसे बहुत सारे लोग समझते हैं जी कोई कैंसर खुदा ना खासा हो गया है। हालांकि ये कैंसर नहीं होता, बहुत ही कम केसेस में जो है ना वो ये कैंसर की तरफ जाता है, बहुत कम, बहुत कम, ठीक है। लेकिन पहले समझने की ज़रूरत होती है कि ये है क्या। तो यूट्रस में जो है ना वो एक आप कह लें कि गोश्त का एक लोथरा सा या एक गांठ सी बन जाती है, गिरा सी बन जाती है, जो कि छोटी हो तो फिर पता भी नहीं लगता, लेकिन जब बड़ी हो जाती है ना तब जाके मसला करती है। और मसला किस तरह से पता चलता है, बहुत दफ़ा जो है वो मेंसेस बहुत ज़्यादा हो रहे होते हैं, और इसके अलावा जो है ना बहुत लंबा टाइम पीरियड चला जाता है, इसके अलावा जो है वो बार बार यूरिन आना, बार बार जो है वो कॉन्स्टिपेशन हो जाना, या बाज़ुकात खून की कमी हो जाना, ये सारी रीजंस होती हैं जिनको ख़वातीन जो है ना वो समझती हैं कि अच्छा जी काम ज़्यादा कर लिया होगा, कोई हैवी चीज़ उठा ली होगी जिसकी वजह से सारा कुछ हो रहा है, या थकावट हो गई है। और हम मज़ीद डिटेल में नहीं जाते हैं, इन चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं। अच्छा, एक एज भी है इसमें कि जी 35 से अबव जो है ना वो मोस्टली ख़वातीन के साथ इस तरह के मसले होते हैं, और इसमें सबसे बड़ा रीज़न ये होता है कि हार्मोनल चेंजेस आ रही होती हैं। हार्मोनल जब चेंज आता है तो आपकी बॉडी में दो तरह के हार्मोन्स जो है ना वो बन रहे होते हैं, जिसमें एस्ट्रोजन, और जो एस्ट्रोजन है वो फाइब्रॉइड को बड़ा करता है, जबकि प्रोजेस्टेरोन जो है वो उसको रोकता है। 35 के बाद जो है ना ये हार्मोन कम हो जाता है, और एस्ट्रोजन जो है वो कम अकेला जब हो जाता है तो फिर फाइब्रॉइड बढ़ने लग जाता है, और उसकी वजह से फिर क्या होता है, फिर मोटापा आ जाता है, लोअर एब्डोमिनल जो है ना वो मोटापा ज़्यादा बढ़ जाता है, फैट्स इकट्ठी होना शुरू हो जाती हैं, इसके बाद जो है ना वो फिर ब्लड की कमी भी हो जाती है,
और अगर अगर आप अपने बेसिक टेस्ट करवाएं और आपका एच बी 10 से कम आए और इसके साथ साथ जो ना ये मसले हों, मतलब ये आप कह लें कि एक सिलसिला है, फिर वो चलना शुरू हो जाता है। जब एच बी आपका 10 से कम होता है तो आपका लिवर कमज़ोर हो जाता है, और जब लिवर कमज़ोर होता है तो फिर एस्ट्रोजन जो फालतू होता है वो बार बार जिस्म से बाहर निकल रहा होता है, और उसकी वजह से जो है फाइब्रॉइड को मज़ीद मज़ीद खुराक मिल रही होती है। अच्छा, इसमें बहुत सारी फीमेल्स जो है ना, जो आपकी साइकोलॉजिकल कंडीशन होती है, जो आपके मूड स्विंग्स आ रहे होते हैं, उनको नज़रअंदाज कर रही होती हैं। अगर आप किसी टेंशन में हैं, उस वजह से भी जो है ना ये मसले मसाइल पैदा हो रहे होते हैं। अब लोग कहते हैं जी टेंशन से जो है वो यूट्रस का क्या ताल्लुक है। जी बहुत ताल्लुक है, बहुत ताल्लुक है। अब आप वैसे नॉर्मल देख लें कि अगर किसी का कोई इम्तिहान है तो या कोई टेंशन है तो बहुत सारे लोगों का पेट ख़राब हो जाता है, कोई टेंशन की वजह से जो है वो बार बार उन्हें वॉशरूम जाना पड़ता है। अब हालांकि देखा जाए तो टेंशन तो दिमाग में चल रही है ना, लेकिन बार बार वॉशरूम जाने की क्या ज़रूरत पड़ जाती है। ये इसी तरह जो है ना वो हमारी टेंशन का, हमारी दिमागी स्ट्रेस का ताल्लुक जो है ना वो हमारी यूट्रस से, हमारे हार्मोन से बहुत ज़्यादा होता है। प्यार की रोशनी चमक रही है, चाहतों की राह। तो इसलिए जो है अपनी इस कंडीशन को कभी भी नज़रअंदाज ना करें। अगर आपको लगता है कि आपको ये सारे मसले चल रहे हैं, आपकी जो डेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हो रही हैं, आपका आपका फैट जो है वो बढ़ता जा रहा है, आपका वज़न जो है बग़ैर किसी वजह के बढ़ा है, आपको लोअर एब्डोमिनल पेन रह रही है, या इस तरह के और बहुत सारे इंटरनल मसले चल रहे हैं, तो ज़रूर अपने किसी बड़े को बताएं। अगर आप ख़ुद डॉक्टर पर नहीं जा सकती हैं तो प्लीज़ अपने किसी बड़ी बहन को, किसी दोस्त को, फैमिली की और किसी बड़ी औरत को, जिसको आप जिसके साथ आप बात करने में रिलायबल हैं, कंफर्टेबल हैं, उसको ज़रूर जाके बताएं और डॉक्टर को ज़रूर चेक करवाएं। इसको नज़रअंदाज बिल्कुल भी मत करें। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ मैरिड फीमेल्स के साथ हो, ये अनमैरिड फीमेल्स के साथ भी हो सकता है। तो इसलिए प्लीज़ अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और इसको बिल्कुल भी इग्नोर मत करें। और अगर आप जो है प्रेग्नेंट हैं, आप एक्सपेक्ट कर रही हैं, तो अपना फुली चेकअप ज़रूर करवाएं इस हवाले से, इसको इग्नोर मत करें। बहुत सारी फीमेल्स मैंने ऐसी देखी हैं जो अपना लास्ट मंथ में आके जो है ना डॉक्टर पे जाती हैं, उससे पहले वो डॉक्टर को कंसल्ट ही नहीं करती हैं। डॉक्टर उसको बार बार कह रही है जी आप में ब्लड की कमी है, फूड अच्छा लें, स्ट्रेस कम करें, तो उसको इग्नोर कर दिया जाता है। बज़ाहिर वो एक नॉर्मल सी चीज़ लग रही होती है। हमारी फैमिलीज़ में बहुत दफ़ा कह दिया जाता है कि भाई तुम अनोखी औरत थोड़ी हो जो इस अमल से गुजर रही हो। भाई हर औरत का स्टेमिना डिफरेंट होता है। जो ख़वातीन ये कह देती हैं कि जी हम भी इस टाइम से गुजरे हैं, हमने भी जो है वो इतने बच्चे पैदा किए हैं और उसके बाद जो है हम सारे काम भी करते हैं, तो ये बात मान लें कि हर औरत का स्टेमिना फ़र्क होता है हर एक के लिए, हर चीज़ सूटेबल नहीं होती है, हर एक के मूड स्विंग्स डिफरेंट होते हैं, हर एक का वो टाइम पीरियड डिफरेंट होता है। तो मत इम्पोज करें अपनी कंडीशंस किसी दूसरे पर। मैं डॉक्टर नहीं हूँ, ठीक है। अगर कोई समझ रहा हो कि जी अच्छा, मतलब कोई क्वेश्चन कर सकता ना कि आर यू अ डॉक्टर, तो आई एम नॉट अ डॉक्टर, लेकिन एटलीस्ट समझदार हूँ। और बीइंग अ वुमन, बीइंग अ वुमन मेरा ख्याल है कि मैं ही इन चीज़ों को नहीं समझूंगी और कन्वे नहीं करूँगी अपनी उन बहनों तक, उन फीमेल्स तक जो इन चीज़ों पर, इन टॉपिक्स पर बात करते हुए शर्माती हैं और उस वजह से उनके मसले मसाइल बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। हमारे यहाँ बहुत सारी फीमेल्स ऐसी हैं जो जिनको ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोज हुआ और बड़े लास्ट स्टेज पर जाके डायग्नोज हुआ, उसकी रीज़न क्या थी? उसकी रीज़न यही होती है कि वो अपना मसला बताते हुए शर्मा रही होती हैं, या उनको हम इस तरह का प्लेटफॉर्म ही नहीं देते हैं कि भाई वो अपनी बात खुलकर कर सकें, अपना मसला बयान कर सकें। तो प्लीज़ अपने घरों के माहौल को इस तरह से बताएं कि अगर आपकी बहन बेटी किसी मसले में है, किसी उलझन में है, किसी परेशानी में है, तो वो आपको आके सबसे पहले अपनी प्रॉब्लम बता सके, अपना जो भी इशू है, अपना दर्द जो है वो आपके साथ शेयर कर सके, ना कि वो शर्मो शर्मी खामोशी से बैठी रहे और फिर मसला इतना बढ़ जाए कि उसको उठाकर हॉस्पिटल लेकर जाना पड़े। आई होप कि किसी को मेरी बात बुरी नहीं लगी होगी और
समझ भी आई होगी। मेरे पास बहुत कुछ था इस पर कहने के लिए, लेकिन मैंने कहा अच्छा जी, इसको हम इतना सीरियस नहीं करते। अच्छा जी, हमें जाज अली हैं जी शरकपुर शरीफ लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल हैं आपके? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी, आप बताएं आप ठीक हैं? और इसके अलावा कौन है जी? बरकत हमदानी रमदानी सॉरी जमाली बलोच, थैंक यू सो मच जी आपका भी शामिल होने के लिए। और अहमद जाज अली ने बहुत सारी पिक्चर्स भेजी हैं, फ्लावर्स भेजे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हाय, गाना इतना अच्छा है कि दिल नहीं कर रहा वैसे मैं इसको ब्रेक लगाऊं, लेकिन करना पड़ेगा। नेक्स्ट ट्रैक की तरफ बढ़ते हैं, उसके बाद हम बढ़ेंगे न्यूज़ ब्रेक की जाने। न्यूज़ ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर आप लोगों से गपशप करते हैं। स्टिक अराउंड टू एफएम 101।

0: दिन के 12 बजे हैं। अस्सलामु अलैकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। सोनिया अदनान से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर-ए-आज़म तुर्की के सरकारी दौरे पर इस्तांबुल में हैं। सदर मुमलिकत ने अमरीका की आज़ादी की 250वीं सालगिरह पर अपने अमरीकी हम मनसब को मुबारकबाद दी है। यूरोपीय यूनियन ने गैर कानूनी तर्क वतन के खिलाफ पाकिस्तान के मौसर इकदाम की तारीफ की है। हुकूमत ने आज से एक हफ्ते के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की है। खबरें तफसील के साथ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तुर्की के सरकारी दौरे पर इस्तांबुल में हैं। इस्तांबुल के अतातुर्क हवाई अड्डे पहुंचने पर तुर्की के वज़ीर तिजारत डॉक्टर उमर बोलात, तुर्क वजारत खारजा के दीगर हुक्काम और पाकिस्तानी सिफारतखाने के अहदेदारों ने उनका इस्तकबाल किया।
1: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लारकाना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, बन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर, द बिगेस्ट एफएम रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। ट्यून इन टू द वन अबव एफएम 101.101।
2: For latest news headlines after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.
3: You're listening to FM 101, a bale bale or shower shower.
4: Get what you want. Get only the best music.
5: It is time for the music.
4: Continuous music.
6: Only on FM 101.
7: Step into the world of women and talk about everything that matters to you, from fashion to feelings and everything in between. Welcome to Ladies Lounge with your favorite RJ, Nimra Aruj.
8: Listen to all your real country right here.
9: We're playing Good Time.

0: चुकी है जिनसी तशद.
1: And now you are tuned into
2: FM 101.
0: टूट चुकी है जिनसी तशद्दुद की हर दीवार. महफूज खवातीन के लिए हुकूमत पंजाब है तैयार. वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ खवातीन के हुकूक के तहफ्फुज के लिए है पुरअज़्म. हर बार महफूज है जाए मुलाजमत सभी घर और हर बाजार.
3: आपकी हिफाजत आपका तहफ्फुज आपकी जिम्मेदारी मेरा फर्ज है.
0: तारीख में पहली बार वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन का कायम. पिंक बटन से फौरी पुलिस हेल्प का हुसूल. वुमेन सेफ्टी ऐप पुलिस प्रोटेक्शन ऐप हेल्पलाइन 1043 24 घंटे 7 दिन फाल. जेंडर बेस्ड वायलेंस के ट्रैकिंग सिस्टम का जल्द आगाज. जाए मुलाजमत पर हिरासगी के खिलाफ कानूनी तहफ्फुज. खवातीन के खिलाफ तशद्दुद में मुलव्वस अफराद को 2 साल कैद और 5 लाख रुपए तक जुर्माना. कम उम्र की शादी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई. चीफ मिनिस्टर डिजिटल स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम बराए दही खवातीन का इजरा वर्किंग कामयाबी से जारी. अपनी छत अपना घर प्रोग्राम और इलेक्ट्रिक बाइक स्कीम में खवातीन के लिए खसूसी कोटा. जिनसी तशद्दुद के खात्मे का एहसास पूरे पंजाब की हर बेटी तक. मरियम नवाज शरीफ की खवातीन से मोहब्बत अकीदत और शफकत. खवातीन का तहफ्फुज बन चुका है पंजाब की पहचान. हर औरत है बाइख्तियार. बढ़ रहा है सभी का मान. हुकूमत पंजाब.
4: दिस इज FM 101.
5: लेडीज एंड जेंटलमैन बॉयज एंड गर्ल्स
6: व्हाट्स न्यू यू विल नो इफ

राइट, वेलकम बैक वंस अगेन. आपको खुशामदीद कहते हैं, मुझे कहते हैं निमरा अरूज, और आप लोग सुन रहे हैं एफएम 101 रेडियो पाकिस्तान लाहौर. मेरा और आपका साथ रहता है एवरी सैटरडे 11 to 1 लेडीज लाउंज में. और अभी टाइम हो चुका है 12:08. जी, आप लोगों के कमेंट्स की जानिब बढ़ते हैं. और हमारे पास मैसेज 4471 पर जो है ना, वो मिराल जुल्फिकार का है. जी, कह रही हैं कि इंसान इतना हेटिंग क्यों होता है, खास तौर पर गर्ल्स. अच्छा, मुझे लगता था कि खाली लड़कियां जो है ना एक दूसरे से जेलिस होती हैं, और जो ये लेग पुलिंग होती है ना, खाली फीमेल्स करती हैं. या यूं कह लें कि वो जो एक अजीब सी प्रोफेशनल जेलिसी और इस टाइप की चीज़ें होती हैं ना, सारी फीमेल्स में होती हैं. लेकिन फिर मुझे फील हुआ, बल्कि मुझे समझ में आया कि नहीं, ये जो है ना मेल्स में भी होती है. और हाँ, शायद इजहार उसका जो है ना, वो मर्द हज़रात उस तरह से नहीं करते हैं, ख़वातीन का जो है वो नज़र आ जाता है, आप ये कह सकते हैं. लेकिन अगर आप सिर्फ इसको फीमेल्स के साथ मंसूब करें तो मेरा ख्याल है ये ज़्यादती होगी. प्रोफेशनल लाइफ में जो है ना, जब आप कहीं काम कर रहे होते हैं इकट्ठे, तो बहुत सारी जगहों पर आपको अजीब मतलब सिचुएशंस का सामना करना पड़ता है. बहुत सारे मर्द हज़रात भी जो है ना, उसी तरह जेलसी का, उसी तरह लेग पुलिंग कर रहे होते हैं, और उसी तरह हसद का मुजाहरा कर रहे होते हैं दूसरे की कामयाबी से. बहुत सारी मतलब जो लोग काम करते हैं, जो जॉब्स करते हैं, मेल्स एक दूसरे से जो है वो जेलस भी हो रहे होते हैं, एक दूसरे की पोजीशंस पर जो है ना उनको एतराज़ भी होता है, ऑब्जेक्शन भी होता है. ये कैसे आ गया, इस तरह की चीज़ें जो है ना वो जहन में चल रही होती हैं. तो हाँ, ख़वातीन की चीज़ें जेलसी आप ये भी कह सकते हैं कि उनकी छोटी छोटी चीज़ों से होती है. किसी के दूसरे का जो है ना ड्रेस अच्छा लग रहा है, भाई इसने मेरे जैसा ड्रेस क्यों ले लिया है, या इसका ड्रेस मेरे से ज़्यादा अच्छा है, या फिर जो है ना फलाना फंक्शन आ रहा है तो मैंने जो है ना फलाने से ज़्यादा अच्छा जो है ना वो ड्रेस लेना है, ज़्यादा महंगा जोड़ा होना चाहिए मेरा. तो इस तरह की चीज़ें होती हैं, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं. जी अच्छा, उसका मेकअप इतना

प्यारा क्यों लग रहा है? तो मतलब फीमेल्स के लिए जो मुझे लगता है ना कि जेलसी या इस तरह की चीज़ें नोट करना दूसरे को, ज़्यादा महंगा जोड़ा होना चाहिए मेरा, तो इस तरह की चीज़ें होती हैं, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जी. अच्छा, उसका मेकअप इतना प्यारा क्यों लग रहा है? तो मतलब फीमेल्स के लिए जो मुझे लगता है ना कि जेलसी या इस तरह की चीज़ें नोट करना दूसरे को, वो

मोहम्मद एम सादिक हैं जी, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। मंजूर हुसैन अंसारी कह रहे हैं जी, दुआएं वो फूल हैं जो ज़िंदगी की परेशानी में आसानी और कामयाबी की खुशबू बिखेरती हैं। दुआ है कि रब्बे जुल जलाल आपको सेहत वाली ज़िंदगी के साथ ता हयात सलामत और शादो आबाद रखे। या अल्लाह बीमारों को सेहत अता फरमा, आमीन सुम आमीन। बहुत प्यारी दुआ आपके लिए भी है और जज़ाकअल्लाह जी। वेल, आज मैंने को ख़ास तौर पर जो है ना वो बात करने के लिए टॉपिक कोई भी सिलेक्ट नहीं किया। उसकी रीज़न क्या थी? उसकी रीज़न ये थी कि मेरे माइंड में इतनी सारी चीज़ें चल रही हैं ना, और उसको मैं बोलना चाहूँ ना बोलना चाहूँ मुझे समझ नहीं आता। और सुबह जब मैं प्लान कर रही थी ना कि अच्छा, मैं रात तक मुझे पता था कि अच्छा मैंने शो के लिए जाना है, और बहुत सारी चीज़ें मैंने क्यू अप करके रखी हुई थी, लाइन अप करके रखी हुई थी, लेकिन जब सुबह हुई ना तो मेरा दिल किया कि यार मैं क्या करूँ। बस अजीब सी उलझन, अजीब सी बेचैनी जो है ना वो चल रही थी। फिर मैंने कहा नहीं, मुझे शो के लिए जाना चाहिए, और मैं आ गई। हमारे इर्द गिर्द ना बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो आपको नेगेटिव वाइब्स दे रहे होते हैं, जिनकी मौजूदगी आपके लिए ना बड़ी एक अजीब सी इरिटेशन का बाइस बनती है। अजीब सी एक कह लें कि बेचैनी शुरू हो जाती है कि यार ये बंदा जो है ना अल्लाह करके यहाँ से उठ के चला जाए। दिल ही दिल में हम दुआ मांग रहे होते हैं, लेकिन बस नहीं चल रहा होता हमारा। तो आज मेरा ख्याल है कि मैं आप लोगों से पूछती हूँ कि कभी आपके साथ कोई ऐसी सिचुएशन हो कि आप किसी ऐसी जगह मौजूद हैं जहाँ पे कोई ऐसा शख्स मौजूद है जिससे आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिव वाइब्स आती हैं, अंदर से जो है ना आपके कुछ लग रहा होता है यार अब कुछ हुआ, अब कुछ हुआ फीलिंग आती है ना किसी के बारे में, तो आप उससे किस तरह से पीछा छुड़ाते हैं, क्या करते हैं? आप साफ बोल देते हैं या छोड़ के चले जाते हैं या अवॉइड करते हैं या खामोशी से बैठे रहते हैं? ये आज आप मेरे साथ शेयर करें। 04211100101 हमारा टेलीफोन नंबर है, इस नंबर पर आप लोग हमें कॉल कर सकते हैं। मुझे कहते हैं निम्रा अरूज। वेल, 12:20 के बाद आप लोगों की लेती हूँ कॉल्स। से पहले जो है ना हम गाना प्ले करते हैं। गाना कौन सा गाना प्ले करने लगे हैं? गाना ये वाला प्ले करने लगे हैं जी, अहमद जहांजेब की आवाज़ है। और ये जब गाना मैंने सुना ना, ड्रामा भी देखा, वैसे ड्रामा मुझे इतना कोई खास पसंद नहीं आया। ड्रामा देखा मैंने, एक दो किस्से देखी हैं मैंने, लेकिन अभी मुझे उतना इंटरेस्टिंग नहीं फील हुआ। और ये गाना जो है ना मुझे कुछ इश्क मुर्शिद से मिलता जुलता फील हुआ, अंदाज थोड़ा सा मुझे वैसे ही महसूस हुआ, लेकिन अच्छा लगा तो मैंने कहा चलो जी शामिल करते हैं प्रोग्राम में। इंजॉय की जगह इसको, इसके बाद मेरे साथ प्रोग्राम में शामिल होइएगा। 04211100101 हमारा टेलीफोन नंबर है। और टॉपिक क्या है जी? टॉपिक ये है, क्या कभी आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है कि आप किसी महफिल में मौजूद हैं, किसी जगह मौजूद हैं, या कोई आपके घर मौजूद है कोई ऐसा शख्स जिससे के होने से आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिव वाइब्स आ रही हों, बहुत फील हो रहा हो कि यार कुछ गड़बड़ होने वाली है, लेकिन आपको मजबूरन उधर, मतलब आप उसको कुछ कह नहीं सकते, तो फिर आप क्या करते हैं? उठ के चले जाते हैं या बस खामोशी से बर्दाश्त करते हैं?

0: on si kaj se reba to se. Sapko ik hat sa zrulie.
1: जी वाह, कौन सीखा है सिर्फ बातों से, सबको एक हादसा ज़रूरी है। और इसमें कोई शक नहीं है जी, इंसान को ज़िंदगी जो है ना, वक्त जो है वो बहुत कुछ सिखा देता है। और आपको वैसे नहीं समझ आ रही होती, लेकिन टाइम जो है ना, वो कहते हैं बहुत बड़ा उस्ताद है। और यकीनन यकीनन आपने अपनी ज़िंदगी से बहुत कुछ सीखा होगा। और अक्लमंद भी वही है जो गलतियों से, दूसरों की गलतियों से सीखता है, अपने लाइफ के एक्सपीरियंस से सीखता है। और जो वक्त, जिस तरह की सिचुएशन चल रही हो ना, उसके अकॉर्डिंगली आपको बाजू का डिसीजन लेना पड़ता है। एनीवेज जी, 04221100101 हमारा टेलीफोन नंबर है, इस नंबर पर आप लोग हमें कॉल कर सकते हैं। एंड लेट्स सी हमारे साथ कौन है इस वक्त। ये क्या हुआ गाना, अच्छा चलें गाने को बंद करते हैं और अपना बीजीएम लेकर आते हैं और फिर आप लोगों के साथ साथ लेते हैं कॉल्स। अस्सलाम वालेकुम।
2: अस्सलाम वालेकुम
1: जी। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह भाई, क्या कहना चाहेंगे आप, ठीक हैं?
2: शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपकी शो सुन रहा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं तो यही कहना चाहता हूँ, हर इंसान की अपनी लाइफ जिंदगी होता है। अगर उसकी जिंदगी में कुछ मुश्किल आ जाए, कोई बेहतरी आ जाए, तो इंसान को हर हाल में सोचना चाहिए। चाहे आपकी जिंदगी में अच्छे लम्बी भी, फिर भी इंसान को सोच लेना चाहिए आपकी जिंदगी में परेशानी है, फिर भी हमें सोच लेना चाहिए। जब सोचेगा तो तरह परेशानी से भी निकल जाएगा और आप खुशी का और भी इस्तकबाल कर सकते हो।
1: बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और इसके अलावा कुछ कहना चाहेंगे? बस अब इंशाल्लाह आ गई हूँ ना मैं फॉर्म में, इसके बाद जो है वो इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूंगी कि मैं रेगुलर हो सकूँ। ठीक है,
2: ठीक है।
1: क्विटा क्विटा तो देखें जब मौका मिलेगा इंशाल्लाह।
2: ठीक है, क्योंकि पंजाब में तो गर्मी ज्यादा है।
1: गर्मी ज्यादा है, गर्मी तो वहाँ पे भी है, ये मुझे पता है। दिन वहाँ पे भी गर्म होता है,
2: वो तो है, फिर भी लाहौर की मुसीबत थोड़ा।
1: बिल्कुल ऐसे ही है। चलें, थैंक यू सो मच अल्हम्दुलिल्लाह भाई, अपना ख्याल रखिएगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। वल जी, क्विटा की गर्मी जो है ना, वो इस तरह की है कि बड़ी खुश्क है। मतलब वहाँ पे लास्ट ईयर भी मैं जून में, लास्ट ईयर नहीं, दो साल पहले मैं जून में गई थी और सडन जाना हुआ था। जाते साथ ही जैसे ही हम वहाँ लैंड किया है हमने, फौरन ही जो है ना वो अजीब सी ड्राइनेस आ गई थी। लिप्स मेरे जो हैं वो इतने फट गए थे ड्राई होके कि मुझे वहाँ जाके वैज़लीन बकायदा लगानी पड़ गई थी। और मतलब उन वहाँ जाके ना अजीब सी स्किन ब्लैकिश हो जाती है, आपका कलर सारा ख़राब हो जाता है, बाल अजीब से रूखे रूखे से हो जाते हैं। वहाँ का मौसम बहुत ड्राई है। हाँ, रातें बहुत ठंडी होती हैं, ठीक हो जाती हैं। मतलब वहाँ पे अगर लाइट गई हुई है रात के टाइम पे तो गुजारा हो जाता है। हाँ, हमारे यहाँ जो है वो हब्स वाला, पसीने वाला सीन होता है, वहाँ पे इस चीज़ की जो है ना बेहतर है वहाँ पे मौसम के, इस तरह की सिचुएशन नहीं होती है वहाँ पे। लेकिन वहाँ पे जो है ना आबो हवा बहुत ड्राई है, स्किन ख़राब हो जाती है। लेकिन जी अपना मज़ा है उस जगह का। और अल्लाह ताला ने तमाम जो हमें सूबे दिए हैं, तमाम हमारे शहर बहुत प्यारे हैं, बहुत खूबसूरत हैं, हर एक की अपनी ही अहमियत है। पूरा मुल्क हमारा बहुत प्यारा है, बस इससे प्यार करें, इसके साथ वफादार रहें, सारी चीज़ें खुद बखुद ठीक हो जाती हैं। वेल जी, नेक्स्ट कॉलर चेक करते हैं कौन है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। ओ रियली, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। ये थे हमारे रेगुलर कॉलर। अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम सलाम, क्या हाल है?
1: अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक। कौन बात कर रही हैं?
3: आज आप मुझे पहचाने में कौन हो?
1: बड़ा मुश्किल काम है। बहुत दिनों बाद आई हूँ ना, इसलिए आज मार्जिन दे दें मुझे। सॉरी,
3: इसलिए तो कहती हूँ रेगुलर आया करें, आप आती नहीं, छुट्टियाँ बहुत करती
1: हैं। बस मैं अब ना इधर लाइन, सॉरी
3: मैं फाइजा बात कर
1: रही हूँ। फाइजा, कैसी हैं आप? आप भी बहुत दिनों के बाद आई हैं। साजदा, साजदा, ओके, हाँ यस ठीक है। साजदा, आप भी बहुत दिनों के बाद आई हैं, पता है आपको?
3: नहीं तो मैं आती रहती हूँ, लेकिन आप ज़्यादा
1: छुट्टी नहीं, बस आपको पता
3: है आप मेरी बहुत बड़ी फैन है। मैं आपकी बहुत बड़ी फैन
1: है। नहीं नहीं, हम भी आपके बहुत बड़े फैन हैं, बेफिक्र हैं आप। कैसी हैं साजिदा आप?
3: हाँ जी बहुत, मैं ठीक ठाक, आपको बहुत ज्यादा मिस करती हूँ और आपकी शो का इंतजार होता है। यकीन करें आप पिछले हफ्ते भी नहीं आए तो
1: आपको पता है कि पिछले हफ्ते जो है ना वो वैसे ही ऑफिशियली जो है ना मैं नहीं आ सकती थी, क्योंकि आपको पता है कि मुहर्रम के इब्तदाई आयाम चल रहे थे, तो उसके एहतराम में हमने शोज वगैरह जो है ना वो नहीं चल रहे थे। ठीक हो गया?
3: हाँ जी। और ये जितनी बातें होती है, इतने गौर से सुनती है, एक एक अल्फाज आपके इतने कीमती होता है ना।
1: एक भी बात मेरी काम की नहीं होती है ना।
3: नहीं नहीं, जितनी आप बातें करती हैं ना, यकीन करिए हमारे नॉलेज में ना इजाफा करती हैं, बहुत अच्छी होती हैं।
1: थैंक यू जी, थैंक यू।
3: आपकी बातें इतने गौर से सुनती हूँ ना, बहुत काम की होती है बातें आपकी।
1: चलें चलें, किसी दिन आपका टेस्ट लेंगे हम, ठीक है?
3: नहीं, मैंने क्या टेस्ट देना है, यकीन करें आपकी बातें इतनी अच्छी होती हैं।
1: बहुत
3: थैंक
1: यू, थैंक यू सो मच जी। ऐसा कुछ नहीं है जी, हर बंदा अपनी अपनी काबिलियत होती है हर बंदे की। अच्छा मुझे ये बताएं कि आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि कोई ऐसा बंदा, कोई ऐसी शख्सियत आपके इर्द गिर्द मौजूद रहती हो जो जिनके साथ आपको ना बड़ी नेगेटिव वाइब्स आती हूँ, तो फिर क्या करती हैं आप?
3: हमारी फैमिली में भी है और फैमिली में और रिश्तेदारों में बहुत ज्यादा।
1: ठीक हो गया।
3: मैं ये मैरिज ना, जो बंदा नुकसान देता है, ये बात बात से टॉर्चर करता है या ये सिलसिलेदारी करता है, ये हमारे फायदे में नहीं है। मैं उससे ना हमेशा ना
1: साइड
3: पे रहती हूँ, तो जब वो आ जाता है या मैं चली जाती हूँ, अच्छा वो जितना मैं उससे ना दूर रहती हूँ उतना ही वो करीब, जैसे वो उतना ही वो आंखों के सामने घर में रहता है या देखने को मिलता है, और वो उतना ही टॉर्चर करता है।
1: कभी ऐसा हुआ है कि आपको नेगेटिव वाइब्स आ रही हो और वाकई कोई गलत चीज हो गई हो?
3: बहुत ज्यादा मैं टेंशन होती हूँ, और जैसे वो मेहमान आया और मैं कहती जल्दी से चला जाए, बैठ के वो बातें कर ही जाता है और मैं नजर अंदाज कर ही जाती हूँ। और ये क्लीन करे इतना मुझे गुस्सा आता है ना, और उतनी वो बातें कर ही जाता है, मैं कहती हूँ मैं क्या कहूँ इसे, तो मैं बहुत ज्यादा ना टेंशन में हो जाती हूँ। अगर फर्ज करो वो घर में आया है तो मैं फिर उसके सामने कम आती हूँ, या उससे पास भी बैठी हूँ तो उससे बात कम करती हूँ। मुझे पता है उसकी नेचर का, ये नेचर कहाँ से, इसकी सोच है कहाँ तक, बोलना इतने क्या कर रहा है, मैं भी चुप रहती हूँ।
1: सही सही, ठीक हो गया। ये नहीं चुप रहना जो है वो अच्छा है। फिर
3: मैं टेंशन में होती हूँ इतना ज्यादा, वो अच्छा वो फिर ना उसे भी शायद बता दियो इसे लगा के बात कर रही हूँ, ये कर रहा हूँ, उतनी ही वो तंजबाजी वो टॉर्चर करता है।
1: ठीक हो गया, ठीक हो गया, चलें ठीक हो गया। थैंक यू सो मच साजिदा, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा।
3: लोगों से मैं ना दूरी रहती हूं।
1: दूरी रहती हैं, चलें ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, चलें थैंक यू सो मच साजिदा,
3: बहुत मजा आ रहा है,
1: बहुत शुक्रिया।
3: सॉन्ग लगा देंगी?
1: कौन सा?
3: सात आसमाना दे, चले ये सॉन्ग लगा दें।
1: अच्छा, मेरा ख्याल है सरमद कदीर का है ना?
3: चलें ठीक हो गया। सब मेरे दोस्तों के नाम लगा दे, आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा दुआएं।
1: थैंक यू सो मच,
3: के लिए भी बहुत ज्यादा दुआएं।
1: बहुत शुक्रिया।
3: बच्चे ठीक
1: है? अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह का। ठीक है,
3: अल्लाह हाफिज़।
1: अल्लाह हाफिज़। और जी तो थी साजिदा हमारे साथ। कहते हैं ना बाज़ूकात इंसान जिसके बारे में नेगेटिव सोच रहा होता है या नेगेटिव वाइब्स आ रही होती हैं और बट डर रहा होता है कि यार अब कुछ गलत हुआ, अब कुछ गलत हुआ, जिसने काली जुबान या नज़र लग जाती है, नज़र बहुत बुरी है, और मोस्ट ऑफ द टाइम जो है ना उस बंदे के सामने कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा होता है, या उस बंदे के सामने जिसके हम अवॉइड कर रहे होते हैं कि यार कुछ ना हो, हम बस चुप करके पतली गली से निकल लें, तो वही बंदा जो है ना हमें बार बार बार बार हमें मजबूर कर रहा होता है कि नहीं जी आपने अभी यहीं बैठना है। जब आप घर के छोटे होते हैं ना तब तो मेरा ख्याल है कि आप इधर उधर खिसक लेते हैं, लेकिन जब आप घर के बड़े हैं तो आपको मजबूरन जो है ना उस बंदे को कंपनी भी देनी पड़ती है, मजबूरन उसके साथ बैठना भी पड़ता है, खामोश होके उसको बर्दाश्त करना पड़ता है। हाय ओए। वेल जी मुझे खुद नहीं पता मैंने प्ले क्या किया है। लेट्स सी क्या है ये, आप भी सुने और मैं भी सुनती हूँ। एंड कीप ऑन डायलिंग 042-111-0010।

0: Właśnie.
1: And now you are tuned into
2: FM 101
3: टूट चुकी है जिनसी तशद्दुद की हर दीवार, महफूज खवातीन के लिए हुकूमत पंजाब है तैयार। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ खवातीन के हुकूक के तहफ्फुज के लिए है पुरअज़्म हर बार। महफूज है जाए मुलाजमत सभी घर और हर बाजार।
4: आपकी हिफाजत, आपका तहफ्फुज, आपकी जिम्मेदारी मेरा फर्ज है।
3: तारीख में पहली बार वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन का कायम, पिंक बटन से फौरी पुलिस हेल्प का हुसूल। वुमेन सेफ्टी ऐप, पुलिस प्रोटेक्शन ऐप, हेल्पलाइन 1043, 24 घंटे 7 दिन फाल। जेंडर बेस्ड वायलेंस के ट्रैकिंग सिस्टम का जल्द आगाज। जाए मुलाजमत पर हिरासगी के खिलाफ कानूनी तहफ्फुज। खवातीन के खिलाफ तशद्दुद में मुलव्वस अफराद को 2 साल कैद और 5 लाख रुपए तक जुर्माना। कम उम्री की शादी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई। चीफ मिनिस्टर डिजिटल स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम बराए दही खवातीन का इजरा। वर्किंग वुमेन हॉस्टल्स और डे केयर सेंटर्स की फराहमी। धी रानी प्रोग्राम कामयाबी से जारी। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम और इलेक्ट्रिक बाइक स्कीम में खवातीन के लिए खसूसी कोटा। जिंसी तशद्दुद के खात्मे का एहसास पूरे पंजाब की हर बेटी तक। मरियम नवाज शरीफ की खवातीन से मोहब्बत, अकीदत और शफकत। खवातीन का तहफ्फुज बन चुका है पंजाब की पहचान। हर औरत है बाइख्तियार, बढ़ रहा है सभी का मान। हुकूमत पंजाब।
5: This is FM 101.
6: Listen to all your real country right here.
7: We're playing Good Time.

0: B101, just great music.
1: Alright ji, welcome back. Once again, aapko khush aamadeed kehte hain. Mujhe kehte hain Nimra Aruj. Aur aap log sun rahe hain FM 101 Radio Pakistan Lahore. Aap log mera saath de rahe hain 0422111001 par. Let's see hamare sath caller kaun hai. Assalamu alaikum. کیا حال ہے مشال آپ کے؟ آپ اپنے پنڈ تو واپس آ گئی ہیں؟
2: آ گئے الحمدللہ.
1: تو ہاؤ از یور ٹرپ؟
2: بہت اچھا جزاک اللہ خیر, بہت مزہ آیا, بہت اچھا لگا, بہت سارے لوگوں سے ملی تو بہت اچھا آ گیا تھا. فون پہ تو بات ہوتی تھی لیکن وہاں جا کر ان کے ساتھ رہنا اور بڑا اچھا لگا الحمدللہ.
1: ویری گڈ. آپ کی آواز میں اتنا زیادہ ڈسٹورشن کیوں ہے؟
2: اچھا سے لاؤڈ اینڈ کلیئر آ رہی ہے آپ کی؟
1: بس ہے بیچ میں. ہاں بہتر ہے, یس اب ٹھیک. نہیں پھر ہے. اچھا چلیں ہم بات کوشش کرتے ہیں سمجھنے کی. بالکل ایسے ہی ہے, مجھے کچھ کچھ سمجھ آ رہی ہے. اچھا خیر مشال مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے ساتھ کبھی ایسا ہوا ہے کہ کوئی نیگیٹو وائبز آ رہی ہوں اور جس بندے کے ساتھ آپ کو بہت زیادہ, کیا کرتی ہیں پھر آپ اس کے ساتھ؟
2: ویسے میرے ساتھ الحمد للہ بہت کم ایسا ہوتا ہے لیکن اگر ہو تو آئی تھنک کنارہ کشی کرنا اٹس اے بیسٹ وے. بٹ مجھے موسٹلی لوگوں سے اچھی وائب آتی ہے.
1: آپ کو
2: مجھے ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ مجھے لوگوں سے بہت اچھا سیکھنے کو, کچھ سمجھنے کو مل رہا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ میں جہاں بھی جاتی ہوں نا مجھے اچھے لوگ ہی ملتے ہیں الحمد للہ. ویری گڈ,
1: ویری گڈ.
2: بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ ایسا ہو لیکن اگر ہو تو آئی تھنک خاموشی سے ایک سائڈ پہ ہو جانا چاہیے بجائے کہ آپ اگر کچھ کرو اس کا کچھ فائدہ نہیں ہوتا کیونکہ ایک دم سے کسی کو نہ تو سمجھ آتی ہے اور نہ ہی آپ کچھ کر سکتے ہو.
1: لیکن بعض اوقات نا میرے جیسے لوگوں کے اندر نا ایک کیڑا ہوتا ہے جس کا دل کر رہا ہوتا ہے کہ ایسے بندے کو جو نا وہ بار بار جو اچھال اچھال کے باتیں بندہ لگا رہا ہوتا ہے نا اس کو ایک ایسا جواب, کرارا جواب دیا جائے جس سے اس کی
2: بالکل.
1: ہائے اب میں کیا بتاؤں آپ کو کھل کر. اور کچھ نہیں,
2: ہوں
1: آرام ہی. چلے مشال بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے,
2: تھینک یو سو مچ.
1: اپنا خیال رکھیے گا. تھینک یو, تھینک یو سو مچ, اللہ حافظ. ویل ہوتا تو یہی ہے کہ مطلب پہلی کوشش یہی ہونی چاہیے کہ یار ایسے لوگوں کو نا بندہ اوائڈ کرے, لیکن بعض اوقات آپ ایسے سناریوز میں پھنس جاتے ہیں کہ آپ اوائڈ بھی نہیں کر پاتے, آپ کو ہر حال میں ان سے تعلق نبھانا پڑتا ہے اور اس ٹائم نا پھر دل کر رہا ہوتا ہے کہ یار ان کو ایسا کرارا جواب دیا جائے نا کہ اندر تک ٹھنڈ پڑ جائے ہمارے. اور لیکن انفارچونیٹلی بہت ساری جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں پہ آپ جواب بھی نہیں دے سکتے, آپ کو جو ہے نا وہ خاموشی اختیار کرنی پڑتی ہے اور یہ میرا خیال ہے سب سے بڑا جو ہے نا وہ صبر ہوتا ہے, بڑا مشکل کا کام ہوتا ہے یہ. جی السلام علیکم.
3: ہیلو السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام, کیا حال ہیں آپ کے؟
3: الحمدللہ
1: بھی ٹھیک ہوں. اور یہ ایک دم سے پتہ نہیں لائن میں ڈسٹرکشن کیوں آ رہا ہے. رمیشا کیسی ہیں آپ؟
3: ٹرانسمیشن میں تھوڑی سی خرابی آ رہی ہے.
1: اچھا اوکے, میں پتہ کراتی ہوں.
3: آواز آپ کی بالکل جو ہے نا کبھی صاف ہو جاتی ہے کبھی خراب ہو جاتی ہے.
1: اچھا چلیں جی, میں ڈیزگنیٹڈ ڈپارٹمنٹ کو اپنے آپ کی جو بات ہے نا وہ فارورڈ کرتی ہوں اور پھر ان سے پوچھتے ہیں جی کیا ایشو آ رہا ہے. ٹھیک ہے تو رمشا آپ بتائیں کیا کہنا چاہیں گی. ٹاپک
3: میں ایک جگہ رکھتی ہوں نا وہاں پہ ریڈیو صاف ہو جاتا ہے, اب میں نے اس کو ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے کبھی ادھر کر رہی ہوں کبھی ادھر کر رہی ہوں.
1: چلیں کوئی نہیں, کبھی کبھی محنت کا پھل جو ہے نا وہ میٹھا ہوتا ہے نا, ویسے صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے لیکن محنت کا پھل بھی میٹھا ہوتا ہے.
3: کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی اور بیٹھک میں آئی, بیٹھک سے میں چھت پر آ گئی.
1: چھت پر دیکھ لے, زیادہ اوپر نہیں جانا آپ نے. ٹھیک ہے
3: نہیں نہیں
1: چلو اللہ خیر کرے. اچھا مجھے یہ بتاؤ ٹاپک کے حوالے سے کیا بات کرو گے آپ؟
3: टॉपिक के हवाले से भी मैं ये बात करूँगी कि वाकई हमारी फैमिली में ऐसे अक्सर होते हैं, हालांकि अपने कजन होते हैं, मामियाँ होती हैं, आंटियाँ होती हैं जो जेलसी फील करवाती हैं, तानाकशी करती हैं, लेकिन ना बात सफा ऐसा होता है कि बर्दाश्त होती है ना, एक हद तक होती है, बंदा बर्दाश्त करता रहता है। जब हालांकि कोई फैमिली अगर घर में जमा हुई हो ना तो वो जान के तीली लगाती है कि ताजी बच्ची क्या करती है, ताजी कुड़ी है नहीं करती। तो अभी बात तो ऐसा होता है, मेरी मम्मा हालांकि चुपचाप मुझे कहेंगी मेरी प्यारी बच्ची ये भी कर लो ये भी कर लो, पता नहीं उनको राग ही नहीं आता, वो फिर जो है ना आग को तीली लगाती है, फिर मैंने झटका पवा के छट दिया। अभी मुझे पता नहीं उनको क्या मिलता है, लेकिन ना बात सफा ऐसा होता है कि फैमिली के अंदर ना कुछ लोग आपको जान के टॉर्चर करते हैं, गलत बात करते हैं, लेकिन आप उनकी गलत बात पे ना चुप नहीं रह जाता, आप उनको ऐसा ठोक कर जवाब दें कि बंदा आगे से आपको कुछ दोबारा कहने वाला ना बने। ऐसा होता है कि आपकी बात सफा ना मेरी काफी मेरी मामियाँ या आंटी ऐसी बात कर देती है जो हालांकि गलत होती है, वो बात सच ही होती, तो फिर मैं बोल देती हूँ कि आप बात गलत कर रही है, तो वो दोबारा मुझे सारा बात कर दी, क्योंकि मेरी मम्मा मेरा बहुत साथ देती है, क्योंकि उनको पता है कि हमारे बच्चे जो है ना ऐसी बिल्कुल भी नहीं है।
1: चलिए वेरी गुड।
3: हाँ बर्दाश्त करना चाहिए, मैं बर्दाश्त भी कर जाती हूँ, लेकिन ये है कि हाँ बस अल्लाह पे छोड़ देना, लेकिन जो गलत बात है ना आप उससे बोलें, चुप
1: बोलना चाहिए। ठीक हो गया, ठीक हो गया। चले रमशा थैंक यू सो मच।
3: और आप ही प्लीज आप छुट्टियाँ मत क्या करें, देखिए आप
1: नहीं मैंने बिल्कुल नहीं रोका हुआ उनको, यकीन माने मैंने बिल्कुल नहीं रोका हुआ,
3: नहीं उन्होंने बताया था कि हम लोग छुट्टियाँ करते हैं, हम दोनों जुटते हैं।
1: अब वो इत्तफाक ऐसा हो जाता है, मैं क्या करूँ इस हवाले से।
3: आप देखिए बीच में मुहर्रम आ गया, मुहर्रम से पहले आप छुट्टियां कर रही
1: हैं। असल में ना अच्छा चले मैं बताती हूँ, हम थोड़ा सा बिजी इस तरह से थे कि मेरे फादर इन लॉ काफ़ी ज़्यादा बीमार थे और वो हॉस्पिटलाइज थे, ठीक है, तो 15 जून को उनकी डेथ हुई है, तो उसके दो दिन बाद मुहर्रम स्टार्ट हुए हैं, ठीक है, तो ये सारा सिलसिला था जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा मसरूफ़ थे हम लोग। और आपको पता है कि जब घर का कोई बड़ा इस तरह से बीमार हो और मतलब फिर आप पूरा घर जो है ना वो डिस्टर्ब भी होता है, परेशान भी होता है।
3: आमीन
1: सुम्मा आमीन, बस इसलिए हम लोग यहाँ आ रहे थे। आई नो, थैंक यू सो मच फॉर योर लव, बस दुआओं में याद रखा करें, ठीक है
3: जी, बिल्कुल ओके।
1: थैंक यू सो मच, आमीन, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। वेल जनाब, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, बाज़ुका ज़िंदगी की मसरूफियात ऐसी होती हैं जो हर हाल में आपके ऊपर एक क्या कहना चाहिए उसको, कि जो जिम्मेदारी होती है ना वो हर हाल में आपकी होती है और उसकी रिप्लेसमेंट कोई नहीं होती है। तो बहुत सारी जिम्मेदारियाँ सिर्फ आपकी ज़ाती होती हैं, आप जितनी मर्जी कोशिश करें किसी को रिप्लेस करने की कि अच्छा चलो हमारी जगह ये बंदा ड्यूटी दे ले, ऐसा हो नहीं सकता, वो आप ही को हर हाल में निभानी है। और जितना आप ख़ुद अपने अच्छे तरीके से उस चीज़ को निभा सकते हैं वो कोई दूसरा तीसरा इवन आपका कोई वर्कर उसको नहीं निभा सकता। खैर जनाब, हमारे साथ मैसेजेस कमेंट्स किसने किए हैं, मलिक मोहम्मद आदिल हैं जी, थैंक यू सो मच आपकी शमूलियत के लिए। मोहम्मद उर्स लगारी साहब हैं जी, अस्सलाम वालेकुम कह रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम मोहम्मद, अच्छा ये हो गया। एंड उसके बाद हैं जी मनाजिर महमूद मनाजिर हैं जी, और अस्सलाम वालेकुम आरजिन इमरारूज, हाउ आर यू, वेलकम टू द शो, थैंक यू सो मच जी। और कतर से हमारे साथ शामिल हो रहे हैं, बहुत शुक्रिया। और एम एजाज अली पूछ रहे हैं क्या आज जैनब अरशद का शो है। वल वैसे तो है शो और आई थिंक सो कि वो आएंगी भी। जलील हैं हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम। रहीम यार खान से शामिल हो रहे हैं, तमाम दोस्तों को सलाम पेश करते हैं, वालेकुम अस्सलाम तमाम दोस्तों की जानिब से। अभी हम बड़े एक छोटू से नन्ने मुन्ने से कमर्शियल ब्रेक की जानिब, उसके बाद वापस आएंगे, फिर आप लोगों की मज़ीद कॉल्स लेती हूँ, एंड होपफुली लास्ट कॉल होगी वो।
4: And now you are tuned into...
5: टूट चुकी है जिंसी तशद्दुद की हर दीवार, महफूज खवातीन के लिए हुकूमत पंजाब है तैयार। वजीरे आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ खवातीन के हुकूक के तहफ्फुज़ के लिए है पुरअज़्म, हर बार महफूज है जाए मुलाजमत सभी घर और हर बाजार।
6: आपकी हिफाजत आपका तहफ्फुज आपकी जिम्मेदारी मेरा फर्ज है।
5: तारीख में पहली बार वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन का कायम, पिंक बटन से फौरी पुलिस हेल्प का हुसूल, वुमेन सेफ्टी ऐप, पुलिस प्रोटेक्शन ऐप, हेल्पलाइन 1043, 24 घंटे 7 दिन फाल, जेंडर बेस्ड वायलेंस के ट्रैकिंग सिस्टम का जल्द आगाज, जाए मुलाजमत पर हिरासगी के खिलाफ कानूनी तहफ्फुज, खवातीन के खिलाफ तशद्दुद में मुलव्वस अफराद को 2 साल कैद और 5 लाख रुपए तक जुर्माना, कम उम्र की शादी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई, चीफ मिनिस्टर डिजिटल स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम बराए दही खवातीन का इजरा, वर्किंग वुमेन हॉस्टल्स और डे केयर सेंटर्स की फराहमी, धी रानी प्रोग्राम कामयाबी से जारी, अपनी छत अपना घर प्रोग्राम और इलेक्ट्रिक बाइक स्कीम में खवातीन के लिए खसूसी कोटा, जिंसी तशद्दुद के खात्मे का एहसास पूरे पंजाब की हर बेटी तक, मरियम नवाज शरीफ की खवातीन से मोहब्बत अकीदत और शफकत, खवातीन का तहफ्फुज बन चुका है पंजाब की पहचान, हर औरत है बाइख्तियार, बढ़ रहा है सभी का मान, हुकूमत पंजाब।
7: This is FM 101।
5: टूट चुकी है जिंसी तशद्दुद की हर दीवार, महफूज खवातीन के लिए हुकूमत पंजाब है तैयार, वजीरे आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ खवातीन के हुकूक के तहफ्फुज के लिए हैं पुरअज़्म, हर बार महफूज है जाए मुलाजमत सभी घर और हर बाजार।
6: आपकी हिफाजत आपका तहफ्फुज आपकी जिम्मेदारी मेरा फर्ज है।
5: तारीख में पहली बार वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन का कायम, पिंक बटन से फौरी पुलिस हेल्प का हुसूल, वुमेन सेफ्टी ऐप, पुलिस प्रोटेक्शन ऐप, हेल्पलाइन 1043, 24 घंटे 7 दिन फाल, जेंडर बेस्ड वायलेंस के ट्रैकिंग सिस्टम का जल्द आगाज, जाए मुलाजमत पर हिरासगी के खिलाफ कानूनी तहफ्फुज, खवातीन के खिलाफ तशद्दुद में मुलव्वस अफराद को 2 साल कैद और 5 लाख रुपए तक जुर्माना, कम उम्र की शादी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई, चीफ मिनिस्टर डिजिटल स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम बराए दही खवातीन का इजरा, वर्किंग वुमेन हॉस्टल्स और डे केयर सेंटर्स की फराहमी, धी रानी प्रोग्राम कामयाबी से जारी, अपनी छत अपना घर प्रोग्राम और इलेक्ट्रिक बाइक स्कीम में खवातीन के लिए खसूसी कोटा, जिंसी तशद्दुद के खात्मे का एहसास पूरे पंजाब की हर बेटी तक, मरियम नवाज शरीफ की खवातीन से मोहब्बत अकीदत और शफकत, खवातीन का तहफ्फुज बन चुका है पंजाब की पहचान, हर औरत है बाइख्तियार, बढ़ रहा है सभी का मान, हुकूमत पंजाब।
7: This is FM 101.

0: अरे जी, फरहान सईद की आवाज़ है जी, इस ड्रामे की मैं बात कर रही थी।
1: मुझे
0: Well, अभी तक जितनी मैंने कॉल्स ली हैं, मोस्टली जो है ना, लोग अपने रिलेटिव के बारे में बात कर रहे हैं। हालांकि ऐसा बहुत दफ़ा जो है ना, आपके वर्क प्लेसेस पर भी होता है कि आप किसी एक आधा कोई शख्स ऐसा होता है जिसके होने से ना बड़ी अजीब सी नेगेटिव वाइब्स आ रही होती हैं, नेगेटिव एनर्जी आ रही होती है, या कोई आपका सीनियर होता है, आपका कोई जूनियर होता है। और मोस्ट ऑफ द टाइम वैसे सीनियर्स होते हैं कि जिनके पास है ना, आपको जिनकी मौजूदगी से लगता है कि यार गड़बड़ी होनी है आज। सिर्फ रिलेटिव थोड़ी होते हैं, आई नो बहुत सारे लोग हमारे इर्द गिर्द होते हैं, और अल्लाह ताला हमें उनके शर से महफूज रखे, आमीन सुम्मा आमीन। बहुत दफ़ा आप चाह के भी जो है ना, आपको खामोशी इख्तियार करनी पड़ती है, कुछ अपनी तरबियत की वजह से, कुछ मसलहत की वजह से। कहना तो आप बहुत कुछ चाह रहे होते हैं लेकिन कह नहीं पाते, ये कह नहीं सकते, इसको ये कहना चाहिए, सिर्फ इसलिए कि घर का माहौल या आपके इर्द गिर्द का माहौल या आपके एनवायरनमेंट, जो आपका ऑफिस का एनवायरनमेंट है, वो ख़राब ना हो, या लड़ाई झगड़े से बचने के लिए। और मेरा ख्याल है कि ऐसे लोगों को फिर अवॉइड ही करना चाहिए, उनको उतनी ही रिस्पेक्ट देनी चाहिए जितना वो डिजर्व करते हैं, आसमान भी नहीं बिठाना चाहिए एटलीस्ट। एहसास बर्तरी जो है ना, ये बहुत बुरी चीज़ होती है, और अमूमन ऐसे लोग दूसरों की ज़िंदगियों में जहर इसीलिए घोलते हैं या दूसरों को गिराने की हर वक्त इसीलिए कोशिश करते हैं क्योंकि वो एहसास बर्तरी का शिकार होते हैं। अवॉइड करना चाहिए आई थिंक ऐसे लोगों को। एंजॉय कीजिएगा इस सॉन्ग को, इसके बाद वापस आती हूँ, स्टिक अराउंड।

0: एक बात बताऊं, मुझे भी FM 101 बहुत पसंद है और मैं बहुत सुनती हूं। आप भी सुनते रहें FM 101।
1: Tune in to one above FM 101.
2: Big radio, big style. Please, please. FM 101.
3: Listening to FM 101, Abale Bale Oshawa Shawa.

0: This is FM 101.
1: You're listening to FM 101, Abele Bele Oshawa Shawa.

अस्सलाम वालेकुम एंड अस्सलाम वालेकुम लाहौर पंजाब ही चुगन वाले गन्ने आदि रौन वालों मिठे ते रावी दे कंडे वसन वाले ते जिंदा दिलां दे शहर लोड़ तो एक बारी फिर थोड़े सब नाल मुखातिब ते मौजूद थोड़ी अपनी मेज़बान ज़ैनब अरशद जी लिसनर्स उम्मीद नहीं बल्कि यकीन रखते हैं कि साढ़े सारे सुनने वाले जिते भी होंगे ठीक ठाक होंगे खैरियत नाल होंगे हमेशा की तरह देसी बीट बारे उड़ीक रखते होंगे होंगे साड़ी आवाज़ दे मुंतजिर एक्साइटमेंट या फिर आवाज़ से थानू जी खुशी की झलक जी नज़र नहीं आ रही मतलब सुनाई दे रही है ते उदे तो तुसी इस चीज़ नूं महसूस कर सकते हो कि जिस तरह तुसी सारे प्रोग्राम्स नूं बड़ा मिस करते रहे सानू मिस करते रहे उस तरह ही असी सारे भी थानू बड़ा मिस करते रहे मैं सोचती सी कल बैठी कि जिस वेले प्रोग्राम बारे मैं तैयारी कर रही सी मैं देख रही सी कि केड़ी केड़े जनाब गीत जड़े ने वह चलाने चाहिए ने केड़ी केड़ी गलबात होनी चाहिए है तो एक गल मेरे ज़हन च घूमती सी कि वाकई इनवायरमेंट जड़ा ना थोड़ा माहौल जड़ा वह भी थानू उदास करता है ऐसा नहीं है कि कुछ चीज़ा थोड़ी ज़ाती नोइत दियाँ ही होन कुछ मसले मसाइल ऐसे होन कि जिद तो तुसी उदास होवो या परेशान होवो कभी इकदार ऐसा हुंदा है कि आपस का जिहड़ा एक माहौल हुंदा है या फिर किसी जगह का इनवायरमेंट हुंदा है थोड़ा ऑफिस हुंदा है थोड़ा इदारा हुंदा है थोड़ा स्टूडियो हुंदा है जिस वेले मैं सड़कों से टूरी आ रही सी टूरी नहीं सी आ रही खैर मतलब मिसाल मैं दे रही हूँ जिस वेले मैं स्टूडियोज़ वाल आ रही सी तो उन्होंने सड़कों में भी मैं बड़ा मिस कर रही सी क्योंकि बहुत दिनों तो बाद अज मैं आई हाँ खैर उम्मीद करेंगे कि बहुत सारिया गलों बात हमेशा की तरह अज्ज के प्रोग्राम च होणगियां शामिल गलबात करन वास्ते गलबात नूं अगे टोरन वास्ते थोड़े सब दियां मुहब्बतां चाहतां ते पार्टिसिपेशन ते मौजूदगी दा एहसास बड़ा ही जरूरी जिस तरह हर प्रोग्राम से तुसी सारे शामिल होंदे हो साथ देंदे हो साथ निभांदे हो एहसास दवांदे हो कि तुसी साड़े नाल मौजूद हो उस तरह ही देसी बीट च अज दे प्रोग्राम च भी जरूर शामिल होया जे सांझ पाया जे ते साथ दिया जे साथ निभाया जे तुसी सुन रहे हो रेडियो पाकिस्तान 101 FM दे लाहौर स्टूडियो तो ज़ैनब अरशद की आवाज़ नूं हुण तो लैके ठीक तीन बजे ताईं जनाब थोड़ा साडा साथ जिहड़ा है और रहण वाला है अज दे दिन ते झाती पाईए ते जुलाई दी 4 तरीक अज हफ्ता है अज है सैटरडे यानी है वीक स्टूडियो तो ज़ैनब अरशद की आवाज़ नूं हुण तो लैके ठीक तीन बजे ताईं जनाब थोड़ा साडा साथ जिहड़ा है और रहण वाला है

0: This is FM 101.
1: You're listening to FM 101, Abale Bale Oshawa Shawa.

0: टूट चुकी है जिंसी तशद्दुद की हर दीवार। महफूज खवातीन के लिए हुकूमत पंजाब है तैयार। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ खवातीन के हुकूक के तहफ्फुज के लिए है पुरअज़्म हर बार। महफूज है जाए मुलाजमत सभी घर और हर बाजार।
1: आपकी हिफाजत, आपका तहफ्फुज, आपकी जिम्मेदारी मेरा फर्ज है।
0: तारीख में पहली बार वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन का कायम। पिंक बटन से फौरी पुलिस हेल्प का हुसूल। वुमेन सेफ्टी ऐप, पुलिस प्रोटेक्शन ऐप, हेल्पलाइन 1043, 24 घंटे 7 दिन फाल। जेंडर बेस्ड वायलेंस के ट्रैकिंग सिस्टम का जल्द आगाज। जाए मुलाजमत पर हिरासगी के खिलाफ कानूनी तहफ्फुज। खवातीन के खिलाफ तशद्दुद में मुलव्वस अफराद को 2 साल कैद और 5 लाख रुपए तक जुर्माना। कम उम्री की शादी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई। चीफ मिनिस्टर डिजिटल स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम बराए दही खवातीन का इजरा। वर्किंग वुमेन हॉस्टल्स और डे केयर सेंटर्स की फराहमी। धी रानी प्रोग्राम कामयाबी से जारी। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम और इलेक्ट्रिक बाइक स्कीम में खवातीन के लिए खसूसी कोटा। जिंसी तशद्दुद के खात्मे का एहसास पूरे पंजाब की हर बेटी तक। मरियम नवाज शरीफ की खवातीन से मोहब्बत, अकीदत और शफकत। खवातीन का तहफ्फुज बन चुका है पंजाब की पहचान। हर औरत है बाइख्तियार, बढ़ रहा है सभी का मान। हुकूमत पंजाब।
2: Listening to FM 101, Abale Bale Oshawa Shawa.

0: FM 101.1 टूट चुकी है जिंसी तशद्दुद की हर दीवार, महफूज खवातीन के लिए हुकूमत पंजाब है तैयार। वजीरे आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ खवातीन के हुकूक के तहफ्फुज के लिए हैं पुरअज़्म। हर बार महफूज है जाए मुलाजमत, सभी घर और हर बाजार।
1: आपकी हिफाजत, आपका तहफ्फुज, आपकी जिम्मेदारी मेरा फर्ज है।
0: तारीख में पहली बार वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन का कायम, पिंक बटन से फौरी पुलिस हेल्प का हुसूल। वुमेन सेफ्टी ऐप, पुलिस प्रोटेक्शन ऐप, हेल्पलाइन 1043, 24 घंटे 7 दिन फाल। जेंडर बेस्ड वायलेंस के ट्रैकिंग सिस्टम का जल्द आगाज। जाए मुलाजमत पर हिरासगी के खिलाफ कानूनी तहफ्फुज। खवातीन के खिलाफ तशद्दुद में मुलव्वस अफराद को 2 साल कैद और 5 लाख रुपए तक जुर्माना। कम उम्र की शादी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई। चीफ मिनिस्टर डिजिटल स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम बराए दही खवातीन का इजरा। वर्किंग वुमेन हॉस्टल्स और डे केयर सेंटर्स की फनाह में धी रानी प्रोग्राम कामयाबी से जारी। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम और इलेक्ट्रिक बाइक स्कीम में खवातीन के लिए खसूसी कोटा। जिंसी तशद्दुद के खात्मे का एहसास पूरे पंजाब की हर बेटी तक। मरियम नवाज शरीफ की खवातीन से मोहब्बत, अकीदत और शफकत। खवातीन का तहफ्फुज बन चुका है पंजाब की पहचान। हर औरत है बाइख्तियार, बढ़ रहा है सभी का मान। हुकूमत पंजाब।
2: Listening to FM 101, Abale Bale Oshawa Shawa.

0: This is FM 101.
1: You're listening to FM 101, Abele Bele Oshawa Shawa.

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

0: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।
1: टूट चुकी है जिंसी तशद्दुद की हर दीवार, महफूज खवातीन के लिए हुकूमत पंजाब है तैयार। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ खवातीन के हुकूक के तहफ्फुज के लिए है पुरअज़्म। हर बार महफूज है जाए मुलाजमत सभी घर और हर बाजार।
2: आपकी हिफाजत, आपका तहफ्फुज, आपकी जिम्मेदारी मेरा फर्ज है।
1: तारीख में पहली बार वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन का कायम, पिंक बटन से फौरी पुलिस हेल्प का हुसूल। वुमेन सेफ्टी ऐप, पुलिस प्रोटेक्शन ऐप, हेल्पलाइन 1043, 24 घंटे 7 दिन फाल। जेंडर बेस्ड वायलेंस के ट्रैकिंग सिस्टम का जल्द आगाज। जाए मुलाजमत पर हिरासगी के खिलाफ कानूनी तहफ्फुज। खवातीन के खिलाफ तशद्दुद में मुलव्वस अफराद को 2 साल कैद और 5 लाख रुपए तक जुर्माना। कम उम्री की शादी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई। चीफ मिनिस्टर डिजिटल स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम बराए दही खवातीन का इजरा। वर्किंग वुमेन हॉस्टल्स और डे केयर सेंटर्स की फराहमी। धी रानी प्रोग्राम कामयाबी से जारी। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम और इलेक्ट्रिक बाइक स्कीम में खवातीन के लिए खसूसी कोटा। जिंसी तशद्दुद के खात्मे का एहसास पूरे पंजाब की हर बेटी तक। मरियम नवाज शरीफ की खवातीन से मोहब्बत, अकीदत और शफकत। खवातीन का तहफ्फुज बन चुका है पंजाब की पहचान। हर औरत है बाइख्तियार, बढ़ रहा है सभी का मान। हुकूमत पंजाब।
3: सुनते रहिए FM 101 101।

0: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।
1: बिग आइडिया चेक, पैशन चेक, लेकिन स्केल करने के लिए क्लाउड रिसोर्सेज, यहाँ स्टार्टअप्स को मुश्किल पेश आती है, मगर अब नहीं। इग्नाइट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ आईटी एंड टेलकॉम ला रहा है प्राइम मिनिस्टर्स क्लाउड प्रोग्राम फॉर स्टार्टअप्स। टियर 1 और टियर 2 के लिए क्लाउड एक्सपेंसेस पर हासिल करें $13,500 की रीइंबर्समेंट और इसके साथ एक्सपर्ट क्लाउड एडवाइजरी की सपोर्ट, जिससे आप अपने स्टार्टअप को बआसानी स्केल कर सकते हैं। आज ही अप्लाई करें ignite.org.pk पर। एप्लीकेशन जमा करवाने की आखिरी तारीख 10 जुलाई 2026 है। डॉलर तक की रीइंबर्समेंट और इसके साथ एक्सपर्ट क्लाउड एडवाइजरी की सपोर्ट, जिससे आप अपने स्टार्टअप को बआसानी स्केल कर सकते हैं। आज ही अप्लाई करें ignite.org.pk पर। एप्लीकेशन जमा करवाने की

0: शुक्रिया आपने FM 101 ट्यून किया।
1: टूट चुकी है जिंसी तशद्दुद की हर दीवार, महफूज खवातीन के लिए हुकूमत पंजाब है तैयार। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ खवातीन के हुकूक के तहफ्फुज के लिए है पुरअज़्म हर बार। महफूज है जाए मुलाजमत सभी घर और हर बाजार।
2: आपकी हिफाजत, आपका तहफ्फुज, आपकी जिम्मेदारी मेरा फर्ज है।
1: तारीख में पहली बार वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन का कायम, पिंक बटन से फौरी पुलिस हेल्प का हुसूल। वुमेन सेफ्टी ऐप, पुलिस प्रोटेक्शन ऐप, हेल्पलाइन 1043, 24 घंटे 7 दिन फाल। जेंडर बेस्ड वायलेंस के ट्रैकिंग सिस्टम का जल्द आगाज। जाए मुलाजमत पर हिरासगी के खिलाफ कानूनी तहफ्फुज। खवातीन के खिलाफ तशद्दुद में मुलव्वस अफराद को 2 साल कैद और 5 लाख रुपए तक जुर्माना। कम उम्री की शादी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई। चीफ मिनिस्टर डिजिटल स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम बराए दही खवातीन का इजरा। वर्किंग वुमेन हॉस्टल्स और डे केयर सेंटर्स की फराहमी। धी रानी प्रोग्राम कामयाबी से जारी। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम और इलेक्ट्रिक बाइक स्कीम में खवातीन के लिए खसूसी कोटा। जिंसी तशद्दुद के खात्मे का एहसास पूरे पंजाब की हर बेटी तक। मरियम नवाज शरीफ की खवातीन से मोहब्बत, अकीदत और शफकत। खवातीन का तहफ्फुज बन चुका है पंजाब की पहचान। हर औरत है बाइख्तियार, बढ़ रहा है सभी का मान। हुकूमत पंजाब।
3: सुनते रहिए FM 101 101।

0: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।
1: ये आपके क्लाउड बिल की आवाज है और ये आवाज उसके पैसे वापस आने की है। पाकिस्तान के स्टार्टअप्स को एम्पावर करने के लिए इग्नाइट मिनिस्ट्री ऑफ आईटी एंड टेलीकॉम पेश कर रहा है प्राइम मिनिस्टर्स क्लाउड प्रोग्राम फॉर स्टार्टअप्स। AI, SaaS, FinTech, HealthTech, इसके अलावा तमाम स्टार्टअप्स को स्मार्टली स्केल करने के लिए क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर $13,500 तक की रीइंबर्समेंट मिल सकती है। टियर 1 के लिए $6,000 और टियर 2 के लिए $7,500 और इसके साथ एक्सपर्ट एडवाइजरी कमेटी की सपोर्ट। प्रोग्राम में अप्लाई करने की आखिरी तारीख है 10 जुलाई 2026। रिक्लेम योर क्लाउड स्पेंड, अभी अप्लाई करें ignite.org.pk पर।
0: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।

0: सुनते रहिए FM 101 101 101।
1: ये आपके क्लाउड बिल की आवाज है और ये आवाज उसके पैसे वापस आने की है। पाकिस्तान के स्टार्टअप्स को एम्पावर करने के लिए इग्नाइट मिनिस्ट्री ऑफ आईटी एंड टेलीकॉम पेश कर रहा है प्राइम मिनिस्टर्स क्लाउड प्रोग्राम फॉर स्टार्टअप्स। AI, SaaS,
2: फिनटेक,
1: हेल्थटेक, इसके अलावा तमाम स्टार्टअप्स को स्मार्टली स्केल करने के लिए क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर $13,500 तक की रीइंबर्समेंट मिल सकती है। टियर 1 के लिए $6,000 और टियर 2 के लिए $7,500 और इसके साथ एक्सपर्ट एडवाइजरी कमेटी की सपोर्ट। प्रोग्राम में अप्लाई करने की आखिरी तारीख है 10 जुलाई 2026। रिक्लेम योर क्लाउड स्पेंड, अभी अप्लाई करें ignite.org.pk पर।
3: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।

0: शुक्रिया आपने FM 101 ट्यून किया।
1: सुनते रहिए FM 101 101 101।

0: be back after this short commercial break.
1: Shukriya, aapne FM 101 tune kiya. Shukriya, aapne FM 101 tune kiya.
2: ये आपके क्लाउड बिल की आवाज है और ये आवाज उसके पैसे वापस आने की है। पाकिस्तान के स्टार्टअप्स को एम्पावर करने के लिए इग्नाइट मिनिस्ट्री ऑफ आईटी एंड टेलीकॉम पेश कर रहा है प्राइम मिनिस्टर्स क्लाउड प्रोग्राम फॉर स्टार्टअप्स। एआई, सास, फिनटेक, हेल्थटेक, इसके अलावा तमाम स्टार्टअप्स को स्मार्टली स्केल करने के लिए क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर $13,500 तक की रीइंबर्समेंट मिल सकती है। टीयर 1 के लिए $6,000 और टीयर 2 के लिए $7,500 और इसके साथ एक्सपर्ट एडवाइजरी कमेटी की सपोर्ट। प्रोग्राम में अप्लाई करने की आखिरी तारीख है 10 जुलाई 2026। रिक्लेम योर क्लाउड स्पेंड, अभी अप्लाई करें ignite.org.pk पर।

0: सुनते रहिए FM 101 101 101।
1: ये आपके क्लाउड बिल की आवाज है और ये आवाज उसके पैसे वापस आने की है। पाकिस्तान के स्टार्टअप्स को एम्पावर करने के लिए इग्नाइट मिनिस्ट्री ऑफ आईटी एंड टेलीकॉम पेश कर रहा है प्राइम मिनिस्टर्स क्लाउड प्रोग्राम फॉर स्टार्टअप्स। AI, SaaS,
2: फिनटेक,
1: हेल्थटेक, इसके अलावा तमाम स्टार्टअप्स को स्मार्टली स्केल करने के लिए क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर $13,500 तक की रीइंबर्समेंट मिल सकती है। टियर 1 के लिए $6,000 और टियर 2 के लिए $7,500 और इसके साथ एक्सपर्ट एडवाइजरी कमेटी की सपोर्ट। प्रोग्राम में अप्लाई करने की आखिरी तारीख है 10 जुलाई 2026। रिक्लेम योर क्लाउड स्पेंड, अभी अप्लाई करें ignite.org.pk पर।
0: सुनते रहिए FM 101 101 101।
3: तंग किया बेहद पर मैं कदी छड़ी ना जिद जेहद लड़ना पवे अपने हक ले किसे नू कोई एना भी ना होवे बेबस सुने

0: शुक्रिया, आपने एफएम 101 ट्यून किया।
1: टूट चुकी है जिंसी तशद्दुद की हर दीवार, महफूज खवातीन के लिए हुकूमत पंजाब है तैयार। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ खवातीन के हुकूक के तहफ्फुज के लिए हैं पुरअज़्म। हर बार महफूज है जाए मुलाजमत, सभी घर और हर बाजार।
2: आपकी हिफाजत, आपका तहफ्फुज, आपकी जिम्मेदारी मेरा फर्ज है।
1: तारीख में पहली बार वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन का कायम, पिंक बटन से फौरी पुलिस हेल्प का हुसूल। वुमेन सेफ्टी ऐप, पुलिस प्रोटेक्शन ऐप, हेल्पलाइन 1043, 24 घंटे 7 दिन फाल। जेंडर बेस्ड वायलेंस के ट्रैकिंग सिस्टम का जल्द आगाज। जाए मुलाजमत पर हिरासगी के खिलाफ कानूनी तहफ्फुज। खवातीन के खिलाफ तशद्दुद में मुलव्वस अफराद को 2 साल कैद और 5 लाख रुपए तक जुर्माना। कम उम्र की शादी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई। चीफ मिनिस्टर डिजिटल स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम बराए दही खवातीन का इजरा। वर्किंग वुमेन हॉस्टल्स और डे केयर सेंटर्स की फराहमी। धी रानी प्रोग्राम कामयाबी से जारी। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम और इलेक्ट्रिक बाइक स्कीम में खवातीन के लिए खसूसी कोटा। जिंसी तशद्दुद के खात्मे का एहसास पूरे पंजाब की हर बेटी तक। मरियम नवाज शरीफ की खवातीन से मोहब्बत, अकीदत और शफकत। खवातीन का तहफ्फुज बन चुका है पंजाब की पहचान। हर औरत है बाइख्तियार, बढ़ रहा है सभी का मान। हुकूमत पंजाब।
3: सुनते रहिए FM 101 101 101।

0: सुनते रहिए FM 101 101 101।
1: टूट चुकी है जिंसी तशद्दुद की हर दीवार, महफूज खवातीन के लिए हुकूमत पंजाब है तैयार। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ खवातीन के हुकूक के तहफ्फुज के लिए है पुरअज़्म। हर बार महफूज है जाए मुलाजमत सभी घर और हर बाजार।
2: आपकी हिफाजत, आपका तहफ्फुज, आपकी जिम्मेदारी मेरा फर्ज है।
1: तारीख में पहली बार वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन का कायम, पिंक बटन से फौरी पुलिस हेल्प का हुसूल। वुमेन सेफ्टी ऐप, पुलिस प्रोटेक्शन ऐप, हेल्पलाइन 1043, 24 घंटे 7 दिन फाल। जेंडर बेस्ड वायलेंस के ट्रैकिंग सिस्टम का जल्द आगाज। जाए मुलाजमत पर हिरासगी के खिलाफ कानूनी तहफ्फुज। खवातीन के खिलाफ तशद्दुद में मुलव्वस अफराद को 2 साल कैद और 5 लाख रुपए तक जुर्माना। कम उम्री की शादी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई। चीफ मिनिस्टर डिजिटल स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम बराए दही खवातीन का इजरा। वर्किंग वुमेन हॉस्टल्स और डे केयर सेंटर्स की फराह में धी रानी प्रोग्राम कामयाबी से जारी। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम और इलेक्ट्रिक बाइक स्कीम में खवातीन के लिए खसूसी कोटा। जिंसी तशद्दुद के खात्मे का एहसास पूरे पंजाब की हर बेटी तक। मरियम नवाज शरीफ की खवातीन से मोहब्बत, अकीदत और शफकत। खवातीन का तहफ्फुज बन चुका है पंजाब की पहचान। हर औरत है बाइख्तियार, बढ़ रहा है सभी का मान। हुकूमत पंजाब।
3: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।
4: देखे तो जो इधर

0: पाकिस्तान की मेजबानी में
1: पाकिस्तान की मेजबानी में इस्तांबुल में पाकिस्तान तुर्की बिजनेस

0: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।
1: टूट चुकी है जिंसी तशद्दुद की हर दीवार, महफूज खवातीन के लिए हुकूमत पंजाब है तैयार। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ खवातीन के हुकूक के तहफ्फुज के लिए है पुरअज़्म हर बार। महफूज है जाए मुलाजमत सभी घर और हर बाजार।
2: आपकी हिफाजत, आपका तहफ्फुज, आपकी जिम्मेदारी मेरा फर्ज है।
1: तारीख में पहली बार वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन का कायम, पिंक बटन से फौरी पुलिस हेल्प का हुसूल। वुमेन सेफ्टी ऐप, पुलिस प्रोटेक्शन ऐप, हेल्पलाइन 1043, 24 घंटे 7 दिन फाल। जेंडर बेस्ड वायलेंस के ट्रैकिंग सिस्टम का जल्द आगाज। जाए मुलाजमत पर हिरासगी के खिलाफ कानूनी तहफ्फुज। खवातीन के खिलाफ तशद्दुद में मुलव्वस अफराद को 2 साल कैद और 5 लाख रुपए तक जुर्माना। कम उम्री की शादी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई। चीफ मिनिस्टर डिजिटल स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम बराए दही खवातीन का इजरा। वर्किंग वुमेन हॉस्टल्स और डे केयर सेंटर्स की फराहमी। धी रानी प्रोग्राम कामयाबी से जारी। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम और इलेक्ट्रिक बाइक स्कीम में खवातीन के लिए खसूसी कोटा। जिंसी तशद्दुद के खात्मे का एहसास पूरे पंजाब की हर बेटी तक। मरियम नवाज शरीफ की खवातीन से मोहब्बत, अकीदत और शफकत। खवातीन का तहफ्फुज बन चुका है पंजाब की पहचान। हर औरत है बाइख्तियार, बढ़ रहा है सभी का मान। हुकूमत पंजाब।
0: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।

0: सुनते रहिए FM 101 101 101।
1: बिग आइडिया चेक, पैशन चेक, लेकिन स्केल करने के लिए क्लाउड रिसोर्सेज, यहाँ स्टार्टअप्स को मुश्किल पेश आती है, मगर अब नहीं। इग्नाइट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ आईटी एंड टेलीकॉम ला रहा है प्राइम मिनिस्टर्स क्लाउड प्रोग्राम फॉर स्टार्टअप्स। टियर 1 और टियर 2 के लिए क्लाउड एक्सपेंसेस पर हासिल करें $13,500 तक की रीइंबर्समेंट और इसके साथ एक्सपर्ट क्लाउड एडवाइजरी की सपोर्ट, जिससे आप अपने स्टार्टअप को बआसानी स्केल कर सकते हैं। आज ही अप्लाई करें ignite.org.pk पर। एप्लीकेशंस जमा करवाने की आखिरी तारीख 10 जुलाई 2026 है।
0: सुनते रहिए FM 101 101 101।

0: सुनते रहिए FM 101 101 101।
1: टूट चुकी है जिंसी तशद्दुद की हर दीवार, महफूज खवातीन के लिए हुकूमत पंजाब है तैयार। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ खवातीन के हुकूक के तहफ्फुज के लिए है पुरअज़्म हर बार। महफूज है जाए मुलाजमत सभी घर और हर बाजार,
2: आपकी हिफाजत आपका तहफ्फुज।

0: आपकी जिम्मेदारी मेरा फर्ज है।
1: तारीख में पहली बार वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन का कायम, पिंक बटन से फौरी पुलिस हेल्प का हुसूल, वुमेन सेफ्टी ऐप, पुलिस प्रोटेक्शन ऐप, हेल्पलाइन 1043, 24 घंटे 7 दिन फाल, जेंडर बेस्ड वायलेंस के ट्रैकिंग सिस्टम का जल्द आगाज, जाए मुलाजमत पर हिरासगी के खिलाफ कानूनी तहफ्फुज, खवातीन के खिलाफ तशद्दुद में मुलव्वस अफराद को 2 साल कैद और 5 लाख रुपए तक जुर्माना, कम उम्र की शादी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई, चीफ मिनिस्टर डिजिटल स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम बराए दही खवातीन का इजरा, वर्किंग वुमेन हॉस्टल्स और डे केयर सेंटर्स की फराहमी, धी रानी प्रोग्राम कामयाबी से जारी, अपनी छत अपना घर प्रोग्राम और इलेक्ट्रिक बाइक स्कीम में खवातीन के लिए खसूसी कोटा, जिंसी तशद्दुद के खात्मे का एहसास पूरे पंजाब की हर बेटी तक, मरियम नवाज शरीफ की खवातीन से मोहब्बत, अकीदत और शफकत, खवातीन का तहफ्फुज बन चुका है पंजाब की पहचान, हर औरत है बाइख्तियार, बढ़ रहा है सभी का मान, हुकूमत पंजाब।
2: सुनते रहिए FM 101 101 101।

0: सुनते रहिए FM 101 101 101।
1: आहा नो मान खाले सामा कुलारे

0: टूट चुकी है जिंसी तशद्दुद की हर दीवार। महफूज खवातीन के लिए हुकूमत पंजाब है तैयार। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ खवातीन के हुकूक के तहफ्फुज के लिए है पुरअज़्म हर बार। महफूज है जाए मुलाजमत सभी घर और हर बाजार।
1: आपकी हिफाजत, आपका तहफ्फुज, आपकी जिम्मेदारी मेरा फर्ज है।
0: तारीख में पहली बार वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन का कायम। पिंक बटन से फौरी पुलिस हेल्प का हुसूल। वुमेन सेफ्टी ऐप, पुलिस प्रोटेक्शन ऐप, हेल्पलाइन 1043, 24 घंटे 7 दिन फाल। जेंडर बेस्ड वायलेंस के ट्रैकिंग सिस्टम का जल्द आगाज। जाए मुलाजमत पर हिरासगी के खिलाफ कानूनी तहफ्फुज। खवातीन के खिलाफ तशद्दुद में मुलव्वस अफराद को 2 साल कैद और 5 लाख रुपए तक जुर्माना। कम उम्री की शादी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई। चीफ मिनिस्टर डिजिटल स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम बराए दही खवातीन का इजरा। वर्किंग वुमेन हॉस्टल्स और डे केयर सेंटर्स की फराहमी। धी रानी प्रोग्राम कामयाबी से जारी। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम और इलेक्ट्रिक बाइक स्कीम में खवातीन के लिए खसूसी कोटा। जिंसी तशद्दुद के खात्मे का एहसास पूरे पंजाब की हर बेटी तक। मरियम नवाज शरीफ की खवातीन से मोहब्बत, अकीदत और शफकत। खवातीन का तहफ्फुज बन चुका है पंजाब की पहचान। हर औरत है बाइख्तियार। बढ़ रहा है सभी का मान। हुकूमत पंजाब।
2: सुनते रहिए FM 101.1।
0: टूट चुकी है जिंसी तशद्दुद की हर दीवार। महफूज खवातीन के लिए हुकूमत पंजाब है तैयार। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ खवातीन के हुकूक के तहफ्फुज के लिए है पुरअज़्म हर बार। महफूज है जाए मुलाजमत सभी घर और हर बाजार।
1: आपकी हिफाजत, आपका तहफ्फुज, आपकी जिम्मेदारी मेरा फर्ज है।
0: तारीख में पहली बार वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन का कायम। पिंक बटन से फौरी पुलिस हेल्प का हुसूल। वुमेन सेफ्टी ऐप, पुलिस प्रोटेक्शन ऐप, हेल्पलाइन 1043, 24 घंटे 7 दिन फाल। जेंडर बेस्ड वायलेंस के ट्रैकिंग सिस्टम का जल्द आगाज। जाए मुलाजमत पर हिरासगी के खिलाफ कानूनी तहफ्फुज। खवातीन के खिलाफ तशद्दुद में मुलव्वस अफराद को 2 साल कैद और 5 लाख रुपए तक जुर्माना। कम उम्री की शादी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई। चीफ मिनिस्टर डिजिटल स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम बराए दही खवातीन का इजरा। वर्किंग वुमेन हॉस्टल्स और डे केयर सेंटर्स की फराहमी। धी रानी प्रोग्राम कामयाबी से जारी। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम और इलेक्ट्रिक बाइक स्कीम में खवातीन के लिए खसूसी कोटा। जिंसी तशद्दुद के खात्मे का एहसास पूरे पंजाब की हर बेटी तक। मरियम नवाज शरीफ की खवातीन से मोहब्बत, अकीदत और शफकत। खवातीन का तहफ्फुज बन चुका है पंजाब की पहचान। हर औरत है बाइख्तियार। बढ़ रहा है सभी का मान। हुकूमत पंजाब।

0: सुनते रहिए FM 101 101 101।
1: टूट चुकी है जिंसी तशद्दुद की हर दीवार, महफूज खवातीन के लिए हुकूमत पंजाब है तैयार। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ खवातीन के हुकूक के तहफ्फुज के लिए है पुरअज़्म हर बार। महफूज है जाए मुलाजमत सभी घर और हर बाजार।
2: आपकी हिफाजत, आपका तहफ्फुज, आपकी जिम्मेदारी मेरा फर्ज है।
1: तारीख में पहली बार वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन का कायम, पिंक बटन से फौरी पुलिस हेल्प का हुसूल। वुमेन सेफ्टी ऐप, पुलिस प्रोटेक्शन ऐप, हेल्पलाइन 1043, 24 घंटे 7 दिन फाल। जेंडर बेस्ड वायलेंस के ट्रैकिंग सिस्टम का जल्द आगाज। जाए मुलाजमत पर हिरासगी के खिलाफ कानूनी तहफ्फुज। खवातीन के खिलाफ तशद्दुद में मुलव्वस अफराद को 2 साल कैद और 5 लाख रुपए तक जुर्माना। कम उम्री की शादी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई। चीफ मिनिस्टर डिजिटल स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम बराए दही खवातीन का इजरा। वर्किंग वुमेन हॉस्टल्स और डे केयर सेंटर्स की फराह में धी रानी प्रोग्राम कामयाबी से जारी। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम और इलेक्ट्रिक बाइक स्कीम में खवातीन के लिए खसूसी कोटा। जिंसी तशद्दुद के खात्मे का एहसास पूरे पंजाब की हर बेटी तक। मरियम नवाज शरीफ की खवातीन से मोहब्बत, अकीदत और शफकत। खवातीन का तहफ्फुज बन चुका है पंजाब की पहचान। हर औरत है बाइख्तियार, बढ़ रहा है सभी का मान। हुकूमत पंजाब।
0: सुनते रहिए FM 101 101।

0: सुनते रहिए FM 101 101 101।
1: दिस इज FM 101।
2: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।

0: साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101। सुर और संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।
1: और अब वक्त है कमर्शियल ब्रेक का।
2: टूट चुकी है जिंसी तशद्दुद की हर दीवार, महफूज खवातीन के लिए हुकूमत पंजाब है तैयार। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ खवातीन के हुकूक के तहफ्फुज के लिए है पुर अज़्म हर बार। महफूज है जाए मुलाजमत सभी घर और हर बाजार।
3: आपकी हिफाजत, आपका तहफ्फुज, आपकी जिम्मेदारी मेरा फर्ज है।
2: तारीख में पहली बार वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन का कायम, पिंक बटन से फौरी पुलिस हेल्प का हुसूल। वुमेन सेफ्टी ऐप, पुलिस प्रोटेक्शन ऐप, हेल्पलाइन 1043, 24 घंटे 7 दिन फाल। जेंडर बेस्ड वायलेंस के ट्रैकिंग सिस्टम का जल्द आगाज। जाए मुलाजमत पर हिरासगी के खिलाफ कानूनी तहफ्फुज। खवातीन के खिलाफ तशद्दुद में मुलव्वस अफराद को 2 साल कैद और 5 लाख रुपए तक जुर्माना। कम उम्री की शादी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई। चीफ मिनिस्टर डिजिटल स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम बराए दही खवातीन का इजरा। वर्किंग वुमेन हॉस्टल्स और डे केयर सेंटर्स की फराहमी। धी रानी प्रोग्राम कामयाबी से जारी। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम और इलेक्ट्रिक बाइक स्कीम में खवातीन के लिए खसूसी कोटा। जिंसी तशद्दुद के खात्मे का एहसास पूरे पंजाब की हर बेटी तक। मरियम नवाज शरीफ की खवातीन से मोहब्बत, अकीदत और शफकत। खवातीन का तहफ्फुज बन चुका है पंजाब की पहचान। हर औरत है बाइख्तियार, बढ़ रहा है सभी का मान। हुकूमत पंजाब।
0: सुर और संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।

दिनों तो उनसे और मिलना होता हमारा, और क्या, और क्या होता, क्या हुआ, ये बातें बहुत अच्छी लगी।

समंदर के किनारे पर था और हवा बहुत ठंडी थी। वो हवा थी या मेरी मोहब्बत का कोई गुजरता पहर था जो मुझे नापसंद था। इस बात का जवाब तो मुझे मिला नहीं, क्योंकि कुछ दिनों की ये मुलाकातें

दिल में रह गया कि अब दिल की सुनो तो सिर्फ मेरी आवाजें गूंजती हैं। वो जा रही थी और हाले दिल आंखों से बह रहा था। हाले दिल का एक लम्हा मेरी आंखों से होता हुआ मेरे जूते पर जा गिरा। वो जूता आज भी मैं पहनने की हिम्मत नहीं करता। कुछ दिनों की ये मुलाकातें बहुत अच्छी लगी। उससे जो कुछ हो सकी बातें

सुरर संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

0: सुर और संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।
1: टूट चुकी है जिंसी तशद्दुद की हर दीवार, महफूज खवातीन के लिए हुकूमत पंजाब है तैयार। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ खवातीन के हुकूक के तहफ्फुज के लिए है पुरअज़्म हर बार। महफूज है जाए मुलाजमत सभी घर और हर बाजार।
2: आपकी हिफाजत, आपका तहफ्फुज, आपकी जिम्मेदारी मेरा फर्ज है।
1: तारीख में पहली बार वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन का कायम, पिंक बटन से फौरी पुलिस हेल्प का हुसूल। वुमेन सेफ्टी ऐप, पुलिस प्रोटेक्शन ऐप, हेल्पलाइन 1043, 24 घंटे 7 दिन फाल। जेंडर बेस्ड वायलेंस के ट्रैकिंग सिस्टम का जल्द आगाज। जाए मुलाजमत पर हिरासगी के खिलाफ कानूनी तहफ्फुज। खवातीन के खिलाफ तशद्दुद में मुलव्वस अफराद को 2 साल कैद और 5 लाख रुपए तक जुर्माना। कम उम्री की शादी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई। चीफ मिनिस्टर डिजिटल स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम बराए दही खवातीन का इजरा। वर्किंग वुमेन हॉस्टल्स और डे केयर सेंटर्स की फनाह में धी रानी प्रोग्राम कामयाबी से जारी। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम और इलेक्ट्रिक बाइक स्कीम में खवातीन के लिए खसूसी कोटा। जिंसी तशद्दुद के खात्मे का एहसास पूरे पंजाब की हर बेटी तक। मरियम नवाज शरीफ की खवातीन से मोहब्बत, अकीदत और शफकत। खवातीन का तहफ्फुज बन चुका है पंजाब की पहचान। हर औरत है बाइख्तियार, बढ़ रहा है सभी का मान। हुकूमत पंजाब,

0: सुरर संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल एफएम 101।
1: मुट्ठी खोल, आंखें मीच, फूंक मार और जो मांगना है मांग ले।
2: क्या हुआ?

0: there's music, and then there's magic. One Above, FM 101. There's music, and then there's magic. One Above, FM 101.
1: दर्द से भरी मेरी ये कहानी है, ना बात करनी ना तुझको सुनानी। सोचो कभी मैं ये किसे कहूँ, आता नहीं मेरे दिल को सुकून। दुनिया झूठी, दुनिया वाले है fake, उनके बारे में मेरा है take। I don't care what you think, what

मैं थक सा गया हूँ और चुप हो गया हूँ, मैं थक सा गया हूँ और चुप हो गया हूँ, मैं थक सा गया हूँ और चुप हो गया हूँ, मैं थक सा।

कैसे वैसे जाने लोग कैसे मतलब से बात करें तन्हा रात और याद तेरी इस कश्म कश्म में चाहे दिन या शाम पूरी कायनात हो लिखूं तेरी सदाएं पढ़ूं सारी दुआएं फिर भी तू रास ना आए हम तेरे खास सताए माना हम मर ना पाए जी के भी कर ना पाए तेरी मोहब्बत की जो कीमत थी वो

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

this music, and then there's magic. One Above FM 101.

0: Coming up next, 101 News Headlines. News Headlines.
1: रात के 11 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। अयाज असलम से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर-ए-आज़म ने इस्तांबुल में तुर्क सदर के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब में तुर्की के साथ स्ट्रेटेजिक शराकत दारी को मजीद मजबूत बनाने के पाकिस्तान के अज़्म का अयादा किया है। तुर्क सदर ने कहा है कि अंकारा और इस्लामाबाद खत्ते में अमन इस्तेहकाम और खुशहाली के फरोग के लिए मिलकर काम जारी रखेंगे। शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान ने कराची खसूसी इक्तसादी राहदारी में तुर्की के सरमायाकारों के लिए 1,000 एकड़ जमीन मुख्तस की है। और खवातीन के आईसीसी T20 आलमी कप का फाइनल कल लॉर्ड्स में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के दरमियान होगा।
2: This is FM 101
3: नाल साडे ते नाल तुवाडे क्यों जी कोई शक है क्या?

0: this music, and then there's magic. One Above, FM 101.
1: टूट चुकी है जिंसी तशद्दुद की हर दीवार, महफूज खवातीन के लिए हुकूमत पंजाब है तैयार। वजीरे आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ खवातीन के हुकूक के तहफ्फुज के लिए है पुरअज़्म। हर बार महफूज है जाए मुलाजमत, सभी घर और हर बाजार।
2: आपकी हिफाजत, आपका तहफ्फुज, आपकी जिम्मेदारी मेरा फर्ज है।
1: तारीख में पहली बार वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन का कायम, पिंक बटन से फौरी पुलिस हेल्प का हुसूल। वुमेन सेफ्टी ऐप, पुलिस प्रोटेक्शन ऐप, हेल्पलाइन 1043, 24 घंटे 7 दिन फाल। जेंडर बेस्ड वायलेंस के ट्रैकिंग सिस्टम का जल्द आगाज। जाए मुलाजमत पर हिरासगी के खिलाफ कानूनी तहफ्फुज। खवातीन के खिलाफ तशद्दुद में मुलव्वस अफराद को 2 साल कैद और 5 लाख रुपए तक जुर्माना। कम उम्र की शादी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई। चीफ मिनिस्टर डिजिटल स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम बराए दही खवातीन का इजरा। वर्किंग वुमेन हॉस्टल्स और डे केयर सेंटर्स की फनह में धी रानी प्रोग्राम कामयाबी से जारी। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम और इलेक्ट्रिक बाइक स्कीम में खवातीन के लिए खसूसी कोटा। जिंसी तशद्दुद के खात्मे का एहसास पूरे पंजाब की हर बेटी तक। मरियम नवाज शरीफ की खवातीन से मोहब्बत, अकीदत और शफकत। खवातीन का तहफ्फुज बन चुका है पंजाब की पहचान। हर औरत है बाइख्तियार, बढ़ रहा है सभी का मान। हुकूमत पंजाब,

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

0: टूट चुकी है जिनसी तशद्दुद की हर दीवार। महफूज खवातीन के लिए हुकूमत पंजाब है तैयार। वज़ीरे आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ खवातीन के हुकूक के तहफ्फुज़ के लिए है और अज़्म हर बार। महफूज है जाए मुलाजमत सभी घर और हर बाजार।
1: आपकी हिफाजत, आपका तहफ्फुज़, आपकी जिम्मेदारी मेरा फर्ज है।
0: तारीख में पहली बार वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन का कयाम। पिंक बटन से फौरी पुलिस हेल्प का हुसूल। वुमेन सेफ्टी ऐप, पुलिस प्रोटेक्शन ऐप, हेल्पलाइन 1043, 24 घंटे 7 दिन फाल। जेंडर बेस्ड वायलेंस के ट्रैकिंग सिस्टम का जल्द आगाज। जाए मुलाजमत पर हिरासगी के खिलाफ कानूनी तहफ्फुज। खवातीन के खिलाफ तशद्दुद में मुलव्वस अफराद को 2 साल कैद और 5 लाख रुपए तक जुर्माना। कम उम्री की शादी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई। चीफ मिनिस्टर डिजिटल स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम बराए दही खवातीन का इजरा। वर्किंग वुमेन हॉस्टल्स और डे केयर सेंटर्स की फनह में धी रानी प्रोग्राम कामयाबी से जारी। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम और इलेक्ट्रिक बाइक स्कीम में खवातीन के लिए खसूसी कोटा। जिंसी तशद्दुद के खात्मे का एहसास पूरे पंजाब की हर बेटी तक। मरियम नवाज शरीफ की खवातीन से मोहब्बत, अकीदत और शफकत। खवातीन का तहफ्फुज़ बन चुका है पंजाब की पहचान। हर औरत है बाइख्तियार, बढ़ रहा है सभी का मान। हुकूमत पंजाब।
2: All the way live from the federal capital city of Pakistan, this is FM 101.
3: Talk about music! Talk about music, talk about 101, the station with richer sound. Tune in to the 101.

0: always ahead. FM 101.
1: This is FM.
2: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान। क्या हाल है जी आप सबका? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आपका मेज़बान, आपका दोस्त, आपका भाई, आपका जिगर गज़नफर महमूद कियानी प्रोग्राम 101 इंटरनेशनल की एक नई एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। एक नया दिन, एक नई तारीख, 5 जुलाई साल 2026, 12:05 आपका और मेरा साथ रहेगा ठीक शब के 2 बजे तक। कैसे हैं आप सब? आपका हफ्ता कैसा गुजरा और आपकी जिंदगी कैसे गुजर रही है इतनी ज्यादा गर्मी में? इस वीक के आगाज में दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि बारिश हुई थी और मुल्क भर में मानसून बारिशों के हवाले से महकमे मौसमियात की जानिब से अपडेट दी गई थी। बल्कि लास्ट मेरा प्रोग्राम था 101 इंटरनेशनल, इसमें ही मैंने डिटेल आपके साथ शामिल की थी कि 6 तारीख तक महकमे मौसमियात की जानिब से बारिशों की पेशन गोई की गई, जो कि मानसून की बारिशों का पहला स्पेल होगा। रावलपिंडी इस्लामाबाद में कुछ दिन कबल बारिश हुई और उसका मौसम बहुत खूबसूरत हुआ और आप जानते हैं आई थिंक वेंसडे को हुई थी बारिश और एक आधा दिन उसका फ़र्क रहा, लेकिन आज फिर सूरज मियां ने वो जो है गोले बरसाए हैं। मुझे जहां तक याद पड़ता है दोस्तों, मैंने अपनी ज़िंदगी में फर्स्ट टाइम इतनी ज़्यादा गर्मी जो है वो फेस किया। खासकर इस्लामाबाद की अगर बात की जाए, हमने हमेशा इस प्लेटफॉर्म से बात करता रहता था कि रावलपिंडी इस्लामाबाद में अल्लाह पाक का कोई बहुत ख़ास करम है कि बहुत ज़्यादा जब गर्मी पड़ती है ना तो एक आधा दिन बाद जो है वो बारिश का सिलसिला ज़रूर होता था, लेकिन ये वेरी फर्स्ट टाइम इस तरह चूँकि दरख्तों की तादाद जो है वो कम हुई है और जिस वजह से क्लाइमेट चेंज है और ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में बाहर के ममालिक में भी देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा क्लाइमेट चेंज है। वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा टेम्परेचर ने एक्सीड किया, काफ़ी ज़्यादा जानें जो भी हैं ज़ाया हुई हैं। तो अल्लाह ताला से जी दुआ है कि रब ताला की ज़ात सबको अपने अमान में रखे, आमीन। लाहौर, कराची, फैसलाबाद, सियालकोट, हैदराबाद, पेशावर, मुल्तान और पूरा पाकिस्तान, जहां जहां मेरी बात सुनी जा रही है, तमाम दोस्तों को कहेंगे जी प्रोग्राम में खुश आमदीद। प्रोग्राम का आगाज करेंगे हमेशा की तरह एक मस्बत पैगाम के साथ कि पाकिस्तान का ख्याल रखें, चूंकि आज हम जो हैं जहां हैं सिर्फ इस प्यारे वतन पाकिस्तान की वजह से हैं। पाकिस्तान की तामीर और तरक्की के लिए अपना किरदार जरूर अदा करें, चाहे जिस भी शोबे से आप मुंसलिक हैं। लव पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद। ये जबरदस्त मिली नगमा हम डेडिकेट करेंगे प्यारे वतन पाकिस्तान के नाम और पाकिस्तान की तमाम फोर्सेस के नाम।

नादिया हसन और जैब की आवाज के प्रोग्राम में शामिल करेंगे ट्रैक टाइटल दोस्ती, और ये ट्रैक हम 101 की पूरी टीम की जानिब से, खासकर मेरी जानिब से मोहम्मद यूसुफ को हम डेडिकेट करेंगे। हमारे बहुत ही प्यारे आरजे हैं जी, माशाल्लाह।

शाइनिंग फ्रिक्वेंसी होगी दोस्तों आप लोगों की रेडियो सेट्स की FM 101। इसके अलावा अगर आपके पास इंटरनेट की सहूलत मौजूद है तो आप radio.gov.pk को एक्सेस करने के बाद पाकिस्तान के सबसे बड़े FM रेडियो नेटवर्क को लाइव सुन सकते हैं। फेसबुक पे अगर आप हमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो facebook.com/FM101 चैनल पाकिस्तान ही हमारा ऑफिशियल फैन पेज है। इस पर प्रोग्राम के हवाले से पोस्ट मौजूद होगी, आप उस पर कॉमेंट करेंगे, अपना फीडबैक देंगे और अपने राय का इजहार कर सकते हैं। आज का दिन टॉपिक क्या होगा, नाराज़गी के हवाले से हम बात करेंगे दोस्तों। के खुदा ना ख्वास्ता अगर आप किसी से नाराज़ हो जाते हैं तो जल्दी मान जाते हैं या बहुत ज़्यादा मिन्नतें करवाने वाली शख्सियत आपकी, ये आज आपने हमें ज़रूर बताना है। चूँकि बाज़ औक़ात होता है इस तरह के कुछ दोस्त जो हैं वो किसी वजह से अगर आपसे नाराज़ होते हैं तो आजकल बड़ा मिन्नत तरला करना पड़ता है, खाने खिलाने पड़ते हैं, मुआफ़ियाँ मांगनी पड़ती हैं, स्क्रीन शॉट्स दिखाने पड़ते हैं, भाई जन ऐसी कोई बात नहीं थी। और बहुत ज़्यादा इस तरह होता है कि आप गलत फहमी की बिना पर भी काफ़ी ज़्यादा रिश्ते जो हैं वो एक दूसरे से दूर होते हैं। तो इसमें हम बात करेंगे कि अगर आप किसी से किसी भी रीज़न से नाराज़ होते हैं, अगर आपसे सॉरी बोले तो आप आसानी से मान जाते हैं या बहुत ज़्यादा टफ़ शख्सियत आपकी, आपको मनाना को बहुत ज़्यादा आसान बात नहीं है। तो इस पर इंशाल्लाह गपशप करेंगे, SMS आप करेंगे, अपने मोबाइल के क्रिएट मैसेज ऑप्शन में जाएंगे, 101 लिखेंगे, स्पेस देंगे, अपना नाम, शहर का नाम और बहुत ही खूबसूरत से पैगाम के साथ आप भेजेंगे 4471 पर। इसके अलावा facebook.com/FM101 चैनल पाकिस्तान ही हमारा ऑफिशियल फ़ैन पेज है। इस पर प्रोग्राम के हवाले से पोस्ट मौजूद है, आप कमेंट कर सकते हैं, आप अपना फीडबैक देंगे, अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। कॉल्स हम इंशाल्लाह 12:30 या 12:40 के बाद प्रोग्राम में शामिल करेंगे। और हमेशा की तरह जो मेरी रिक्वेस्ट होगी वो आप हमेशा की तरह नहीं मानेंगे, लेकिन कोई बात नहीं, आज कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम आपके 4471 के पैगाम को प्रोग्राम में शामिल करें। फेसबुक के पैगाम होंगे और आपकी लाइव कॉल्स भी होंगी। मौसम काफ़ी ज़्यादा दोस्तों गर्म है, अपने अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। मुस्तफ़ा साहब की आवाज़ को जो प्रोग्राम में शामिल करते हैं, बड़ा ज़बरदस्त ट्रैक है, मेरा मोस्ट फेवरेट ट्रैक है ये। 12:20 मुझे कहते हैं गज़नफ़र महमूद क्या नहीं, आपको क्या कहते हैं ज़रूर बताइएगा।

बारह बजकर 25 मिनट हो चुके हैं दोस्तों, आपका मेरा साथ रहेगा ठीक के शब के 2 बजे तक। मुझे कहते हैं गजनफर महमूद क्यानी, आपको क्या कहते हैं जरूर बताइएगा। लाहौर, कराची, फैसलाबाद, सियालकोट, हैदराबाद, पेशावर, मुल्तान और पूरा पाकिस्तान 101 पाकिस्तान का सबसे बड़ा FM रेडियो नेटवर्क है दोस्तों, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और इस वक्त कॉलिंग जो है वो प्लीज कॉल मत करें, हम 12:35 के बाद इंशाल्लाह लाइव कॉल्स प्रोग्राम में शामिल करेंगे। टॉपिक आज का आपको बताता चलूं कि नाराज़गी के हवाले से है कि अगर आप किसी से नाराज़ हो जाते हैं किसी भी वजह से, तो क्या जल्दी मान जाते हैं एक आधी दफ़ा सॉरी बोलने से, या बहुत ज़्यादा मिनतें तरले करवाते हैं, सख्त तबीयत के आप की शख्सियत है, ये आपने मुझे ज़रूर बताना है। इस पर आज हम बात करेंगे और देखते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या फीडबैक आता है। 4471 पे दोस्तों आपने मैसेजेस लाजमी करने हैं, जहाँ जहाँ मेरी बात सुनी जा रही है आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने शहर का नाम, अपना नाम ज़रूर बताया करें, ताकि हमें पता चल सके कि हमारी आवाज़ कहाँ सुनी जा रही है, ट्रांसमिशन की क्वालिटी आप तक कैसे पहुँच रही है, कैसी आ रही है, अगर किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम है आप वो भी हमें बता सकते हैं। इंशाल्लाह जल्द अज़ जल्द इन चीज़ों को रिजॉल्व किया जाएगा। ड्राइव करते हुए अगर आप हमारी आवाज़ सुन रहे हैं तो प्लीज़ ध्यान से ड्राइविंग करें। मोटरवे पे अगर आप ड्राइव कर रहे हैं तो आप जानते हैं कि स्पीड लिमिट थोड़ी सी एक्सीड कर दी गई है दोबारा पुरानी जो स्पीड थी वहाँ तक, और इसके अलावा आपने एक्सीड ज़्यादा स्पीड नहीं करनी। जो आपसे फ्रंट पे गाड़ी होती है, जो आपसे आगे गाड़ी होती है, उससे आपने ज़्यादा फासला रखना, ये नहीं कि बिल्कुल आप बम्पर टू बम्पर गाड़ी उसके साथ रखें, बाज़ूकात काफ़ी ज़्यादा मुश्किल के मराहल आ जाते हैं। सायरा हमारे साथ मुल्तान से मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया सायरा आपके मैसेज का। ये कुछ ऐसे मैसेजेस होते हैं जो दोस्तों प्रोग्राम शुरू होने साथ ही आप तक पहुंचते हैं, तो बराए मेहरबानी मुझे बहुत अच्छा लगेगा जो हमारा मौजू गुफ्तगू होता है उस पर अगर आप बात करेंगे तो इंशाल्लाह अच्छा लगेगा और सुकून भी आएगा दिल को। एहतशाम साहब हमारे साथ मौजूद कल सैद हैं, सलाम टू योर टीम एंड ऑल पाकिस्तान। गर्मी में ठंडा मिजाज गर्मी की शिद्दत का एहसास कम कर देता है। और मर्दान से सरदार हमारे साथ सालिस मौजूद है, क्यारी भाई किसी का दिल दुखाना बड़ा गुनाह है, इसलिए ज़्यादा खफा नहीं होता किसी से, आपको और आपके तमाम सुनने वालों को सलाम। मर्दान से मेरे भाई आपका बहुत शुक्रिया, इतनी मीठी बात आपने की है, खुश रहें, अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखें, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मज़ीद भी आप मैसेज ज़रूर कीजिएगा। और आजकल चूँकि पता है कि इतनी भाग दौड़ की ज़िंदगी है, कुछ लोगों का सर्कल फ्रेंड्स का बहुत कम है और कुछ का बहुत ज़्यादा है। जो सोशल लोग हैं, मतलब जिनकी जॉब ऐसी है जिनको काफ़ी ज़्यादा लोग, ख़ासकर मार्केटिंग के जो लोग होते हैं उनका सोशल नेटवर्क बहुत बड़ा होता है, उनको हर दूसरे तीसरे बंदे से बात करनी होती है। प्रोडक्ट टीम के लोग जो जिन्होंने कोई प्रोडक्ट तैयार करना होता है, वो सेल करना होता है, उनकी बहुत बातचीत होती है, तो फ्रेंड सर्कल जो है बढ़ता रहता है। और हर वो कहते हैं ना कि हर हाथ मिलाने वाला भी दोस्त नहीं होता, तो हर कोई दोस्त भी नहीं होता। कई लोग ऐसे होते हैं कि ऑफिस में 8-10 साल एक साथ काम करते हैं लेकिन वो बहुत अच्छे दोस्त नहीं होते, जस्ट कुलीग्स होते हैं। तो उस पर भी हम इंशाल्लाह बात करेंगे कि आपके ख्याल में, या आप अगर किसी से किसी भी रीज़न की वजह से खफा होते हैं तो क्या बहुत मिनते तरले आपको करने पड़ते हैं या नहीं। एक मैसेज मौसूल हुआ और ये मेरे जहन में वैसे भी बात थी कि अगर आपको कोई मनाने वाला है आजकल के दौर में, तो आप बहुत ज़्यादा दोस्तों जो हैं वो खुशकिस्मत इंसान है। अदरवाइज़ कुछ लोग ज़िंदगी में ऐसे भी हैं, ज़िंदगी ने दुनिया में ऐसे हैं जिनको मनाने वाला कोई नहीं। हमारे साथ साले आमिर मौजूद हैं रावलपिंडी से, आपने मैसेज किया और टॉपिक हमने रखा था कि अगर आप नाराज़ हो जाते हैं तो अगर जल्दी मान जाते हैं, या उन्होंने कहा जी हम रूठते नहीं हैं, रूठ भी जाए तो मनाने वाला कोई नहीं। तो दोस्तों अगर आपकी ज़िंदगी में कोई आपको मनाने वाला है, तो आप अल्लाह ताला की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है आप पे कि आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते आप नाराज़ हों या उनसे खफा हों। इसके अलावा समरा खलील हमारे साथ मौजूद हैं जी, थैंक यू सो मच, इस्लामाबाद से आपने पार्टिसिपेट किया। आप कहती हैं मैं जल्दी नाराज़ नहीं होती, बहुत बर्दाश्त करती हूँ, मगर अगर कुछ ऐसा हो जो महज अल्फाज ही हों तो मैं फिर चुपचाप उस इंसान को छोड़ देती हूँ, फिर माफ़ी मांगे या कुछ भी करे वो फिर मेरे लिए मेरी नज़र में काबिल एतबार नहीं रहता। सादा अल्फाज में ये कि मैं दूसरा मौका सेकंड चांस नहीं देती, बस चुपचाप बगैर गिला किए छोड़ देती हूँ, मगर अगर कोई संगीन बात हो जाए तो फिर बदला लेती हूँ, अपना नफ़ा कोई नुकसान कुछ नहीं देखती। अल्लाह लो किड़े पास से ठुर पे, आपकी तो बड़ी सख्त
शख्सियत है, ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा आपको आगे ज़िंदगी में जाके। अभी आप माशाल्लाह स्टूडेंट हैं, अभी तो आपके लिए आसानी है, लेकिन बाद में ख़ासकर हमारे माशरे में ख़वातीन के लिए दोस्तों, इसको आप प्लीज़ किसी और साइड मत लेके जाइएगा, लेकिन शादी होने के बाद बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ वाली लाइफ सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं, दोनों के लिए होती है, लेकिन हमारे माशरे में ज़्यादातर जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। इतनी सख्त तबीयत जो है वो सिर्फ और सिर्फ अपने घर में ही चलती है। अल्लाह ने थोड़ा सा ध्यान किया करो।

बारह बजकर 31 मिनट हो चुके हैं जी। आज के दिन कोई 11.5 लीटर मैंने पानी पी लिया, लेकिन पता नहीं किधर जा रहा है। पानी की इंटेक दोस्तों ज़्यादा करें। आजकल मौसम जो है वो आप जानते हैं कि काफ़ी ज़्यादा गर्म है। इस दफ़ा इस्लामाबाद में भी बहुत ज़्यादा गर्मी की शिद्दत जो है वो ज़्यादा है। लीमू पानी का इस्तेमाल लाजमी किया करें, ठंडे मशरूबात का। और ये जो बहुत ज़्यादा मार्केट में नीले पीले पानी मिलते हैं या जो रोड के साइड पर आप देखते हैं, प्लीज़ उसका इस्तेमाल ना किया करें। सादा पानी पीने घर से और बहुत ज़्यादा ठंडा पानी पीने, ख़ासकर जो जिनकी ड्यूटी आवाज़ से मुंसलिक है, मतलब जो रेडियो टेलीविज़न या ऐसे किसी शोबे से मुंसलिक है जहाँ उनको बोलना बहुत ज़्यादा होता है, तो वैसे भी ठंडा पानी बहुत ज़्यादा अवॉइड करते हैं। हमसे पूछें, बर्फ़ वाला पानी ज़्यादा नहीं पीते, चूँकि ये वाला मसला होता है। और फिर मैडम से दस डांट पड़ती है कि इतना ठंडा पानी क्यों पीते हैं अगर आपको खांसी लगती है। 12:32 दोस्तों आपका और मेरा साथ रहेगा ठीक 2 बजे तक। मुझे कहते हैं गजनफर महमूद क्यानी। आज का टॉपिक ये है कि अगर आप किसी से नाराज़ हो जाएं तो क्या आसानी से मान जाते हैं या बहुत ज़्यादा मिन्नतें तरले करवाते हैं। जैसे कि समरा ने मैसेज किया था, बड़ी सख्त किस्म की शख्सियत आपने बता दी है, अपने होने वाले उनको ना बता दीजिएगा, ठीक है। शराफत अली मासद मौजूद है बूरे वाला से, कहते हैं भाई जी आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है और आज के टॉपिक के हवाले से मैं कहना चाहता हूँ कि आपकी नाराज़गी 3 दिन से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और मैं अगर किसी से नाराज़ हूँ तो उसके मनाने पर फौरन मान जाता हूँ। शराफत भाई, आपका नाम भी तो माशाल्लाह फिर शराफत वाला ना, इस वजह से आप जल्दी मान जाते हैं, अदरवाइज इतने तो नखरे ही नहीं ख़त्म होते हैं। खैर, फेसबुक पे दोस्तों कुछ मैसेजेस हम तक पहुँचे हैं, उनको प्रोग्राम में शामिल करेंगे। facebook.com/fm101channelpakistan ये हमारा ऑफिशियल फ़ैन पेज है। इसके अलावा आप जो है वो आरजे गजनफर क्यानी के नाम से एक पेज है, उस पर भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। फुटबॉल के हवाले से आपको अपडेट करते चलो, कैनेडा वर्सेस मोरक्को मैच और क्वार्टर फाइनल ने जी क्वालिफाई किया है और कैनेडा को 3-0 से शिकस्त दी है मोरक्को ने, और ये वर्ल्ड कप का सिलसिला भी चल रहा है वो भी साथ साथ फीफा का, चूँकि इस वक्त मैचेस हैं। इंशाल्लाह मैं अपने प्रोग्राम में इस हवाले से भी कुछ डिटेल्स आपके साथ शेयर करूँगा। और सबसे पहले हमारे साथ फेसबुक पे मैडम माजबीन मौजूद हैं, कहती हैं बात बहुत सीधी सी है, जब ताल्लुक़ रखना है तो झगड़ा कैसा और जब ताल्लुक रखना ही नहीं तो शिकवा कैसा, मतलब डायरेक्ट आपने बता दिया। रोज़ी शेख हमारे साथ मौजूद हैं, शो नाइस और सॉफ्ट हार्टेड है आप जी, और एक बार सॉरी करने पर मान जाती हैं। किश्वर अली, डॉक्टर किश्वर आरिफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं और आप कहते हैं इफ़ आई एम एंग्री विद समवन और समवन से सॉरी आई एग्री आफ्टर सम टाइम, मतलब अगर कोई किसी से आप गुस्सा हैं, अगर कोई आपसे सॉरी बोल दे तो थोड़ी देर बाद आप मान जाते हैं, ठीक हो गया। जी आतिफ अली साहब, आप दुबई से हमें सुन रहे हैं, आपका बहुत शुक्रिया भाई। हम तो कभी खनाबुल से आगे नहीं गए मेरे भाई, अल्लाह ताला आपको दुबई ले गए। खुश रहें, अपना ढेर सारा ख्याल रखें और मेरे साथ साथ आपने रहना। 12:34 हो चुके हैं।

चलें जी, एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का पश्तो ट्रैक दोस्तों प्रोग्राम में शामिल करते हैं। इसको ट्रांसलेट करके मुझे ज़रूर बताइएगा मेरे पश्तून भाई जितने भी हमें सुन रहे हैं पेशावर से, क्वेटा से या इसके अलावा मरदान से, थोड़ी बहुत ट्रांसलेशन करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि क्या कह रहे हैं। म्यूज़िक बड़ा कमाल का जी। हमारे कोऑर्डिनेटर भाई जो हैं, जब भी मैं ये ट्रैक प्ले करता हूँ तो मेरे सामने शीशे के उस पार नज़र आ रहे हैं, कभी कभी नज़र आते हैं, और इस वक्त वो धमाल डाल रहे हैं वैसे माशाल्लाह। मूड खराब कर दिया लाला, जरा मज़ा नहीं आया।

0: ओके जी, वेलकम बैक, खुश आमदीद कहते हैं दोस्तों। मैं अब इंतज़ार करूंगा कि आप में से कोई भी दोस्त जिसने ये ट्रैक सुना हो थोड़ा बहुत ट्रांसलेट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि क्या कह रहे हैं। खफा होने का जिक्र इसमें भी आया था, इस वजह से हमने इसको प्रोग्राम में शामिल किया। लेट्स स्टार्ट द कॉल जी, 0519202540, 0511111001 पर दोस्तों आप लोगों ने कॉल करनी है। हम ढेर सारी गपशप लगाएंगे और मुझे पता है कि हमारे जो रेगुलर लिसनर हैं वो हमें कॉल करते हैं। प्लीज़ थोड़ा सा ख्याल रखा करें, मेरा भी और दूसरे जो कॉलर्स हैं उनका भी ख्याल रखा करें। आपके प्यार मोहब्बत का बहुत शुक्रिया और कोशिश ये किया करें कि छोटी बात करें ताकि सबको मौका मिले और सबके लिए जो है वो आसानी हो कॉल मिलाना। 0519202540 और 0511111001। इसके अलावा आप facebook.com/fm101 चैनल पाकिस्तान, हमारा ऑफिशियल फैन पेज है, उस पर कमेंट कर सकते हैं। और 4471 जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक कबूतर है, इस पे आप लोग अपने दिल की बात जो है अगर किसी को पैगाम पहुंचाना चाहते हैं, किसी से नाराज़गी ख़त्म करना चाहते हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा। और जो सलाम आप डायरेक्ट देना चाहते हैं वो उनके नंबर पे आपने दे देना है। अस्सलाम वालेकुम। अरे जी जजाक अल्लाह माशाल्लाह, हुण ते पहली पहली कॉल मेरे वीर से मिलदी है। अरे क्या बात है, क्या बात है त्रेड साहब, सेहत ठीक है आपकी?
1: अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाए खैरियत है?
0: अल्लाह का बहुत एहसान। मौसम कैसा है?
1: बहुत ज्यादा गर्मी है, दो तीन बंदों की डेथ हो चुकी है, सुबह 9 बजे जनाजा पड़ा, एक रात को 10 बजे।
0: अल्लाह माफ करे जी, अल्लाह ताला सबको प्रेफ जमान में रखे। त्रेड साहब, वैसे जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि मैं अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम ऐसी गर्मी देख रहा हूँ, खासकर इस्लामाबाद में, आप भी कुछ ऐसे ही या आपने भी देखा वैसे ज्यादा गर्मी?
1: नहीं नहीं, मैं कहता हूँ कि इधर हमारी तरफ बहुत ज्यादा गर्मी है।
0: अच्छा, बहुत ज्यादा, मतलब पिछले साल से ज्यादा आप कह रहे हैं?
1: बहुत ज्यादा, हर साल यही होता है कि इस साल ज्यादा गर्मी है, फिर गर्मी आती है, इस तरह कहते हैं।
0: अच्छा त्रेड साहब, आपके इलाके में भी ये जो दरख्त वगैरह है उनकी कटाई ज्यादा हुई है?
1: ये जो पठान लोग हैं ना, इनको इधर से भगा दिया है इन लोगों ने, कि वो दरख्तों की कटाई करते थे लोग, देखते थे।
0: अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, चलो ठीक ठीक,
1: लगाए थे
0: ठीक है,
1: छप्पर वगैरह तो
0: ठीक है ठीक है,
1: क्योंकि जो दरख्त बहुत हैं, पर अल्लाह पाक की ये
0: चले जी, अल्लाह ताला अल्लाह पाक रहम करे,
1: अल्लाह पाक आसानियां पैदा करे, क्योंकि कल वो अलामा नासिर मदनी जहानिया में खुतबा जो ही उन्होंने पढ़ना शुरू किया,
0: जी जी जी,
1: उनकी भी इसी तरह
0: ऐसे ही गर्मी की वजह से सर
1: अस्पताल में हाँ। ने दाखिल करा दी।
0: अल्लाह ताला सेहत दे सबको, सेहत दे। त्रेड साहब जल्दी ईमान जाते हैं।
1: टॉपिक में ये है कि हजरत मौला अली अलैहिस्सलाम का फरमान है कि दो बंदों को नहीं बख्शना चाहिए और उनके साथ राजी भी नहीं रहना चाहिए। वो कौन दो लोग हैं जो एक इज्जत के जो दुश्मन हो और दूसरा जो है कि वो रिजक के, इन बंदों को दो को नहीं छोड़ना चाहिए। बाकी ऊंच नीच होती रहती है, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि माफी मांग लेना चाहिए, ऐसी शान नहीं घटती, अगर काम हुई तो मुझसे ले लेना क्यामत वाले दिन।
0: ऐसे ही बिल्कुल ऐसे ही,
1: कुछ भी नहीं, दो तीन दिन के बाद मोमन तो वो है, वो नाराज नहीं होता और नहीं हो सकता। मैं तो होता अगर आए भी तो थोड़ा बहुत, बस 15-20 मिनट रहता है, तो फिर मैं अपने आप को कहता हूँ नहीं यार खैर है, कुछ।
0: अच्छा अच्छा, ठीक हो गया, तो बड़ी अच्छी आदत है।
1: मैं कल दो बंदों की जब डेथ हुई तो ये मलक साहब की मुझे याद आ गई कि इनको दो बार अटैक हो चुका है, तो मैं इनसे बार बार फोन पर यही कहता था कि मुझे माफ कर दें, वो मुझसे गलती हो गई, एक इंसान की जिंदगी का कोई पता नहीं है।
0: ऐसे ही है त्रेड साहब,
1: बहुत ही अच्छे हमारे भाई हैं जी, अलग जरफ के भाई हैं हमारे, बहुत ही दिल की गहराइयों से हर एक से मोहब्बत करते हैं।
0: ठीक है ठीक है,
1: उसके बाद अनिला बाजी को भी सलाम, मारिये शहजादी हमारी बहन, दुखी बहन लाहौर से दुखी है, इसको भी मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम, और जो जो भी सुन रहे हैं सबको मेरी तरफ से
0: जज़ाकअल्लाह जज़ाकअल्लाह, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। तेरे साहब खुश रहें जी। 12:43 हो चुके हैं दोस्तों। दरख्तों के हवाले से जब भी बात आती है मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि दरख्त पर महबूब का नाम लिखने के बजाय महबूब के नाम के एक दरख्त आप लगा दें। आप इधर इस्लामाबाद F9 पे अगर चले जाएं, वहाँ पे हर दूसरे नहीं तो तीसरे दरख्त पे लिखा होगा A+G, F+S और T+O, पता नहीं इस तरह की चीज़ें लिखी होती हैं। अल्लाह लियो खेड़े पास से टुर पे हो, महबूब के नाम का एक दरख्त लगा दें ताकि आने वाले वक्त में ये सदका जारिया होता है। और अब दरख्त और दूर की बात, आप जो बेंच हैं पार्क्स में वहाँ पे नाम लिखे होंगे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे आप बैठ जाएं वहाँ आप गाड़ियों के पीछे नाम लिखे होंगे, और बाकी तो और तो अनोखी की दसा। नेक्स्ट कॉल हम शामिल करेंगे जी, 12:44 हो चुके हैं।

0: बिनेश हमारे साथ जी सियालकोट से मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया बिनेश, आप 1-1 सियालकोट की टीम का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा हैं, हमेशा हमारे प्रोग्राम में आप पार्टिसिपेट करती हैं। थैंक यू सो मच बिनेश, और बहुत शुक्रिया जी आपके मैसेज का। दोस्तों 12:45 होते हैं जी, हो चुके हैं आपके लाइव कॉल्स हम प्रोग्राम में शामिल करें। देखिए गर्मी का कितना ज़्यादा असर है, और इस वक्त स्टूडियो का माहौल अगर मैं आपको बताऊं बड़ा ज़बरदस्त है। हम लाइट्स ऑफ करके प्रोग्राम करते हैं, और जो अख्तर भाई हैं वो भी बिल्कुल अब मंजर आम से गायब हो चुके हैं। जैसे ही हमने पश्तो ट्रैक ख़त्म हुआ वो बिल्कुल गायब। एक दफ़ा आपको याद होगा जब 10 से 12 में प्रोग्राम करता तो मैंने एक हॉरर शो शुरू किया था, और 10 बजे हमने उसका आगाज़ किया था। सर्दियाँ थी, आई थिंक नवंबर और दिसंबर, दिसंबर था आई थिंक, जनवरी का आगाज़ था। तो 10 से लेकर ऑलमोस्ट मुश्किल से 11 बजे तक ही चलाया था, चूँकि 2-3 स्टोरीज ऑनलाइन मतलब लाइव कॉल्स पे ऐसी सुन ली थी, जिसके बाद मुझसे खुद जो है हमारा स्टूडियो माशाल्लाह ऑलमोस्ट जो है वो 3-4 मरले का स्टूडियो है, काफ़ी बड़ा स्टूडियो है, और काफ़ी इसकी जो है वो विंडोज़ हैं, लेकिन इस वक्त अंधेरा छाया हुआ है। सिर्फ जो मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन है ये ऑन है, और ये जो टेलीफोन की लाइन ब्लिंक होती है इससे मुझे हल्की फुल्की थोड़ी बहुत रोशनी आ रही है। बहरहाल डरना नहीं आपने जी, और मुझे भी नहीं डराना। नेक्स्ट कॉल, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह लियो किड़ पासे टुर पे हो। अस्सलाम वालेकुम जी।
1: वालेकुम सलाम, क्यानी भाई खैरियत से हो?
0: मैं बिल्कुल ठीक हूँ प्यारे भाई, कैसे हैं आप?
1: अल्हम्दुलिल्लाह भैया ठीक ठाक।
0: मेरे भाई की
1: मेरा नाम असद है, क्वार्ट से ताल्लुक है, लाहौर डीजे में ड्यूटी है, बस आपका प्रोग्राम सुन रहे हैं, बहुत अच्छा प्रोग्राम है
0: सर, बहुत शुक्रिया। टॉपिक सुना आपने?
1: टॉपिक तो सुना है, लेकिन क्यानी भाई मैं तो सिर्फ एक ही बात पे खत्म करूंगा कि बंदा अगर किसी को नाराज कर रहा हो, मुंह से जबान से लफ्ज निकाल रहा हो, तो हमारे फौज में बताते हैं कि पहले सोचो फिर तोलो फिर बोलो।
0: अच्छा,
1: तो वो ज्ञानी भाई फिर सॉरी का बंदा नहीं होता है ना, कि बंदा यानी बात भी निकाले मुंह से और फिर आप सॉरी भी बोले,
0: ठीक हो गया।
1: यानी पहले सोचो कि मैं ये बात कर रहा हूँ, अगला बंदा मेरे से नाराज हो
0: उसका
1: रहा है
0: दिल दुखेगा या नहीं,
1: यानी भाई ऐसे बात नहीं करनी चाहिए।
0: सही कह रहे, सही कह रहे हैं कि सोच समझ के बात करनी चाहिए। ठीक हो गया लाला, बहुत शुक्रिया। आप बाकी सेहत से ठीक है ना आपकी?
1: अल्हम्दुलिल्लाह भैया ठीक ठाक, आपको प्रोग्राम सुन रहे हैं, ड्यूटी पे बैठे हैं।
0: जज़ाकअल्लाह। ड्यूटी पे सुबह तक है, 8 बजे तक है, सुबह 8 बजे तक ड्यूटी आपकी?
1: मेरी 6 से सुबह 6 तक।
0: 6 से 6 तक, चले अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, मच्छरों से बचाइएगा अपने आपको
1: जी,
0: मच्छरों से बचाइएगा अपने आपको।
1: ज्ञानी भाई बस पंखा लगा हुआ है, कुर्सी पे बैठे हैं,
0: बिल्कुल थोड़ी सी हल्की फुल्के ना कहीं पे आग शाग मिल गई
1: आपकी पूरी टीम को।
0: चलें जज़ाकअल्लाह,
1: अच्छा प्रोग्राम है, हम सुन रहे हैं बैठे हैं,
0: बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह, थैंक यू सो मच जी, वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। अस्सलाम वालेकुम जी।
2: बिस्मिल्लाह करम बड़े उस्ताद और वेलकम दिस बिल्ला जी अरवस जिना रवत वायो ताजी उला रवत बिस्मिल्लाह करम में सदका गच्चा में कुर्बान गच्चा सोनियो।
0: बिल्कुल बिल्कुल, मैंने एक गल दसो, यूसुफ शाह साहब तुहानू सुन रहे ने, आज उना दी सालगिरह है।
2: यूसुफ साहब बड़े उस्ताद है जी, उना की जनाब ने बिल्कुल उना की मुबारकबाद पेश करना, ते अल्लाह ताला उना की सलामत रखे और हजारा खुशियां नसीब फरमाए।
0: चलो जी इस टाइम सुन रहे ने सालगिरह, एक बार थोड़ा जो की आखिरी सटो ना हैप्पी बर्थडे
2: जिन्हें मैं थोड़ा जहा बताया था, मैं उन्होंने माफी जाना तो आता।
0: अच्छा चलो जी, अल्लाह ताला सारे
2: बड़ी मेहरबानी तुसा जी। थोड़ा जे मैं थोड़ा जे कुछ गला था दो लाइन च, मैं तुसे नी नजर करसा अगर इजाजत दियो।
0: नहीं आज तुसा की इजाजत को नहीं, आज तुसा माड़ी गल मनसो। पता क्यों? अज मनो, अज मी किसे आखिया के अज किसे गल गाड़ा नहीं सुनना, अज ऑर्डर सन प्रोड्यूसर साहब ने। क्या बात है जी, बहुत शुक्रिया जी। यूसुफ साहब आप इस वक्त यकीनी तौर पर सुन रहे होंगे, आपके फेवरेट कॉलर है रेडियो टीवी आर्टिस्ट, और यूसुफ भाई को हमने प्रोग्राम के आगाज में सालगिरह भी विश की थी, और उसके अलावा दोस्ती जो ट्रैक है नाजिया हसन और जोहेब का वो भी हमने प्रोग्राम में शामिल किया था। और समरा कहती है जी मेरा पैगाम आपने ज़रूर देना है, वो जो सबको सलाम देते हैं इश्तियाक साहब, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी वो सलाम दें तो मेरा नाम भी वो लिया करें। जी हमने आपका पैगाम पहुंचा दिया दोस्तों। हमारे साथ आरिफ न्याजी साहब हैदराबाद से मौजूद है। भाई हैदराबाद में ट्रांसमिशन बंद हो गई है, मास्टर कंट्रोल रूम में इस वक्त डेफिनेटली मेरी आवाज़ सुनी जा रही है, तो सर आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है जितने भी इंजीनियर्स इस वक्त NCR में मौजूद हैं प्लीज़ हैदराबाद से पता कीजिएगा कि क्यों ट्रांसमिशन उन्होंने क्लोज़ की, या तो बिजली चली गई है या फिर क्या सूरत हाल। बहरहाल कोई सिलसिला नहीं जी, आप लोग अपने कमेंट्स कर सकते हैं। यूसुफ भाई के कुछ मैसेजेस आ रहे हैं, शायद ये मैनू कहना चाह रहे हो या हमें ऑनर दसना है। अच्छा ठीक है, आप कहते हैं कि जी जब इंसान गलती भी खुद करे और रिस्ट्रिक्शंस भी खुद लगाए और ख़ुद को बहुत महान समझे उसके बारे में क्या कहेंगे। यूसुफ भाई आप हमसे सीनियर हैं, आप हमारे बड़े हैं, मैं अब क्या कह सकता हूँ सवाल से। दुनिया के सामने खुद को सुपीरियर शो करें, शायद ये इंग्लिश द वर्ड के थ्रू देख के लिखा ना सब तो पहले मैंने तुझे ये दसना है किसी एक इंसान की वजह से बर्थडे ठीक हो गया। शायद जी फिल्टर कर लिया आके मैंने आपका मैसेज। बहरहाल खुश रहें जी, अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, और ज़िंदगी का एक नया साल आपका शुरू है, अल्लाह ताला ये साल भी आपको इतनी खुशियां दे जितनी लास्ट ईयर बल्कि इससे ज़्यादा अल्लाह ताला आपके नसीब में करे, आमीन। और जिन दोस्तों की सालगिरह है, हमारे एक प्रेजेंटर होते थे वो कहा करते थे जिन जिन की सालगिरह, मतलब ये वो वाले जिन नहीं है, मतलब वो कह रहे थे कि आज जिस दोस्त की भी सालगिरह है हम सब उसको 101 की पूरी टीम की जानिब से सालगिरह मुबारक कहते हैं। नेक्स्ट कॉल देखते हैं जी, दो रेगुलर कॉलर तो आज हमारे आगे, अब देखते हैं कि नेक्स्ट कॉलर कौन कहाँ से मौजूद हैं। बराए मेहरबानी जो टेलीफोन रेडियो सेट की आवाज़ प्लीज़ ऑफ कर दिया करें ताकि मेरे लिए आसानी हो, जितने भी लोग इस वक्त रेडियो सुन रहे हैं उनके लिए आसानी हो जाया करेगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन बात करे जी? मरियम रानी फ्रॉम आजाद कश्मीर। मरियम, बड़े अरसे बाद कॉल किया आपने।
3: भैया जी बस मसरूफ।
0: मसरूफ आप तो नहीं एहतजाज में चली गई थी?
3: नहीं नहीं
0: चलो छोड़े इसमें ज्यादा बात नहीं करती। क्या हाल है आपका? ठीक है?
3: मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं भैया
0: जानी? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का बहुत एहसान है। नाराज हो जाए तो जल्दी मान जाती है या नहीं?
3: जल्दी मान जाती है, मुझसे किसी से नाराज हो नहीं जाता।
0: अच्छा आपसे किसी से नाराज हुआ ही नहीं? अगर कोई बंदा आपसे नाराज हो जाए तो फिर क्या करती है बताएं?
3: अल्लाह जी मुझसे नहीं मनाया जाता।
0: अच्छा नाराज भी नहीं हुआ जाता और मनाया भी नहीं जाता?
3: नहीं मनाया जाता।
0: ए, मुझे ये बताएं आजकल की जनरेशन जो है वे जिंदगी कैसे गुजारेंगे आप लोग यार?
3: पता नहीं लेकिन पता नहीं अगला बंदा नहीं मान रहा होता या मुझसे नहीं मनाया जाता, मुझे नहीं पता।
0: अच्छा अच्छा मतलब
3: लेकिन मैं किसी से रुठती नहीं हूँ।
0: अच्छा लेकिन आप किसी से नाराज नहीं होते। चलें जी, अल्लाह खुश रखे आपको। कोई पैगाम देना चाहेंगी, कुछ कहना चाहेंगी?
3: बस सब सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम बोलूंगी, दुआओं में याद रखिएगा और दुआ करें कि हमारे कश्मीर के हालात ठीक हो जाएं
0: इंशाल्लाह।
3: बहुत बहुत परेशानियों का
0: इंशाल्लाह इंशाल्लाह, मैं खुद इसका इफेक्टिव हूँ, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है
3: तो मेरी दोस्त मोना को भी अस्सलाम वालेकुम बोलूंगी और बस आपके लिए।
0: ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी, जज़ाकअल्लाह, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट कॉल जी, अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अवैस भाई इस्लाम आबाद से, आप इस्लामाबाद किस जगह से कॉल किए भाई?
4: रवाद के साइड
0: से। रवाद से सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं
4: अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल बेहतरीन, फर्स्ट क्लास। बहुत अरसे के बाद आपसे बात हो रही है
0: सर। जज़ाकअल्लाह, मुझे बताएं ड्राइव वगैरह तो नहीं कर रही है कहीं घर पे आप?
4: नहीं अभी तो मैं घर में ही हूँ।
0: अच्छा अच्छा, घर पे
4: प्रोग्राम सुन रहा हूँ।
0: ठीक है, बहुत शुक्रिया प्यारे प्यारे भाई। टॉपिक सुना आपने?
4: बिल्कुल टॉपिक सुना है और यही कहूंगा कि दोस्त तो बहुत कम है और उनसे क्या नाराज होना, ठीक है? वहाँ पे तो दो वाला ही मामला होता है, वो सारे मतलब हल करके ही आते हैं, तो बाकी यहाँ पे हो जाते हैं घर में कुछ ऊंच नीच हो जाते हैं तो बड़ा मसला होता है, ठीक है?
0: अच्छा,
4: तो बड़ी बेचैनी बड़ी परेशानी होती है अगर कोई ऐसी बात हो, कभी कभी तो बातें तूल पकड़ जाते हैं, तो मुझे तो बेचैनी होती है लेकिन मुझे कोई मनाने वाला वैसे नहीं है, कभी कभी तो बहुत लंबा पेन हो जाता है, तो ये बातें बड़ी चुपती है, तो मनाने वाला कोई नहीं है, कोशिश यही होती है कि मसले को हल किया जाए, मैं करता हूँ कोशिश। और अगर दूसरे की बात करें कि कोई करेगा तो वो नहीं हो सकता, फिर वो मुश्किल है।
0: ठीक हो गया, ठीक है, चलें सर, बड़ी अच्छी आदत है आपकी, अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे और यही आदत आपकी हमेशा रहे, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। इसके अलावा कुछ कहना चाहते हैं?
4: बस सर आपका प्रोग्राम अच्छा है, एक अच्छे के बाद आपका प्रोग्राम सुन रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे लोड शेडिंग भी हो रही है आजकल, बार बार बिजली जा रही है, पता नहीं क्या
0: ऐसे ही है। ऐसे ही सर, लोड शेडिंग हो रही है तो शायद तभी आप रेडियो सुन रहे, नहीं तो तुसी ते टिकटॉक देखनी सी।
4: सर मैं सो गया था, मैं अच्छा, सो गया था, ये बिजली चली गई थी, बाकी आप बात सब ठीक कर रहे हैं।
0: हाँ, देखिए ना बिजली गई, आप उठे हैं तो तुसी क्या, चलो रेडियो सुन लीजिए।
4: अरे आप एक शेर ही सुना देते हैं कि कल दो पैर अजब सी बेद गिरी रही, कल दो पैर अजब सी बेद गिरी रही, बस बिजलियां जला जला के बुझाता रहा हूं।
0: अरे क्या बात है, क्या बात है, ख्याल रखिएगा मेरे दोस्त, ठीक है?
4: थैंक यू जी,
0: अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।

0: ओके जी, खुश आमदीद कहते हैं तमाम दोस्तों को 0519205400, 0515100101 पर दोस्तों आपके लाइव कॉल्स प्रोग्राम में शामिल कर रहे हैं। मुझे कहते हैं गजनफर महमूद कियानी, आपको क्या कहते हैं जरूर बताइए। नेक्स्ट कॉल शामिल करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन बात कर रहा है?
1: मारी अकबर बात कर रही
0: है। मारी अकबर बात कर रही है कराची से
1: जी।
0: सेहत ठीक है आपकी? एक सवाल में आप ढेर सारी चीजें पूछ लेते हैं फिर
1: तो फिर आप बता देना।
0: सब ठीक है अल्लाह का शुक्र है। बताएं कराची का मौसम गर्म है या ठीक है?
1: ठीक है।
0: अच्छा ठीक है,
1: ठीक है। पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि मेरी तरफ से मोहम्मद यूसुफ को बहुत ज्यादा साल गया की मुबारकबाद।
0: ठीक हो गया।
1: और दूसरा जो उन्होंने आपसे सवाल किया ना, तो उसका जवाब यही है की उनको उनके हाल से छोड़ दें। अगर उनके हाल से नहीं छोड़ सकते, उनको भी नहीं छोड़ सकते, तो फिर उनकी हाँ में हाँ मिलाएं।
0: ये सबसे अच्छा मशवरा है, ये सबसे अच्छा मशवरा।
1: आजकल के दौर में सबके साथ हाँ में हाँ मिलाएं। कोई कहे ना कि मैंने कल हाथी को तार पे बैठे देखे, तो आप गए मैंने उठते हुए देखे।
0: ठीक। अगर आपने झगड़ा खत्म करना है फिर ये ऑप्शन है।
1: हाँ ये ऑप्शन है।
0: लेकिन एक और चीज भी है ना, ये डिफरेंट केस में हम इसको लेते हैं कि अगर दरमियान में क्यों गलत फहमी है तो उसका हल क्या है? मतलब जब तक आप आमना सामना नहीं करेंगे किसी भी रिलेशन में तो कैसे ठीक होगा?
1: हाँ ये गलत फहमी तो फिर बात करने से दूर होगी ना।
0: ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है।
1: वो तो भी आमने सामने, ऐसे मोबाइल पर नहीं।
0: मोबाइल पे नहीं, ये मोबाइल ने सारा काम खराब किया है।
1: हाँ, ये वाला हाँ। ये वाले मामलात बहुत खराब हो जाते हैं इस तरह से।
0: ठीक हो गया। अच्छा टॉपिक पे क्या कहेंगी आप की अपनी शख्सियत कैसी है, नाराज और नहीं वाली?
1: पहले मैं अगर बहुत अच्छे पहले की बात करूं तो मैं आसानी से जो है ना वो नाराजगी नहीं खत्म करती थी। अच्छा। फिर मैं मैच्योर हो गई हूँ।
0: अच्छा,
1: फिर मैं मान जाती हूँ जल्दी।
0: मतलब फिर आपकी शादी होगी?
1: आसान लफ्ज में।
0: ठीक हो गया, चूंकि मैच्योर फिर ज्यादातर जो है ना वो फिर वही होता है सिलसिला। बहरहाल ठीक है, तो आप मशवरा क्या देंगी कि जल्दी मान जाना चाहिए या नहीं?
1: जल्दी मान जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप जल्दी नहीं मनाते तो फिर वो आपको आपके हाल पे छोड़ देते हैं।
0: ऐसे ही, और ऐसा किसी को किसी के हाल पे नहीं छोड़ना चाहिए कम से कम। चले बहुत शुक्रिया हमारी। इसके अलावा कुछ कहना चाहेंगी?
1: इसके अलावा जो भी अच्छे से गाना होगा, वैसे तो आपने मुस्तफा जाहिद का प्ले कर दिया है, जो भी अच्छा गाना होगा वो मेरी तरफ से यूसुफ को डेडिकेट।
0: ठीक है, ये
1: वैसे आज बड़े लोग शायद सुन रहे हैं तो इस
0: से नहीं, लेकिन विदाउट बर्थडे गिफ्ट तो हम एक्सेप्ट नहीं करते भाईजान।
1: नहीं कर लेंगे वो।
0: चलो ठीक हो गया। नहीं मैं उनकी नहीं कह रहा, मैं अपनी कह रहा हूँ। मुझे आप भेजें, मैं यूसुफ भाई को पहुंचा दूंगा। ठीक है,
1: ठीक है, ठीक।
0: बहुत शुक्रिया, ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज दोस्तों। 1:04 हो चुके हैं, आपका मेरा साथ रहेगा 2 बजे तक। मुझे कहते हैं गजनफर महमूद कियानी, आपको क्या कहते हैं जरूर बताइएगा। नेक्स्ट कॉल देखते हैं कौन हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम सलाम गजनफर भाई, कैसे हैं?
0: मैं ठीक हूँ प्यारे भाई, रेडियो बंद कर दें प्लीज।
2: एक मिनट ये नहीं कर दिया।
0: मैं सदके जावा तुहाडे तो, तुसे ये दसो पहले क्यों नहीं बंद किया?
2: नहीं सर, वो पहले ना मैं कभी कभी कंफ्यूज हो जाता हूँ, क्योंकि वो कॉल का पता नहीं चलता। जब रेडियो पे कॉल पिक होती है ना तो पता चल
0: जाता है। हाँ, जज़ाकअल्लाह बहुत शुक्रिया प्यारे भाई। नाम अपना प्यारा सा, जगह का नाम?
2: जी मलक इरफान बात कर रहा हूँ, मंडी बालदीन से।
0: मलक इरफान साहब मंडी बाउद्दीन से हमारे साथ मौजूद हैं। नाराज जल्दी होते हैं या नहीं?
2: मैं जो है ना गजनफर भाई, जब मेरी अम्मी जिंदा थी तब तो मैं फैमिली में बड़ी नाराजगी करता था, छोटी सी बात से मतलब ना नाराज हो जाता था।
0: अच्छा अच्छा।
2: तो जब से उनकी डेथ हुई है फैमिली में, तो पता है अब किसी ने मनाना नहीं है, तो दोस्तों में मतलब गुस्सा आता है, लेकिन जब थोड़ी देर के लिए गुस्सा खत्म होता है तो कहता हूँ कि यार ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन अब ना गुजनफर भाई मैंने जिंदगी का एक मामूल बना लिया है।
0: ठीक हो गया।
2: कुछ दोस्त है ना, अगर जिसमें एक खामी है उसको गलती का एहसास ही नहीं होता, मतलब गलती करके फिर भी वो अपने आप को मतलब ना बड़ा समझता है।
0: अच्छा।
2: तो उससे नाराज मतलब ना हो, कम अज कम उससे रब्ता खत्म कर दे।
0: ठीक। अच्छा मतलब आप कह रहे हैं कता तालकी कर देनी चाहिए?
2: हाँ बिल्कुल, मतलब ऐसा करना चाहिए कि उसकी अगर कोई खुशी है कमी है कॉल करके मतलब उसको हौसला अफजाई करनी चाहिए। लेकिन जो ज्यादा रास्ता है ना वो उनसे मुनकता कर देना चाहिए, क्योंकि यार जब इंसान को अपनी गलती का एहसास होता ही नहीं ना, तो मेरे ख्याल से इंसान ही नहीं होता। क्योंकि जब गलती करके सॉरी बंदा कह देता है कि यार मेरी ये मजबूरी थी या मुझसे ये गलती हो गई।
0: अच्छा।
2: अब सामने वाले को भी एहसास हो जाता है तो, लेकिन मुझसे ना पछतावा होता है कि यार क्यों मैंने ऐसा किया।
0: ठीक हो गया।
2: लेकिन बार बार नाराजगी करने वाले से बेहतर होता है कि मतलब नाराजगी खत्म करके मतलब उससे ना काम में रिलेशन करो।
0: क्या बात है प्यारे भाई, क्या बात है, बहुत शुक्रिया अपना, ढेर सारा ख्याल रखिएगा।
2: तमाम सुनने वालों को सलाम, आपके लिए ढेर
0: सारा। अल्लाह हाफिज़। वो लिरिक्स सुनिएगा दोस्तों।

0: क्या बात है जी, बड़े ज़बरदस्त किस्म के लिरिक्स हैं, हमारे टॉपिक से बिल्कुल मैच कर रहा है जी ये ट्रैक। और राहत फ़तेह अली ख़ान की आवाज़, आप जानते हैं कि उस्ताद हैं और उनकी आवाज़ जो है वो दिल में घर करती है। वैसे भी मैंने काफ़ी दफ़ा अपने प्रोग्राम्स में एक बात की है कि आप कोई भी आपका रिलेशन है, आप दोस्त हैं, आप हस्बैंड वाइफ हैं, या आप किसी भी जगह काम करते हैं एक साथ, तो दोस्तों खुद साख्ता जो आजमाइश होती है ना, कि मतलब कुछ लोग प्लान करते हैं ना कि यार मैं इसको ये कह के देखता हूँ, देखता हूँ वो क्या रिएक्ट करता है, तो इससे मैं हमेशा आप लोगों को कहता हूँ कि दूर रहा करें, मतलब नहीं करनी चाहिए। हाँ, एक अलग चीज़ है, एक अल्लाह ताला की तरफ से आप पे कोई चीज़ आती है। देखिए, हर इंसान की ज़िंदगी ना कोई सीधी लाइन की तरह नहीं है। हमारी ये जो ब्लू एरिया की मेन रोड है, ये बिल्कुल सीधी है, लेकिन दरमियान में सेंटोरस के सामने जाके इसमें भी कर्व आता है, इसमें भी एक जो है वो फ्लाईओवर है। तो हर किसी की ज़िंदगी आपको जो आप एक अपने एंगल से देख रहे होते हैं उस तरह नहीं होती। हर किसी के साथ अपने अपने मसाइल हैं, अपने अपने प्रॉब्लम्स हैं। इसकी मैं आपको एक ना बहुत आसान एग्जांपल, बल्कि मैं हमेशा कोशिश ये होती है कि वो एग्जांपल दूँ जो खुद से गुजरी हो, अपने के साथ मुंसलिक हो, ताकि मैं किसी के ना कहूँगी जी ये एग्जाम्पल। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ कि रिसेंटली, माजर के साथ जी, रिसेंटली हुआ इस तरह के, वालदा मेरी ने ट्रैवल करना था कश्मीर के लिए, और मैं उनके साथ गया, फिर किसी वजह से वापस आना पड़ा, और फिर यहाँ मौसम बहुत ज़्यादा गर्म था। हम गर्मियों का मौसम जो ज़्यादातर बुज़ुर्ग जो है वो गाँव में गुजारते थे, जो गाँव में बहुत ठंडा मौसम है, पंखों की ज़रूरत नहीं होती, फ्रिज की ज़रूरत नहीं होती, माशाल्लाह सब कुछ वहाँ पे कुदरती तौर पर जो अल्लाह ताला की तरफ से जो मौसम है वहाँ का है। तो उन्होंने मुझे कहा, मैंने फिर जाना, मैं कहा माँ जी मुझे छुट्टियाँ लेने दें, मैं आपको उसमें ड्रॉप कराऊंगा, कोई मसला नहीं। इस दौरान मेरे जो कज़न हैं, दो मामू के बेटे, उन्होंने ट्रैवल किया, वो गाड़ी लेके गए खाली, मतलब ऑलमोस्ट वही दो थे और कोई तीसरा बंदा था नहीं। नेक्स्ट वेरी नेक्स्ट डे मुझे अम्मी ने गिला किया कि देख बेटा वो चले गए, उन्होंने मुझसे पूछा था कि नहीं। तो मैंने उनसे कहा, बड़े प्यार से समझाया, मैं कहा माँ जी मुझे एक बात बताएं कि आजकल ना हर कोई बंदा अपनी आसानी देखता है, हर बंदे के अपने मसाइल हैं, हर बंदे ने अपनी तरह से ज़िंदगी गुजारनी है। अगर फ़र्ज़ करें आप उनको छोड़ें, मैं अगर गांव जाऊं, मैं तो कभी नहीं अपने पापा को फ़ोन करके पूछूंगा कि आपने मेरे साथ जाना है कि नहीं जाना। हाँ, ये एक अलग बात है कि वो अगर मुझे फ़ोन करके कहें कि यार इस तरह मैंने जाना है, तो जब भी गया बच्चा मुझे बताना, मुझे साथ ले जाना, वो एक अलग चीज़ है। तो इस तरह दोस्तों खुद साख्ता आजमाए जो है, अब देखिए जब उनको मैंने ये बात की तो उन्होंने कहा हाँ बेटा तू ठीक कह रहा है, अदरवाइज वैसे वो 2-3 दिन से कुड़ रही थी, कि मतलब कुड़ना इन अ सेंस हम कश्मीरी जबान में कहते हैं कि दिल में बात रख के नाराज़ होना, खफा होना। तो इस तरह की खुद साख्ता आजमाई जब इंसान खुद से डाल देता है ना कि यार मैं ये हो गया वो हो गया, इस तरह नहीं होना चाहिए। हाँ, एक अलग चीज़ अल्लाह ताला की तरफ से जब कोई आजमाइश होती है, तो आपने अपने जो करीबी रिलेशन होते हैं, करीबी दोस्त होते हैं, उनके साथ लाजमी खड़े होना चाहिए। और सबसे ज़्यादा जो काम ख़राब करती हैं आजकल की चीज़ें, वो गलत फहमियाँ। अगर आप में किसी में भी एक दूसरे के साथ नाराज़गी है या कोई भी प्रॉब्लम है, प्लीज़ एक दफ़ा आमने सामने होकर बातचीत कर लिया करें, ताकि बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो हल हो जाती हैं। मैं हमेशा एक बात कहा करता हूँ कि जस्ट एक सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद करके देखें, सिवाय अंधेरे के आपको कुछ नज़र नहीं आएगा। तो ज़िंदगी इसी का नाम है जो पल आप जी रहे हैं। नौकरी लग जाएगी, सारे मामला ठीक हो जाएंगे, कमेटी निकल जाएगी, सारे मामला ठीक हो जाएंगे, गाड़ी ले लूँगा तब सारे मामला ठीक हो जाएंगे, बाइक ले लूँगा तब सारे मामला ठीक हो जाएंगे, सब फ्यूचर की चीज़ें हैं, मतलब होंगी नहीं होंगी। हम उस टाइम तक पहुँचते पहुँचते तक अपनी ज़िंदगी के बहुत कीमती वक्त ज़ाया करते हैं। तो बहनों और भाइयों, अल्लाह लो किड़े पास टूर पर कोशिश ये किया करें जो वक्त आप जी रहे हैं इसमें जिया करें, जो आपके करीब लोग हैं, जो आपसे मुंसलिक लोग हैं, उनको खुश रखा करें। कब आंखें बंद हो जाएं कोई पता नहीं। नेक्स्ट कॉल, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, ये भी कोई रेडियो ट्यून की तरह किसी ने। अस्सलाम वालेकुम जी।
1: जी अस्सलाम वालेकुम।
0: ओ वालेकुम सलाम,
1: क्या हाल है भाई? ठीक ठाक है जी आप?
0: और जी मैं ठीक हूँ, आप बताएं ठीक हैं?
1: माशाल्लाह जी, आपकी दुआएं जी, बहुत अच्छा माशाल्लाह शो है आपका, और हम इंतजार करते कब काल हमारी लग दे।
0: अरे सर बहुत शुक्रिया, मोहब्बत आपकी। सेहत ठीक है आपकी?
1: आप अल्लाह का शुक्र है। तो पहले नंबर मोहम्मद यूसुफ को मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक जी, हम उनको भी सुनते हैं।
0: ठीक हो गया,
1: बहुत अच्छे हमारे आज ये है। और दूसरा जो मेरा भाई आया था जो माफी मांग रहा था, भाई कोई गिला नहीं है मुझके तुमके साथ,
0: अरे क्या
1: हमारे भाई हो, कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन देखो जी, मैं जिंदगी में कभी किसी को मतलब बात नहीं करता किसी के खिलाफ, ना किसी को लगा के करता हूँ।
0: अरे क्या,
1: मैं एक शुगली सा आदमी हूँ। मैं कहता हूँ जब मैं दुनिया से जाऊँ मगर आप दुआ करें कि हमें थोड़ा बहुत हंसा आ जाते।
0: सर अल्लाह ताला आपको सेहत वाली जिंदगी दे, इस तरह की बातें ना किया करें, मुझे बहुत दुख होता है
1: जी। बहरहाल जी, जाना तो है ना,
0: ख्याल
1: तो
0: ख्याल रखिए,
1: बांटने आए हैं। अल्लाह ताला आपकी जिंदगी तंदुरुस्ती रखे।
0: आमीन, आमीन, आमीन।
1: और जितने मेरे भाई आते वन वन पे, जितने भी कॉल करते हैं, सब मैं प्यार करता हूँ, मोहब्बत करता हूँ।
0: बहुत शुक्रिया जी, करते रहे जी, सब ढेर सारी मोहब्बत करनी है आपने। ठीक है
1: जी, तो वो नाराजगी की बात रहेगी ना, जब हम दोस्त से कोई बहस हो जाती है ना, वो नाराज हो जाते है ना, फिर आपस में बुलाते नहीं ना, फिर हम मैं खुद यकीन माने मैं खुद पल्ले से पैसे लगा कर और चाहे बिस्कुट और जो बोतलें मैं उनकी सुलह करा देता हूँ, नाराजगी नहीं रहने।
0: बहुत मीठी आदत है आपकी, कभी हमें भी बुलाए ना चाहे बिस्कुट पे।
1: हाँ जी बिस्मिल्लाह, आप लाहौर आए ना, आपको लाहौर तो दिखाए ना पहले।
0: मैं
1: आपने लाहौर नहीं देखा, इधर आए हमारे पास।
0: मैं इंशाल्लाह इंशाल्लाह
1: सर्दियों में आपको चिकन चने खिलाएंगे और साथ नान खिलाएंगे।
0: ठीक है जी, मैं तब तक ना चिकन चने फिर लाहौर ही आके खाऊंगा। ठीक है,
1: और मैं जब रक्षा चलाता था ना,
0: हाँ,
1: तो मैं वो चिड़िया का झूमनी है जिसको बोलते चिड़िया कार,
0: ठीक है,
1: वहाँ पे मैं खड़ा था। वो बाहर से सवारी आई थी, बाहर से मुल्क से।
0: अच्छा,
1: वो मेरे पास आके कहती हेलो यंग मैन, तो मैंने आगे से कहता माफ कर बहन। तो बड़ी
0: मेहरबानी, अल्लाह आपको अल्लाह ताला सबको खुश रखे। आमीन, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का जी। ट्रैक शामिल करते हैं जी शिफाउल्लाह की आवाज में, और जो ये कह रहे हैं वो बात माननी आपने।

0: है?
1: नहीं बाप वालों को क्या गुस्सा आना है मुझे तो समझा करने की उसको
0: ठीक है जी, समझ गए जी। बस एक दूसरे तो गुस्सा ही रहता है सारी टाइम। नाराज हो जाए जल्दी मान जाते हैं या नहीं?
1: सारे कुछ बातें ऐसी होती हैं जो एतमाद को ठेस पहुंचाते हैं।
0: आज एतमाद वाले बड़े लोग आ रहे हैं, नाले वो केड़े पास टूर पे हो।
1: नहीं नहीं मैं बात तो समझ आपकी, आपने फिर पूछ लिया तो फिर आप दुखी रख के आपने आदर जो रख दिया तो आप पूरी कहानी तो समझ।
0: सुनाए सर सुनाए।
1: जो इंसान मेरे एतमाद को ठेस पहुंचाता है उनसे तो मैं कभी भी नाराज, कयामत तक नहीं नाराज होऊंगा।
0: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा,
1: जो नॉर्मल नाराजगी होती है वो तो चलती रहती है दोस्तों में, घर वालों में, वो बस सुलह होती रहती है।
0: ठीक हो गया,
1: मेरे दिमाग को ठेस पता है उसको मैं कयामत वाले दिन भी नहीं माफ करूंगा।
0: ठीक हो गया, और ट्रस्ट के वाले से आप बात करें। ठीक है मेरे दोस्त, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अच्छा
1: जी सर, ओके, अल्लाह हाफिज़। सब हम सुनने वाले को भी करते हैं।
0: वालेकुम सलाम। ये तो टॉपिक थोड़ा किसी और साइड चला गया यार, ध्यान किया करें, थोड़ा सा मीठापन जो है वो अपनी ज़िंदगी में लाए। मुदस्सर भाई आपका बहुत शुक्रिया। आतिफ अली हमारे साथ मौजूद हैं, कहते हैं अल्लाह लियो किड़े पास टूर पे हो मेरे दोस्त, मैं यहीं पे हूँ आज भी। मैम आपका मैसेज है, ज़िंदगी के मामूलात में ये नाराज़गी वाला लफ्ज़ ही गलत है। जब एतबार हो तो फिर हर हाल में हो, नहीं तो मुकम्मल ना हो। जो लोग नाराज़ होते हैं वो ख़ुद अपनी ज़ात को तकलीफ़ देते हैं और दूसरों के लिए भी तकलीफ़ का बायस बनते हैं। बात बहुत सीधी सी है, जब ताल्लुक़ रखना है तो झगड़ा कैसा, और जब ताल्लुक़ रखना ही नहीं तो शिकवा कैसा। ठीक हो गया जी, थैंक यू आपके मैसेज का। लेकिन ये वही बात है कि इंसान जब आपस में बातचीत करता है तो चीज़ें बहुत ज़्यादा जो हैं वो क्लियर हो जाती हैं, और नाराज़गी जो है वैसे भी बहुत अरसा नहीं रखनी चाहिए इन तमाम चीज़ों में। 1:25 हो चुके हैं, मुझे कहते हैं गज़नफ़र महमूद कियानी, काफ़ी जगह पर लाइट नहीं है दोस्तों। सीरियसली कोई ऐसी टेक्नोलॉजी होती कि हमारे स्टूडियो में जिस वक्त एसी ऑन है इसकी ठंडक जो है वो मैं आप तक पहुंचा सकता तो मैं यकीनी तौर पर जो है मैं पहुंचाता आप तक, ताकि आप भी इसकी ठंडी हवाएं ले सकते। और ऑब्वियसली काफ़ी ज़्यादा लोग इसी वजह से गुस्से में हैं कि वो जो है नहीं। अच्छा मुदस्सर भाई कह रहे हैं सर लाइट है, ऑफिस का कुछ काम कर रहा था। चलो मुदस्सर भाई बहुत शुक्रिया जी, लेकिन डेडिकेशन चेक करें कि रात के इस वक्त भी वो ऑफिस का काम, तो देखें वही बात, नौकरी करनी थी नखरा की। तो थैंक यू सो मच जी आप तमाम दोस्तों का। 1:26 हो चुके हैं, एक ट्रैक प्रोग्राम में शामिल करूंगा। एम शरीफ लाहौर से मौजूद हैं, अस्सलाम वालेकुम। सोबिया मरी से हैं सर, रिश्तेदारों की नाराज़गी में मज़ा आता है। चेक करें ये तीली लगाने वाले आ गए। सोबिया कहती है सर रिश्तेदारों की नाराज़गी में मज़ा आता है। तो ये देखें ये काम जब होता है ना तो फिर मामला जो है ना वो थोड़े थोड़े से इधर उधर हो जाते हैं। बहरहाल ख्याल रखा करें इन चीज़ों का। अपने मोबाइल के क्रिएट मैसेज ऑप्शन में जाएंगे, 101 लिखेंगे, स्पेस देंगे अपना नाम, शहर का नाम, और खूबसूरत से पैगाम के साथ भेजेंगे 4471 पर। और इसके अलावा आप facebook.com/FM101 चैनल पाकिस्तान पे आप हमें SMS कर सकते हैं। मैडम नूरजान की आवाज़ को प्रोग्राम में शामिल करने जा रहा हूँ जी, ये सुने और इंजॉय करें, वापस आते हैं गपशप करेंगे। ढेर सारी बंदा इन आज चीज़ को कहते हैं गज़नफ़र महमूद कियानी, आपको क्या कहते हैं ज़रूर बताइएगा।

0: 4441 पे दोस्तों आपके कुछ पैगाम हैं इनको हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे और फेसबुक पे फिर देन आपके लाइव कॉल्स लेकर आगे चलेंगे। सुनो एफएम पाक आर्मी से गुमनाम लड़का, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? प्रोग्राम अच्छा है आपका। और हम आर्मी वाले किसी से नाराज़ होने का हक किधर रखते हैं? मतलब आप मुझसे सवाल करें, नहीं मेरे दोस्त ऐसी कोई बात नहीं है। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, अपना ढेर सारा ख्याल रखा करें और इस तरह नहीं सोचते। अस्सलाम वालेकुम जी, सलमान मिर्ज़ा फ्रॉम इस्लामाबाद। ब्रैकेट में आपने लिखा है जी, ब्रैकेट शुरू और ब्रैकेट बंद करके दरमियान में आपने लिखा है जी, पढ़ना ज़रूर है। सलमान भाई, ये मैसेज मैंने पढ़ा ज़रूर है, मैं ऑनर भी कर देता हूँ, आपका बहुत शुक्रिया। क्यों इतने दुखी हैं पहले ये तो मुझे बताएं। आप लिखते हैं कि मैं रूठा तो मनाना ही नहीं, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट बंद, मैं रूठा तो मनाना ही नहीं, वो मनाते मनाते मुझे खाक कर गया। आगे आपने फिर ब्रैकेट के बाद खाकसार लिखा है। तो सलमान भाई क्यों इतने उदास हैं मुझे सबसे पहले तो ये बताइएगा, बाकी भी इंशाल्लाह फिर गपशप करते हैं। मोहम्मद ताहिर फ्रॉम सिब्बी बलोचिस्तान, नाइस शो, बहुत शुक्रिया जी। सिब्बी तक हमारी आवाज़ जा रही है, आप तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया। रात के इस पहर, रात के 1:33 पे अगर आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो आपकी मोहब्बतों चाहतों का बहुत शुक्रिया। यकीन जानिए मेरे घर में आज तक किसी ने प्रोग्राम नहीं सुना, तो आप लोग सुनते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, और जब भी आप लोगों का फीडबैक मिलता है प्रोग्राम का बहुत अच्छा लगता है। हमारे साथ सानिया मौजूद है जी, रावलपिंडी से आपने मैसेज किया है। उर्दू में ढेर सारी कहानी आपने लिख भेजी है, उसकी कुछ चीज़ें हम शामिल करेंगे। आप कहती हैं कि हर दिल में एक कहानी छुपी होती है, कुछ कहानियां लफ्ज़ों में बयान हो जाती हैं और कुछ खामोशियों में उम्र भर दफन रहती हैं, इसलिए लोगों के साथ नरमी से पेश आया करें क्योंकि हर दिल अपने अंदर एक अनकही दास्तान लिए फिरता है। यही बात थोड़ी देर पहले मैंने कही थी कि हर किसी की जिंदगी में एक अपनी कहानी है, एक अपनी स्टोरी है, और हर शख्स अपनी कहानी का हीरो है। नाइन्टीज की जो जनरेशन है दोस्तों, इनकी जिंदगी बड़ी टफ है। मतलब अभी जिस उम्र से गुजर रहे हैं, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज्यादा हैं। सिर्फ हम जेंडर के वाले से बात नहीं करेंगे, मर्दों में जिम्मेदारियां बहुत हैं, खवातीन मेल फीमेल में दोनों की बात करूँगा, दोनों पे बहुत ज़्यादा सेम जिम्मेदारियाँ होती हैं। अपना अपना आप अंदाज़ है उसको कैसे बयान करते हैं। इनके लिए टफ इसलिए भी है कि अब ज़िंदगी के उस हिस्से में हैं, घर की जिम्मेदारी है, ऑलमोस्ट बहुत बड़ी तादाद में लोग शादीशुदा हैं, वालिदैन इनके सामने बुज़ुर्गी की हालत में जा रहे हैं। बूढ़ा होना तो मैं नहीं कहूँगा। सबसे मुश्किल बात दोस्तों जो है ना, अब तक मैंने जो अपनी ज़िंदगी में फेस की है या कर रहा हूँ, आप अपने वालिदैन को बूढ़ा होते हुए जब देखते हैं ना, तो बड़ा बड़ा मुश्किल टाइम होता है। ये अल्लाह ताला सबके वालिदैन को सेहत वाली ज़िंदगी दे। कैन यू इमेजिन कि जिस बंदे ने आपको कंधे पे उठा के, मतलब जिस जगहों पे सैर करवाई, मुश्किल वक्त बारिश धूप में उठाया, आज जब उसको देखते हैं कि उनके हाथ कांपते हों, दिल काम जाता है। वैसे सीरियसली मैं अल्लाह ताला मेरे वालदैन को सेहत वाली ज़िंदगी, सबके वालदैन को सेहत दे, आमीन। तो मैं जब वालद साहब की तरफ देखता हूँ कभी कभी, तो मुझे बड़ा वो होता है कि यार बड़ा टफ लाइफ होगी हमारी आने वाले वक्त में। हमने खैर छोड़ें, 1:35 हो चुके हैं दोस्तों। मुझे कहते हैं गज़नफर महमूद कियानी, आपको क्या कहते हैं, आए और दसें मुझे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, रेडियो ऑफ कर दें।
1: अच्छा गुण सर, मैंने रेडियो ऑफ किया हुआ है, असल में मैं मोबाइल पे ही सुनती हूँ।
0: कोई बात नहीं, आज तुसी ये नहीं क्या है कि चंद चढ़ा दिता ही।
1: वो एक ही चंद चढ़ा दिता ही है, गल गलत की थी ना, मैंने करो कोई नहीं सुनता। दादा भाई जी तो शो कर रहे हो, तो छोटी बहन हर वक्त सुन रही होंगी।
0: चले जी, अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे। वो जुमला पूरा करे ना, एक ही चांद चढ़ा देती
1: है, एक ही चांद चढ़ा देती है, और सानू ही वेट करा देती है।
0: कैसे हैं आप, ठीक हैं?
1: अल्हम्दुलिल्लाह, ला और समारी शहजादी अर्ज कर रही हूँ। मैंने कहा जरा लेट कॉल करूंगी।
0: चले, बहुत शुक्रिया जी, जजाकल्ला। मैं इंतजार करता रहता हूँ, आप जितने भी कॉलर्स हैं हमारे, खासकर रेगुलर लिसनर कॉल करते हैं, नाराज तो आप नहीं होती मेरे ख्याल से?
1: आप बेहतर जानते हैं अपनी बहन को। बिल्कुल मैं नाराज किसी से हो ही नहीं सकती। अगर मैं किसी से नाराज हो भी जाऊँ ना, तो मुझे रात भर नींद नहीं आती, यकीन करें।
0: वैसे ये एक ऑब्जर्वेशन मेरी भी है, कुछ लोग ना मतलब अगर जैसे आप कह रही है, मैं अपना खुद भी बताऊं, अगर किसी से नाराजगी है तो मुझे चैन नहीं आता, नींद नहीं आती, लेकिन कुछ लोग नाराज होकर खाते भी दबा के हैं और सो भी जाते हैं।
1: ऐसे ही मैंने एक बंदे से बोला, भाई मैं तुमसे नाराज हूँ, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ा? कहते फर्क क्यों नहीं पड़ा, तुम्हारी नाराजगी होने की वजह से मैंने 2 रोटियां खा ली। कहते
0: ये देख लेना मतलब।
1: जी मैं कि चलो ऐसे चंगा हो गया, मेरी नाराजगी के नाल कोई साडा फायदा हो गया।
0: ना चलो, एक रोटी उन्होंने ज्यादा खा ली थी है।
1: हाँ जी, मैंने मजाक बात की है कि काफी लोग गर्मी से बेचैन हुए होंगे, तो उनके चेहरों पे जरा मुस्कुराहट आ जाए ना,
0: बहुत अच्छी बात
1: शरीर
0: की आपने,
1: चक्कर जारी होता है ना।
0: बहुत अच्छी बात की आपने। तो इट्स मीन आपके टॉपिक ये है कि आप ये कहती हैं कि आप नाराज नहीं और नहीं होना चाहिए, वैसे जल्दी राजी हो जाना चाहिए, ऐसे ही है?
1: जी नहीं होना चाहिए। मैं ये बात करती हूँ कि जब मैं नाराज हो जाती हूँ ना किसी से, या कोई मुझसे नाराज हो जाता है, यकीन करें, मैं कोई भी ऐसा है अपना है, मैं रात में उठ के रो रही होती हूँ, फिर इससे कोई फर्क पड़े ना पड़े, लेकिन मुझे नींद नहीं आती। फिर मेरी कोशिश होती है उसे मनाने की, वो माने या ना माने, मेरी मतलब तो पूरी कोशिश होती है भाई उसको मनाऊं, चाहे गलती मेरी भी है।
0: ऐसे ही है, ऐसे ही है। चलें जी, ये बहुत अच्छी आदत है, अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, कभी किसी से नाराज ना करें और कभी आपसे किसी को नाराज ना करें, अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है?
1: आमिन जी, मैं तमाम सुनने वाली समाजों को, मेरे जितने भी बहन भाई आते हैं, त्रेड़वान भाई, मैं सबको सलाम करूंगी और इसी दुआ से इजाजत चाहूंगी कि अल्लाह गजम्फर भाई को सलामत रखे और उसको अल्लाह पाक के घर की जियारत नसीब
0: आमीन।
1: करे। और एक बात मैं भूल गई, यूसुफ भाई आपको सालगिरह की ढेरों ढेरों मुबारक। अल्लाह ताला आपकी लंबी जिंदगी करे और आपकी आने वाली जिंदगी में भी रहमतें और बरकतें डाल दे
0: आमीन
1: अल्लाह ताला।
0: आमीन। बहुत शुक्रिया जी, जजाकल्ला, खुश हैं, अल्लाह हाफिज़ जी, अल्लाह हाफिज़, बहुत शुक्रिया। दोस्तों, कभी आपने इस तरह नोट किया है कि अगर आप कोई उदास गाना सुन लें, कोई उदास मूवी देख लें, या कोई कहावत या कोई कहानी सुन लें, तो इसमें ना आप मतलब आंसू आ जाते हैं आपकी आंखों में, मतलब आप आंखें नम हो जाती हैं, अगर आसान अल्फाज में आपको समझाऊं तो। इस पे एक कहानी लिखी, काफ़ी दुखिया कहानी, तो नीचे लोग उससे सवाल पूछते थे, यार क्यों इतनी दुखी चीज़ें आप लिखते हैं, लोग परेशान होते हैं, दुखी होते हैं। तो उस भाई ने एक कमेंट किया उस पोस्ट के नीचे और उसको पिन कर दिया, कमाल की बात उसने लिखी थी। वो कहता है कि कौन रोता है किसी और की खातिर, वो कहता है कि कौन रोता है किसी और की खातिर, सबको अपनी ही किसी बात पर रोना आया, सबको अपनी ही किसी बात पे रोना आया। मतलब शेर इस तरह है कि कौन रोता है किसी और की खातिर, सबको अपनी ही किसी बात पर रोना आया। तो ये फैक्ट है, हकीकत है, कि आप जब भी कोई चीज़ देखते हैं और वो आप अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करते हैं और अपनी कुछ ऐसी चीज़ आप याद करते हैं कि सोने हो। बात तो वैसे ठीक है। नेक्स्ट कॉल देखते हैं, कौन हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी। ठीक हो गया जी, ठीक हो गया जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।
2: जी कैसे हैं?
0: मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं कैसे आप?
2: अल्हम्दुलिल्लाह, मैं जान लिया।
0: सर थोड़ा सा नाम अगर बता दें मेहरबानी होगा। आगे
2: नहीं, जरूर बताएंगे, आप ही बात की बात करें।
0: आगे भाई, आज लेट जाग रहे हैं आप।
2: सर आप हमेशा मेरा नाम गलत क्यों बोलते हैं?
0: आकिफ आकिफ
2: नहीं, एटी
0: आतिफ, आतिफ अब्बासी। आतिफ भाई माजत चाहता हूँ, पता नहीं क्यों आगे
2: नहीं, नहीं,
0: पीछे,
2: कोई मसला
0: मैं माजत करता हूँ आपसे जी, और मैंने माफ कर दिया जल्दी
2: नहीं
0: जल्दी। आतिफ भाई खैरियत तो जाग रहे हैं, पौने 2 घंटे लाइट है क्यों नहीं?
2: नहीं लाइट तो है। नहीं जागता तो हम रहते हैं, रेडियो जब प्रोग्राम खत्म नहीं होते, ये बोले 2 बजे बोले होती है।
0: अच्छा, आतिफ भाई बताएं कि कैसी शख्सियत के मालिक है आप, के नाराज अगर हो जाएं और कोई मनाए तो मान जाते हैं या नहीं?
2: यार बनाने से पहले मान जाते हैं
0: अच्छा, पहले ही मतलब ओके कर लेते हैं सिस्टम।
2: यार थोड़ी देर गुजरती है, रात को बड़ी परेशानी होती है,
0: बेचैनी होती है मतलब आपको भी? अच्छा आतिफ भाई,
2: बनाना
0: आपने कुछ ऐसे लोग
2: हो अगर तो फिर तो मसला नहीं, वो भी कर लेते हैं।
0: अच्छा, वो भी एक्सपर्टीज आप में उसकी अच्छी आदत है, होनी चाहिए। ऐसे लोग आपने ऑब्जर्व किए हैं जो नाराज होके चिल माहौल में होते हैं, सोते भी हैं, खाते भी हैं, जी आहो फिर।
2: हाँ वो मैं मतलब कहते भाई ये यूसुफ भाई क्या करे, पूछे आपके इन्होंने कितनी बार है देख लिए तो बताएंगे।
0: यूसुफ भाई माशाल्लाह, पूछ लेते हैं अगर इस वक्त तो मेरी आवाज़ में सुन रहे हैं तो यूसुफ भाई माशाल्लाह बता देंगे अगर वो। यूसुफ भाई बता दीजिएगा अगर आप मेरी आवाज़ इस वक्त सुन रहे हैं तो फिर मैं
2: मुझे
0: ऑनर बता
2: बता
0: दूं।
2: नहीं रहे ना, मैंने पूछा नहीं बता रहे।
0: अच्छा, आपने पूछा नहीं बता रहे, फिर वो शर्माते हैं। देखिए वो अपनी तस्वीर भी नहीं लगाते फेसबुक पे, कहते नज़र लग जाती है सख्त।
2: हमें कुछ कुछ अंदाजा है गाँव के है ना जो। हाँ
0: अच्छा, गिराई आपके है ना,
2: जरा
0: ठीक हो गया, ठीक है। चले आतिफ भाई कुछ और कहना चाहेंगे?
2: तो प्रेरवान परवेज अख्तर अनिला पी सबको सलाम सारे सुनने वालों को।
0: चले, बहुत शुक्रिया, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, ठीक है,
2: बहुत शुक्रिया, सलामत रहें।
0: अल्लाह हाफिज जी। नेक्स्ट कॉल देखते हैं कौन हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम।
3: हेलो, अस्सलाम वालेकुम
0: वालेकुम सलाम, कौन बात कर रहा है?
3: जी, बलाहौर से रिमशा, क्या हाल है भैया जी आपके? जी
0: मैं बिल्कुल ठीक हूँ। रिमशा आप बताएं, सेहत ठीक है आपकी?
3: बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह बस ठीक ही हूँ। बस मुझे गर्मी का बुखार चढ़ गया।
0: गर्मी का बुखार चढ़ गया?
3: जी बिल्कुल, असर के टाइम मेरी तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब थी। आज मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं रेडियो सुन पाऊंगी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बुखार कम हुआ। तो एनएसजी से आज मैं आपको कॉल कर रही हूँ और आपने कॉल पिक कर ली। देखिए, आप कहते हैं ना कि जो आपके पुराने जो है कॉलर वो आपको 1-15 के बाद कॉल करे, तो आज मैंने काफी लेट कॉल की है।
0: नहीं, बहुत शुक्रिया। मैं हरगिज़ ये नहीं कहता कि कॉल ही ना करें, आपका जब दिल करे आप लोग कॉल किया करें और अपनी सेहत का ख्याल रखें, क्योंकि ये जो सख्त गर्मी है ना ये काफ़ी ज़्यादा आपको ना, इसीलिए मैं कहता हूँ कि पानी का ज़्यादा इस्तेमाल किया करें ताकि
3: नहीं
0: ना।
3: नहीं मैं पानी तो भाई इतना ज्यादा पीती हूँ, रोटी कम खाती हूँ। हालांकि रोटी खाने बैठती हूँ, रोटी वैसे ही रहती है, पानी पूरी बोतल खत्म हो जाती है।
0: अच्छा ठीक हो गया, यानी मतलब आप पानी ज़्यादा पीती हैं।
3: जी
0: बहरहाल
3: बिल्कुल, ज्यादा पीती हूँ, हालांकि मैं कहीं गई भी नहीं हूँ और घर में बैठे बैठे गर्मी का बुखार चला लिया।
0: चले, अल्लाह ताला आपको सेहत दें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।
3: आमीन।
0: क्या कहना चाहेंगी? नाराज हो जाती हैं तो जल्दी मान जाती हैं कि नहीं?
3: हाँ मैं ना भाई थोड़े थोड़े नखरे तो खाती हूँ, लेकिन बाद में ना जल्दी से मान भी जाती हूँ ज्यादा।
0: नहीं, अब मैं एक
3: जी
0: कभी कभी मैं एक बात कहता हूँ, देखें थोड़े थोड़े नखरे और मेकअप, ये मतलब चीजें लड़कियों के लिए बनी है, अगर ये नहीं करेंगी तो फिर कौन? और मेकअप मुंडे तो नहीं कर
3: बिल्कुल
0: सकते ना।
3: बिल्कुल, ये बात है ना, नखरे दिखाने चाहिए ताकि उनको थोड़ा बहुत वो हो ना, आकर आसानी से नहीं मानना चाहिए। हालांकि अपने लाइफ पार्टनर के सामने थोड़े नखरे दिखाने चाहिए, बाकी सबके सामने जल्दी मार देने चाहिए।
0: हाँ ये बात ठीक है, लेकिन वो लाइफ पार्टनर ब्याह तो पहले तो जल्दी मनाना, बाद में कोई नहीं मनाना।
3: अल्लाह क्यों भैया,
0: नहीं मैं मजाक कर रहा हूँ, अल्लाह माफ करे जी,
3: बनाएंगे।
0: नहीं, मैं मजाक कर रहा हूँ इस बात पे। तो और कुछ कहना चाहेंगे आप?
3: और मैं ये कहना चाहूंगी यूसुफ भाई को मेरी तरफ से हैप्पी बर्थडे टू यू, और अल्लाह पाक उन्हें खुश रखे, सलामत रखे, उनकी दिली मुराद पूरी करे। ऐसे उनकी जुमेरात जुमे को जीना
0: जी
3: सालगिरह
0: जी
3: शायद।
0: उनकी जुमा की, उनकी फिर दिल की एक मुराद नहीं, मुरादें कहे ना ढेर सारा।
3: मुरादें सब, दिली मुरादें पूरी हो जाए। और अल्लाह पाक आपको भी जो है घर की, अल्लाह पाक
0: आमीन
3: अपने घर की ज्यादात करवाए, सबको अपने घर की ज्यादात करवाए,
0: आमीन
3: सबकी ख्वाहिश
0: आमीन
3: होती है अल्लाह के घर देखने
0: आमीन
3: की।
0: आमीन। बहुत शुक्रिया, अपना ढेर सारा ख्याल
3: और
0: रखिएगा, ठीक है।
3: ये भी कहना चाहूंगी भाई, प्लीज आप ना ये जो मतलब 1-15 के बाद आप बिल्कुल स्लो हो जाते हैं, काले ज्यादा नहीं लेते, प्लीज ज्यादा लिया करें।
0: 15 से बाद मतलब क्या? 1:15 के बाद?
3: 1:15 या 20 मिनट के बाद आप बिल्कुल जो है ना काले बहुत कम कर देते हैं।
0: नहीं नहीं हम आज तो देखे, मैंने बात ही फोन मेरा खबा दुख गया फोन पे रख रख के।
3: मैं तो सोच रही थी जो है ना आज मेरी कॉल जो है ना रिमशा नहीं मिल रही।
0: नहीं नहीं मिल गई मिल गई, ख्याल रखिएगा।
3: मैं
0: ढेर सारा
3: हम ना और इस टैकन का सभी सुनने वालों का नाम, मतलब बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा।
0: अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। ये सुने जी आप सारे।

सलमान भाई बहुत शुक्रिया जी। सलमान भाई इस वक्त हमारी बात सुन रहे हैं। सलमान आरजे सलमान दोस्तों आप जानते हैं, 12 से 2 प्रोग्राम किया करते थे और 10 से 12 भी उन्होंने किया। सलमान भाई वो जो मैंने शेर बोला है वो आपने सुना है, उसके जवाब में आपने शेर लिख भेजा है। थोड़े से अल्फाज जो हैं सख्त उर्दू वाले हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस वक्त मेरी आवाज़ सुन रहे हैं आप यही वॉइस नोट रिकॉर्ड करके मुझे भेजें, मैं ऑन एयर आपका वॉइस नोट करूँगा यही। और आप साथ आपने ये कहना है कि आपके शेर के जवाब में मैं लाजमी ये ब्रॉडकास्ट करूँगा। सलमान भाई आपने मुझे वॉइस नोट करना है, और इसके अलावा माशाल्लाह आप न्यूज़पेपर में आपने लिखना भी शुरू किया। दोस्तों आप इनको फॉलो करें, आरजे सलमान खान का जो फेसबुक पेज है उस पर कुछ डिटेल्स महंगाई के हवाले से काफ़ी कुछ लिखते हैं, और न्यूज़पेपर में भी कॉलम इनके माशाल्लाह छपने शुरू हो गए हैं। तो सलमान भी ये जो शेर, चूँकि अल्फाज जो हैं थोड़े से सख्त और सलीस उर्दू वाले, तो मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। क्रिस्टल वॉइस नोट कीजिएगा, डायरेक्ट में थुपले कर देना है, कुछ और ना क्या वॉइस नोट, ठीक है। दोस्तों ये जो गाना मैंने प्ले किया था ये सारी गलती मेरी है, ये सिर्फ इसलिए किया था कि मामलात को रफा दफ़ा किया करें। एक मैसेज मौसूल हुआ है उसमें कहा गया है कि आजकल ना मर्द हजरात जो हैं वो ज़्यादा जो है वो नाराज़ होते हैं, ख़वातीन उनको मनाती फिरती रहती। ये फार्मूला ना शादी के बाद लगता है, पहले मुंडे मनाते रहते हैं। ये सुने जी, ये ज़िंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ एतबार के हवाले से हम बात करते हैं। महरूम जुनेद जमशेद की आवाज़ को प्रोग्राम में शामिल करने जा रहा हूँ जी। थोड़ा सा ट्रैक सुने, वक्त हमारे पास बहुत कम है। मीनवाइल अगर सलमान भाई हमें ट्रैक वो भेजते हैं शेर, मैं आपको सुनाऊँगा वो।

0: 1:50 हो चुके हैं दोस्तों, आप तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया। और सलमान भाई ने फ़ौरन फ़ौरन रिस्पांस किया है जी। सुने जो शेर एक थोड़ी देर पहले मैंने बोला था उसके जवाब में उन्होंने क्या कहा, ये मैं उनकी आवाज़ आप तक पहुंचाता हूँ।
1: जी बिल्कुल, ये आपके जो आपने बड़ा खूबसूरत एक शेर सुनाया उसके जवाब में मैंने कहा, आपने कहा ना कि लोग अपने गमों पे ही रो रहे होते हैं, तो वो कदील शफाई साहब थे, बड़े हमारे बहुत बड़े शायर थे। उन्होंने कहा था कि मातम सरा भी होते हैं क्या खुदगर्ज कतील, मातम सरा भी होते हैं क्या खुदगर्ज कतील, अपने गमों पे रोते हैं लेके किसी का नाम।
0: क्या बात है जी,
1: इंशाल्लाह मुलाकात होती है जल्दी।
0: बहुत शुक्रिया सलमान भाई, बड़ा ज़बरदस्त, बिल्कुल एग्जैक्ट लाइन टू लाइन आपने उसको ज्वाइन किया। और तमाम दोस्तों का जी बहुत शुक्रिया। facebook.com/FM101 चैनल पाकिस्तान पे बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेशन तो नहीं है, पता नहीं लोग कितने चले जाते हैं, कॉमेंट नहीं करते हैं, क्या नाराज़गी है। बहरहाल आप लोगों का बहुत शुक्रिया जी, जितने भी कॉमेंट्स हम तक पहुँचे हैं आप लोगों के प्यार मोहब्बत का शुक्रिया फेसबुक पे। इसके अलावा आप लोगों ने जो 4471 पे पैगाम हम तक पहुंचाए हैं उनका बहुत शुक्रिया, आपकी लाइव कॉल्स जो हम तक पहुंची हैं उनका भी बहुत शुक्रिया। इतना कीमती वक्त ज़िंदगी से निकाल के आप लोग रेडियो सुनते हैं, और आप यकीन जानिए कि खून में इजाफा होता है, अच्छा लगता है जब अच्छा फीडबैक आता है, आप लोग सुनते हैं, टॉपिक से रिलेटेड बात करते हैं। सबसे ज़्यादा दिल को सुकून तब मिलता है कि जब आप रिलेटेड टू टॉपिक बात करते हैं। आज काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी के हवाले से और रूठने के हवाले से हमने बात की, और मैं हमेशा यही कहता हूँ कि ज़िंदगी वही है जो पल आप जी रहे हैं, फ्यूचर का सोच के ये वक्त ज़ाया ना करें, पास्ट का सोच के ये वक्त ज़ाया ना करें जो आपके पास मौजूद है। और इंसानी जहन चूँकि बहुत ज़्यादा चीज़ें सोच रहा होता है, और रैप अप किया करें जितनी जल्दी हो सके, अपने बड़ों को देखें, उनकी एग्जांपल लें कि इस स्टेज पे आके जब वो आपको कहते हैं ना बच्चे इस काम में कुछ नहीं रखे, असी इन्हें उम्र ही गुजर के गए हैं, ये मामलात, ये लड़ाई झगड़े, ये नाराज़गियाँ, ख़ासकर वो रिश्ते जो आपके बहुत करीबी हैं, जिनसे आपको खुशी मिलती है या जिनको आपसे खुशी मिलती है, उनको ज़्यादा देर नाराज मत होने दिया करें। जाने से पहले और जाते जाते मैं हमेशा बारहा ये उस्ताद असद अमानत अली ख़ान की आवाज़ में ये गज़ल आप लोगों तक पहुंचाता हूं, चूँकि ये मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है और ये बहुत मज़े की है, मज़े की न सेंस की खाई नहीं है, लिरिक्स इसके कमाल के हैं। जाने से पहले हमेशा की तरह एक बात की ज़िंदगी में कोशिश ये कीजिएगा कि आपकी वजह से किसी दूसरे शख्स का दिल ना दुखे, अपने असाज़े इकराम का हमेशा एहतराम किया करें, वालिदैन का ख्याल रखें, उनकी खिदमत करें, और एक दुआ अल्लाह ताला की ज़ात से ज़रूर किया करें कि रब ताला की ज़ात हम सब को इस दुनिया में अपनी ज़ात के सिवा किसी दूसरे का मोहताज ना करें, आमीन। दोस्तों ज़िंदगी शर्त है, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीक थर्सडे को प्रोग्राम हाउस एट में, और प्लीज़ जब भी दुआ के लिए हाथ उठाएँ तो अपने भाई के लिए दुआ ज़रूर किया करें कि रब ताला की ज़ात अपने घर की ज़ियारत करवाए, आमीन। इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।

0: This is 101% pure. You are tuned into the one above, 101 FM.
1: Entertainment, Hoya updates. यह तुम्हारी हर मूड का दोस्त।

0: 101 FM。
1: ये जिंदगी भी अजीब है ना साहब, कि एक दिन मरने के लिए पूरी जिंदगी जीनी पड़ती है।